दर्द भरी बयान हम सफर गम जो मोहब्बत में दिया है तुमने। अनूप ज्योलता जी की आवाज़ में, अनूप ज्योलता जी की आवाज़ में पैगाम आपके लिए पेश किया गया है। आपसे बता दे मेरे दोस्तों, आपसे बता दे कि चार प्रकार के लोगों पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। आप जरा सुने और अपना दिमाग भिड़ाए और सोचे कि आपके जिंदगी में ऐसे व्यक्ति भी है। नहीं है तो बहुत अच्छा है, और आगे में जरूर से आप इस पर सावधान रहे। तो चले मिलकर हम सुनते हैं कि चार प्रकार के लोगों पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है, वो हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। दूसरा व्यक्ति, वो व्यक्ति जो कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है।

अच्छे वे आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने। और ये सुनिए भी कि जिनके शब्दों और कर्मों में तालमेल नहीं होता, जिनके शब्दों में और कर्मों में तालमेल नहीं होता, ऐसे लोगों से सावधान रहे। यानी कि जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है, ऐसे लोगों से बस आप थोड़ा सावधान हो जाए। आपके लिए चुन कर रखी हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों सुरेश वत्कर जी की आवाज़ में

जिंदगी आपकी बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी मेरे दोस्तों। सुबह जल्दी उठे, बिस्तर से तुरंत निकलो, फोन नहीं छूना, ठंडे पानी से नहानो, इतने ठंडे पानी से भी मत नहाओ मेरे दोस्तों, ना लो वाटर से आप जरूर से नहा लेना, सेहत के लिए बहुत फायदा है। 15 से 20 मिनट तक जरूर से एक्सरसाइज करो, 15 से 20 मिनट तक जरूर से एक्सरसाइज करो, यानी कि एक्सरसाइज जिमनास्टिक। 10 मिनट ध्यान लगाओ, मेडिटेशन मीन्स 10 मिनट। हेल्दी नाश्ता करो, खसोंद अन खसोंद।

जो आपकी जिंदगी, आपकी जिंदगी जरूर से बदल देगी। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दो। तलत अजीज जी की आवाज में।

प्यास अजीज जी की आवाज में खूबसूरत है। आंखें तेरी रात को जागना बस छोड़ दे। जीवन में मुस्कुराना सीखना पड़ता है दोस्त, कि जीवन में मुस्कुराना सीखना पड़ता है। रोना तो पैदा होते ही आ जाता है। समय की धारा में उम्र बस जानी है। जो घड़ी जी लेंगे वही बस रह जानी है। ये भी एक सुंदर लाइन है, आप इसे भी जरूर से सुने कि खूबसूरत कुदरत का सुंदर संदेश। इस कुदरत का सुंदर संदेश है कि आप और मैं पृथ्वी के मेहमान हो, मालिक नहीं। ये कुदरत का सुंदर संदेश है कि आप और मैं पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं।

ऐसे ना थे फिल्म का नाम है। आप तो ऐसे ना थे फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनने वालों, लेकिन तीन तख्त में ये पिक्चराइज किया गया है फिल्म रफी जी की आवाज में। यहाँ से हमने श्रवण कर लिए मेरे सुनने वालों। रिश्ते एक तरफा नहीं चलते, रिश्ते एक तरफा नहीं चलते, कोशिश दोनों तरफ से जरूरी है, कोशिश दोनों तरफ से जरूरी है, प्यार तो आधार है, लेकिन भरोसा और वफादारी भी जरूरी है। यहाँ सिर्फ शब्दों को ही नहीं एहसासों को समझना भी जरूरी है। वह चाहे जैसे भी आए सुख दुख में साथ निभाना जरूरी है। रिश्ते एक तरफा नहीं चलते, कोशिश दोनों तरफ से ज़रूरी है।

प्यार का वादा, 50-50 क्या है इरादा, चलो बता दो ना क्या है इरादा।

0: मत दे दो ये माल पराया है।
1: Let's go.

मेरी ही आशा भोसले जी की प्यार का वादा 50-50 इसमें कलाकार सुपर सुपर हिट सुपर सुपर सुपर स्टार राजेश खन्ना तीना मोनिम के साथ अपना गीत यहाँ प्रदर्शन की है इस फिल्म में कि प्यार का वादा 50-50 और फिल्म का नाम भी 50-50 है। याद है ना ये फिल्म आपको? और कहते हैं ना दोस्तों कि जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं हम कि जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं हम जहाँ ये समझ नहीं आ रहा है कि जहाँ से ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें जिंदगी में मजे ले रहे हम जिंदगी के मजे ले रहे हैं या जिंदगी हमारे से मजे ले रहे हैं। तो सोचो तो कि जिंदगी आपसे मजे ले रहे कि आप जिंदगी के मजे ले रहे, ये भी एक सोचने वाली बात है ना।

अब बस आप ही बता दो, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए। मैं सुन रही हूँ, हाँ दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। जिंदगी में प्यार चाहिए और पैसा चाहिए। ये सुना दी हमको इस बार फिर, हाँ हाँ डबल, ये कपल किशोर दा और आशा भोसले जी। इस बार फिल्म छैला बाबू से निकाल दिया गया है आपके लिए। सीफन तक में ये पिक्चराइज किया गया है। इस बार कलाकार इस फिल्म में रजेश खन्ना

जो हम खुशी से सीखते हैं ना, जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। जिंदगी एक रात की तरह है मेरे दोस्तों, कि जिंदगी एक रात है जिसमें ना जाने कितने ख्वाब है। जिंदगी एक रात की तरह है कि जिसमें ना जाने कितने ख्वाब है, जो मिल गया वो अपना है। हाँ, आपने ठीक बोला। हाँ हाँ, जो मिल गया वो अपना है, और जो खो गया और जो टूट गया वो सपना है। बिल्कुल आप सही है।

0: Váhom Hindustani Radio.
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536522447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Hum to ruk jayenge, hum to ruk jayenge, par ye samay to nahi rukne wala hai, ye to chalte hi jayega mere dost. यहाँ से हमको सोचना है कि हमें क्या करना है। ना गम से डर, ना खुशी पे इतरा, ना गम से डर और ना खुशी पे इतरा, जिंदगी का यही है मंत्र। जिंदगी का यही है मंत्र, जो आया है उसी में जी ले तू, जो आया है मेरे दोस्त उसी में जी ले तू, कल का क्या है बस आज संभल जा तू। हम आज संभल जाए और ये पल जो हमें मिला है इसी में हम इतरा ले, मुस्कुरा ले, साथ बिता ले। तेरी मेरी यारी बड़ी पुरानी है ना।

0: हम पहले कहीं मिले नहीं?
1: सॉरी, डोंट रिमेम्बर।
0: तुम, मेरा मतलब है आप रमा से नहीं?
1: शी इज डेड। माय नेम इज रोजी।

आशा भोसले जी भी कितने सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया गाना और गाकर यहाँ से हमारे खातिर तो छोड़ गया है, हम उसे सुनते हैं और पसंद करते हैं। मेरे दोस्त, इस बार फिर एक बार खूबसूरत गीत यहाँ से आपके लिए पेश हो रही है। और उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, और क्या कहना चाहती हूँ वो ये है कि कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है, कभी अपना भी बदल जाता है, हाँ ना? कुछ जाने पहचाने शब्द है ना, कि कभी वक्त हाथ से फिसल जाता है तो कभी अपना भी बदल जाता है। जिंदगी का सच यही है दोस्त, कि जिंदगी का यही सच है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। जी हाँ, यहाँ सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्टैडफास्ट है। ना ना, स्टैडफास्ट एक फूल का नाम है, पर वो भी बदलते हैं। हम ऐसे सोचे, हमें दूर नहीं खोजना है, दूर हमें नहीं खोजना, हम अगर अपने आप को देखें ना, तो कभी हम शिशु थे, बच्चे थे, बेबी थे, और आज कितनी उम्र के हो गए हैं, और हमारा शरीर कैसा था और आज कैसा है। शरीर का अपना एक अंग आप देखे तो सोचो कि कैसा था और आज कैसे है। तो यहाँ कहती हूँ भी कि यहाँ सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है।

दूर दूर से लोग ये रेडियो को फॉलो करते हैं मेरे दोस्त, आप भी फॉलो करते हो, आपकी भी बहुत सारी बधाइयां पेश किया जाता है। और हमने सुने हैं, देखे तो इस फिल्म का नाम है चरित्रहीन, फिल्म का नाम चरित्रहीन से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है। चरित्रहीन कहते हैं जो जिकर चाल चलन ठीक नहीं होता है, उसको कहते हैं चरित्रहीन। तो वही फिल्म से ये सुंदर सा गीत हमसे सुने हैं। इसमें कलाकार है संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर। छैला बाबू से हम सुनेंगे, मैं छैला बाबू और आप क्या है, आई एम सॉरी।

0: मीन साहब, ये तुम्हारा चिक्कू फ्रेंड है ना, बहुत देर से किट-किट कर रहा है। ये कबाब में हड्डी है, ज्यादा किट-किट करेगा तो हड्डी को हम अलग कर देगा।
1: हाँ, इसको अलग कर दीजिए।
2: कैसे अलग कर देगा? रीटा हमारा डार्लिंग है। लो रीटा,
0: तमाशा।

वो छैला छैला बाबू यहाँ से हमने श्रवण की है। नेखन 3 सीफन तक में ये पिक्चराइज किया गया है। जैसे आपको कही है कि इसमें कलाकार है राजेश खन्ना जी और सीनत अमन। ये दुनिया है एक नंबरी तो आप है 10 नंबरी, ऐसा ही होना चाहिए। कभी सर झुका के मत जियो, सर उठा के जियो। जैसा भी परिस्थिति होवे बस मुस्कुराते ही जियो। जिंदगी एक इम्तिहान है, ये तो मैं मानती हूँ कि जिंदगी एक इम्तिहान है मेरे दोस्त। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन एक नया सवाल है। हर दिन एक नया सवाल है, जो मुस्कुरा कर जी ले इसे। सुनिए जी, जो मुस्कुरा कर जी ले इसे, वही करते हैं असली कमाल। तो आप भी वही कमाल कीजिएगा। और कहते हैं कि

0: सुना तुम्हारा, ये लो नोटा। अरे इस घर में बहुत कुछ है, बादाम, पिस्ता, काजू, गर्मा गर्म समोसे।
1: मैं इस घर का नमक नहीं खाऊंगा।
0: अरे नमक नहीं खाओगे तो मत खा, इस घर में बहुत कुछ है, केक भी है, हलवा, बादाम।

तो आप भी दस नंबरी बनो, एक नंबरी पे ना ठहरो। मुकेश जी और लता जी की आवाज में हमने श्रवण की है फिल्म का नाम दस नंबरी। नई खंतीन सेशन से फख्तख में ये पिक्चराइज किया गया है। इसमें कलाकार है मनोज कुमार और हेमा मालिनी जी। जिंदगी को इतना सीरियस मत लो।

करो, पर वही वही करो मेरे दोस्त कि जो अच्छा हो। जो अच्छा कार्य है वही को आज पे अभी पर कल ढालो, और जो बुरा विचार आओ उसे बरसों नरसों पर छोड़ दो। बरसों नरसों पे आप छोड़ेगा ना तो आपको उसमें से अच्छाई दिखेगा। तो जो अच्छा है वो आज ही कल डाल कर डालो, और जो थोड़ा से जो बुरा है, थोड़ा से बुरा है वो भी बुरा है, जो बुरा है उसे कल परसों पे छोड़ दो। सुनेंगे हम कि प्यार में, कि दुनिया में प्यार की सबको जरूरत है, आपको भी मुझे भी। जिस घर में हम रहते हैं उसको भी, क्योंकि प्यार से आप जिस घर में रहोगे तो वो प्यार से आपको अपने ही घर में रखेगा। अगर सहमत नहीं हो तो आजमा कर देख लेना।

प्यार की दुनिया में सबको जरूरत है। ये पिक्चराइज किया गया है नेखंतिन सीफन तख में। फिल्म का नाम समझौता, समझौता से निकाला गया है और इसमें कला मुमताज जी और रजेश खन्ना जी अपना कला दिखाई है और गीत का बोल आपने सुने कि दुनिया में प्यार की सबको जरूरत है। गाने वाली है गायकी आशा भोसले जी। जी हाँ, आशा भोसले जी की आवाज में हम सुने ये गीत। मेरे ख्याल से आज आप तक भी कभी नहीं सुने होंगे, तो सोचती हूँ आपके लिए ये भी चला देती हूँ। जान पहचान तो पहले से थी और अब पहचान रिश्ते में कैसे बदलते हैं।

ऐसे चुने गीत आज हम आपके लिए पेश किया, ये मुझे भी पता नहीं था। फिर भी किशोर दा जी के आवाज में और आशा भोसले जी के आवाज में ये कपल आज के प्रोग्राम में शामिल हो गई है। बड़े ही अजीब है ये जिंदगी के रास्ते। जी हाँ मेरे दोस्त, कि बड़े ही अजीब है ये जिंदगी के रास्ते। अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, मिलने की खुशी दे या ना दे। सच में कि मिलने की खुशी दे या ना दे, जब कोई अनजाने मोड़ पर अपने बन जाते हैं, कुछ लोग जो अपने बन जाते हैं, तो उनसे मिलने की खुशी मिले या ना मिले, मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। आप ये अपने जीवन में कभी देखे हैं? आपके जीवन में ऐसे भी कभी बीता हुआ है? स्पेशल स्पेशल आपके लिए पेश किया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर एंड नेटवर्क उक्त बुलाइस्त्र फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम हो आप जरूर तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में। दफ्तर का तार का नंबर 9 2 13 65 98। जो भी रेडियो का काम हो देंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। 5 सस्ते दाम सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें, या तो आप अपने व्यापारी के बारे में कमर्शियल बनवा कर, या तो आप जो ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गामान हो ऑर्गा वुमन हो इवेंट और खनिसात, और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हैं और सुन रहे भी है वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के लहर द्वारा, द प्लस रेडियो के लहर द्वारा। किफायत सस्ते दाम सर्विस ग्रांटी और क्वालिटी स्टार्ट बैंस ऑफ द एस्ट प्लांट। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ आप सभी से यारों की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा। आप जरा आजमा कर तो देख सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें और 0 2 13 65 98 पर आप तार करके इसके बारे में सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। जो भी रेडियो का काम हो देंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी जोर तोर से हम लोगों के बारे में बातें शाते करते रहते हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का रिक्लाम भी बनाते रहते हैं। तहे दिल से धन्यवाद। बेंटिनों खिलत फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 0 2 13 65 98 पर। बेन फन हरते वेलकम। तो आप भी आए कि इस हसीन जो प्यारा सा हैप्पी हैप्पी फाहुन फैमिली है उसमें भी आप आकर शामिल हो जाए। 0 2 13 65 98 पर आप तार करें। वरके में तो आप भी एक ही दम लेकर बढ़ते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। और जैसे मैं आप सभी को आगामी में कह चुका था कि बीते हुए सप्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म आदमी तक, और इस मूवी जो रिलीज किया गया था 1968 में दिलीप साहब ने काम किया है। मलकाय हुस्न द ग्रेट एक्ट्रेस वहीदा रहमान जी के साथ और साथ भी दे रहा है इस मूवी में दिलीप कुमार जी के साथ महान अभिनेता द ग्रेट मनोज कुमार जी। शाकिल बादायूनी के अल्फाजे और संगीत है महान संगीतकार श्री नौशाद अली जी का। तो उसी फिल्म में से नगमे आप सुनेंगे, कुछ नगमे रह गया है सुनाने के लिए। अगला बयान, मैं टूटी हुई एक नैया हूं, क्या बात है, पद्मश्री सुरों का बादशाह रवि साहब जी के मधुर आवाज में। मिलके सुनते हैं स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

मैं टूटी हुई एक नैया हूं। अति सुंदर बयान, दिल को छू लेने वाला नगमा, एड फिल्म आदमी, कंपोज बाय मेस्ट्रो नौशाद अली, और सुनाया आप सभी को महान गायक सुरों का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी, रवि साहब जी। फिल्म आदमी से कुछ जबरदस्त नगमे आप सुन रहे हैं, और जैसे आप लोग को मालूम है तो सिर्फ नगमे आप सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप साहब ने काम किए। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं, एक जबरदस्त द्वैत है रवि साहब और महेंद्र कपूर जी का, ये अति सुंदर द्वैत मिल के सुनते हैं, जबरदस्त कंपोजिंग बाय मास्टर नौशाद अली। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, क्या बात, वाह।

है, व्हाट अ सॉन्ग, कैसी हसीन आज बहारों की रात है। दर्द भरी ये अति सुंदर बयान जिसे सुन के रोंटे भी खड़ा हो जाते हैं। एड फिल्म आदमी कॉम्पोज बाय मैस्ट्रो नौशाद अली, और जिस खूबी से ये दो महान गायक, जैसे असल में तो ये गुरु और चेला थे, और दोनों ने इतनी खूबी से ये बयान को पेश किया, तारीफ काबिल, तारीफ काबिल। अगला बयान और साथ ही साथ ये भी आखिरी बयान है एड फिल्म आदमी, जबरदस्त सॉन्ग है रफी साहब जी का, ये वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग भी है, कि आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज दे, क्या बात है। आगे सुनिए महान संगीतकार नौशाद अली के सांच पर, और अल्फाजे तो है लेखक बदायूं का, गला सुरों का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी, रफी साहब जी।

0: अति सुंदर मजेदार सॉन्ग गजब चमके बिंदिया तोरी आधी रात, हसीनों का पुजारी किशोरदा और अशा भोसले की आवाजें साथ, कोरस भी थे एस डी बर्मन के साथ। पर ये थी सुंदर बयान आप सभी ने सुना इन फिल्म से गीना महातो नेगेटिव सेफ तक। उसी फिल्म में से आप नगमे सुन रहे हैं। अगला बयान एड फिल्म से गीना महातो ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे। एक बार फिर हसीनों का पुजारी की शोरदा के मधुर आवाज में।
1: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, सोता है बहुत जागा है ना।

0: भोले भाले ललुआ, भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले भाले

0: कमाल।
1: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे आग लगी मेरी झोपड़िया में, क्या बात है। मजेदार सॉन्ग फ्रॉम द मूवी सगीना महातो 1970 कंपोज्ड बाय माएस्ट्रो एस डे बर्मन जी, और सुनाया आप सभी को हसीनों का पुजारी किशोर दा। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर की चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी कुछ शेर से जो दोस्ती यारी के बारे में जाता है। दूर हो गए हमारे चाहने वाले, दूर हो गए हमारे चाहने वाले, याद बहुत आए हमें भूलने वाले। मिट गए थे हम जिनकी चाहत में, मिट गए थे हम जिनकी चाहत में, वो कभी लौट के नहीं है आने वाले। लोग पूछते हैं क्यों सुर्ख है तुम्हारी आंखें, हंस के कह देती हूं रात को सो ना सकी। लाख चाहूं भी मगर ये कह ना सकूं, लाख चाहूं भी मगर ये कह ना सकूं, रात को रोने की हसरत थी मगर रो ना सकी। आज तेरी याद को सीने से लगाकर रोए, अपने ख्वाबों में तुम्हें पास बुला के रोए। हजार बार पुकारा तुम्हें तन्हाई में, हजार बार पुकारा तुम्हें तन्हाई में, और हर बार तुम्हें पास ना पाकर रोए। यूं किसी की याद में रोना फिजूल है, इतने अनमोल आंसू खोना भी फिजूल है। रोना तो उनके लिए जो हम पर निजार है, रोना तो उनके लिए जो हम पर निसार है, उनके लिए क्या रोना, उनके लिए क्या रोना, जिनके आशिक हजार है। क्या बात है। वो सो जाते हैं अक्सर हमें याद किए बगैर, हमें नींद आती नहीं उसने बात किए बगैर, हमें नींद नहीं आती उनसे बात किए बगैर। कसूर उनका नहीं, कसूर तो हमारा है, उन्हें चाहा, उन्हें चाहा भी तो हमने उनकी इजाजत के बगैर। ये बात है। शाम से आंख में नमी सी है, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। आगे मैं कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। यारो साला मैं तो साहब बन गया, उसी फिल्म सगीना महातो में से अति सुंदर बयान आप सुनेंगे 1970 एस डी बर्मन के साक्ष पर। एक बार फिर हसीनों का पुजारी किशोरदा। बोले बाप रे बाप, बोले साला मैं तो साहब बन गया, तो बन जाओ ना
2: साला। मैं

गए तुम नीचा, मेरा वो सब जाहिल बन गया, ऐसा लम्हे तो साहब बन गया।

या गंगूदारी, तुम लंगोटे वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटे वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोटा किस्मत हम साना बदलेगा, हम साना बदलेगा।

0: बंधन।
1: साला में तो सांप बन गया, क्या बात है। एड फिल्म से गीना महातो ने दिन सेफंत एस डे बर्मन के साथ हसीनो का पुजारी की शोरदा के मधुर आवाज में फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। नख में आप सुन रहे हैं जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए है। अगला बयान और इस बार भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सबको तुमरे संग तो रैन बिताई साथ दे रहा है एक बार फिर किशोरदा एस डी।

0: Kala.
1: Hati Sundar Bayana Tumare Sangha To.
2: Say hello to
1: Raina Bitai. Aur ye bhi aakhri bayan tha film jo abhi aap Sagina Mahato रिलीज किया गया था 1970 सभी गाने में सुना दिया। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1970 और इतना चला कि क्या बताएं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म गोपी का जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुए थे। तो उसी फिल्म में से अब आप नगमे सुनेंगे और इस फिल्म गोपी में एक बार फिर दिलीप साहब ने अपनी लवली वाइफ सहरा बानो जी के साथ काम किया है और साथ भी फरीदा जलाल भी इस फिल्म में काम किए हैं ओम प्रकाश जी के साथ। निरूपा रॉय जी भी संगीतकार है, महान संगीतकार जोरी द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। तो उसी फिल्म में से ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग भजन है रफी साहब जी का राजेंद्र कृष्ण के अल्फाजे की सुख के सब साथी दुख में ना कोई।

Jabardast composing by the brothers Kalyanji Anandji from the movie Guavopi 1970. Rajinder Krishan ke Kyal Faze aur suna diya aap sabhi ko Suro ka Badshah, the king of melody, Ravi Sahib ji. Agla bayan sunan ko ja rahe hai Suro ka Devi. Lata Mangeshkar ji ke madhur awaaz mein aap sunenge the film Gopi. अकेले ही अकेले चला है कहां मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय द ब्रदर्स कल्याणजी आनंदजी और क्या अल्फाज है राजेंद्र कृष्ण जी का मिलके सुनते हैं अ ग्रेट सॉन्ग स्पेशल

Jala hai kaha uit de film Gopi 1970 Rajender Krishan Kalikhawayati Sundar Bayan composed by the brothers Kalyanji Anandji aur suna hai aap logo ne Lata Mangeshkar ji ke madhur awaaz mein samay pe priye shrotaon abhi aap vigyapan sunenge desh videsh ka samachar uske baad main karyakram ko aage badhaunga तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना गर्मी का मौसम है आप भी जाइए कुछ ठंड ही पीजिए या जो आप इस्तेमाल कर रहे थे और ब्रेक के बाद जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो कहीं जाना मत तो जरूर प्रोग्राम को फॉलो करते ही रहना

दोस्तों, रिश्तों को इतनी अहमियत मत दो कि जब वे टूटे तो तुम्हारा अस्तित्व भी यानी पर्सनलक है बिखर जाए। और जिनकी कदर नहीं है, जब कोई आपका कदर नहीं करे तो उनसे दूर ही रहो, ये बेहतर है मित्रों, बहुत बेहतर रहेगा। और कुछ रिश्ते केवल सीख देने के आते हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं और साथ निभाने नहीं। और जो बार बार बार बार तुम्हें चोट दें, उसका हाथ पकड़ने से बेहतर है मित्रों, साथ रहने से बेहतर है दोस्तों कि उसे मुक्त कर देना। और कई बार जिनसे हम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, वही हमें सबसे अधिक निराश करते हैं। और इसलिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ मित्रों, खुद को आत्मा इतना निर्भर बनाओ कि किसी का साथ रहे या ना रहे, तुम्हारी गति ना रुके, तुम्हारी गति ना रुके मित्रों। इस तरह से अपने को निर्भर बनाओ।

0: मित्रों, कहे जाते हैं कि जीवन में सफलता केवल ध्यान करना, हम क्या बदला रहे हैं कि जीवन में सफलता केवल तप और प्रयास से मिलती है। केवल इच्छाएं रखने यानी इच्छाएं रखने से कुछ नहीं मिलती, कुछ नहीं होता है मित्रों। और जो त्याग करता है, जो गिर कर उठता है, जो अकेला लड़ता है, वही इतिहास रचता है मित्रों, वही इतिहास रचता है। और माता पिता का संघर्ष, भाई बहनों ध्यान करना, हम आपसे क्या बतला रहे हैं। हम मनोरंजन के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कुछ बतला रहे हैं कि आप इसे याद करें, अपने जीवन में उतारें, तभी आपका बाकी जीवन सफल हो पाएंगे, अन्यथा पता नहीं मित्रों। तो माता पिता का संघर्ष और बलिदान हमें वह जीवन देता है जिसके लिए हम हर दिन सपने देखते हैं। अगर हम उनके त्याग, दोस्तों हम उनकी त्याग को भूल जाएं, तो जीवन की सारी ऊंचाइयां, जीवन की सारी ऊंचाइयां भी अर्थहीन हो जाती है। मतलब खेन बतीकने अब जीवन में नहीं रहते, कुछ भी नहीं, सब खलास हो जाए मित्रों। ध्यान करते रहना,
1: जब हमारे पास बुढ़ापा आने लगता है, तो इस भजन के माध्यम से हम आपको बतलाने जा रहा हूँ कि हमारे साथ क्या होने लगता है। जब ये सब आप महसूस करेंगे कि आपके साथ हो रहे हैं, तो समझ लेना कि बुढ़ापा

0: मेरे प्यारे साथियों, हर दर्द ध्यान करना, हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि तुम में अभी और शक्ति है। जब आप सोच रहे हो कि मैं बेकार हूँ, शक्तिहीन हूँ, एक मैं नीच, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मित्रों। अभी तक तुम में और शक्ति है, और जीवन का सत्य यही है कि सब कुछ एक न एक दिन छूट जाएगा, छूट जाएगा, सब कुछ एक न एक दिन छूट जाएगा। लेकिन जो सीख तुम संघर्षों से लोगे, जो सीख तुम मेहनत से लोगे मित्रों, वो तुम्हारे साथ हमेशा चलेगी, हमेशा चलेगी। आपके ज्ञान हमेशा चलेगी, ज्ञान कोई छीन नहीं पाएगा आपके मित्रों। और कुछ चीजों को समय पर छोड़ना सीखो, कुछ चीज को ना जिंदगी भर लेकर चलते रहो, चिंता करते रहो, बीमार हो जाओगे। छोड़ना सीखो हैं, क्योंकि हर कोई तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं होता है, हर रिश्ता अमर नहीं होता है। कुछ बस अध्याय मित्रों, कुछ बस अध्याय होता है, थोड़े दिन के लिए जीवन में होते हैं, छुट्टा छुट्टी वगैरह वगैरह ये सब पता नहीं है, मगर कभी कर्म के अनुसार होता है ना। तो और कुछ केवल एक सबक है, जो कुछ मिले आपके जीवन में मेहनत से, या किसी ने आपको कुछ बुराई कर दिया, उससे जो सीख मिले है वो एक सबक है, वो एक लेस है मित्रों। डर उसे नहीं, डर नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं, ताकी ताकी करते हैं, डर उनसे जो चुपचाप चुपचाप तुम्हारे पतन की योजना बनाते हैं, उन लोगों से डरना चाहिए जो तुम्हारे लिए एगो फालसेती करे है, ऐसे लोग से डरना चाहिए मित्रों। और तुलना करना छोड़ दो, तुलना करना छोड़ दो, मतलब ओके ऐसे है तो हम के हो चाहिए, ओके मर्सिडीज भैंस है तो हम के मर्सिडीज भैंस चाहिए, ओके बीएमडब्ल्यू, ये सब बतिया छोड़, मेहनत करते रहो और जो मिले जीवन में उससे सुखी रहो, उसी में संतोष करना। तो तुलना करना छोड़ दो मित्रों, तुम जैसे हो अनोखे हो। यदि उड़ना चाहते हो भाई बहनों, उड़ना चाहते हो तो उन जंजीरों को तोड़ो जो तुम्हें बांधे हुए हैं, उसे तोड़ दो है? तब आप उड़ना सीखोगे, तब आप फ्रे है पाओगे मित्रों।
1: पैसा कमाना ठीक है, मगर पैसों के बस में मत हो जाना।

मित्रों, जो बात हम आपसे बतला रहे हैं और बतलाते हैं, इसे वैसा ही हवा में उड़ा देना नहीं है, जीवन में उतारो। अपने माता पिता का आशीर्वाद ही, ध्यान करना इस पे हम क्या बोल रहे हैं। अगर माई बाप नहीं है तो फोतो है ना, खड़ा होके उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया करो भी। तो अपने माता पिता का आशीर्वाद ही मित्रों जीवन की असली पूंजी है, जीवन की असली पूंजी है। माँ के चरणों में, ध्यान करना, यमुनी दैंक सैनिक स्मरणी, उनका आशीर्वाद पावर उतने ही हैं। तो माँ के चरणों में वही शक्ति है, वही शक्ति है जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती है। मित्रों, जो भगवान के मंदिरों में भी नहीं मिलती है, विश्वास करो तो गंगा मैया है और ना विश्वास करो तो गोत्रों के पानी है। मित्रों, खुश रहना, ध्यान करो, खुश रहना कोई भाग्य की बात नहीं है, यह एक कौशल है, यह कला उससे आती है जो जीवन की कठोरताओं को स्वीकार कर लेता है। कभी कभी मित्रों, कभी कभी सफाई देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सामने वाला सुनने की योग्यता ही नहीं है। तो जो कोई आपके बात ना सुने, समझाओ बतलाओ ना सुने, छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो, अपन कर्म जाने, वो देखे का करे सके है। मित्रों, इसीलिए खुद को उस स्तर तक पहुंचाओ जहां तुम्हारे मौन उपस्थिति भी प्रभाव डाले। जहां तुम चुप रहो वहां भर लोग समझ जाए कि एकरे आगे ना बतियाई, ये तो कुछ ना बोलत है, आंतु और ना ही देवत है। मित्रों, तो दोस्तों, हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, और उसे मुस्कुरा कर पार करता है वही असली विजेता होता है। जब तुम अपने डर का सामना कर लेते हो तब वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। मित्रों, और ये ना सोचना कि हम डरपोक है या दूसर कोई सोचे कि तू डरपोक है, नहीं, सो हाथ है निर्मित बस्त में से। और जो हम बतला रहे ना, ध्यान करके सुनते रहना, ध्यान करके सुनते रहना।

मित्रों, जो अंदर टूट कर भी, ध्यान करिए, जो अंदर टूट कर भी मुस्कुराता है वही सबसे मजबूत योद्धा है। हाँ, वही सबसे मजबूत योद्धा है, इंसान है। इसीलिए खुद को इतना सक्षम बना लो, इतना अडिग बना लो कि यह संसार तुम्हारे आत्मा बल के आगे झुक जाए, झुक जाए मित्रों, क्योंकि आप में वो शक्ति है। और जब मनुष्य अपने आप की पहचानने की भूल कर बैठता है भाई बहनों, तब वो अपने जीवन के मार्ग से भटक जाता है, हट जाता है और संसार की ठोकरें खाने लगता है, जैसे आपके साथ होवत है। हैं? नहीं, ऐसे नहीं होते आपके साथ, तो आप सही रास्ता पे हो, चलते रहना मित्रों, क्योंकि ध्यान करिए, क्योंकि वो स्वयं के आत्मा बल को भूल कर दूसरों की सोच धारणाओं और बातों में इतना उलझ जाता है, इतना उलझ जाता है कि खुद की अहमियत को खो बैठता है। और जबकि वास्तविक शक्ति उसके अंदर ही होती है, तुम्हारे अंदर है। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा साथी होता है मित्रों, आपके मन ही सबसे बड़ा साथी होता है, और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। शत्रु भी, तो दुश्मन बाहर ना खोजो, दुश्मन तुम्हारी कर्म से है, जैसा कर्म करियो वैसा ही मिले। प्रेम प्यार से रहिए तो प्रेम और प्यार मिलेंगे, और बिगी मांग खेलियो तो तुम्हारे सामने और बिगी मांग आ जाइए, तो टकराव हो ही, सुखी नहीं हो पाओगे मित्रों, सुखी नहीं हो पाओगे। इन सब बातों पे ध्यान रखते रहना मित्रों, हम सुमर बात नहीं बोलत हैं।

मित्रों, मैंने आपको भी बतलाया था कि मन ही आपका जो शत्रु है वो ही भी है। सबसे बड़ा शत्रु भी आपके मन ही है, मगर वो आपके हाथ में है। और यदि उसे, मित्रों, यदि उसे दृढ़ न बनाया जाए मन को, तो यही मन तुम्हारे अपने ही खिलाफ खड़ा कर देगा। अनहैप्पी मन तीख व्यस्त में अनहैप्पी अन प्रॉब्लम। इसीलिए सबसे पहले अपने चित्त को स्थिर करो, अपने खोपड़िया को ठीक करो। पहले अपने चित्त को स्थिर करो मित्रों। दूसरों के कर्म और विचार क्या है, ध्यान करना, दूसरों के कर्म और विचार क्या है, इस पर समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि उनके कर्म उनका अपरिणाम तय करेगा, उनका अपरिणाम तय करेगा मित्रों। लेकिन तुम्हारा रास्ता केवल तुम्हारे कर्मों से ही बनेगा। तुम खुद अपने भविष्य का रचयिता हो और ना कोई दूसर कोई, मित्रों। और यदि तुम अपना लक्ष्य निश्चित कर लो और फिर पूरी निष्ठा से इस ओर प्रयत्नशील रहो, तो कोई भी बाधा, कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास करो हम क्या बोल रहे हैं मित्रों। ये सब बेकार की बात नहीं है, सोचनीय बात है।

मित्रों, आप देखिए कि कितनी उम्र के हैं आप, और फिर भी आप सोच रहे हैं सुधरने की बात कि हम अपने जीवन में और बेहतर करेंगे। और बेहतर क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो आप? सिर्फ ज्ञान से ही जीवन को सुधार आ सकती है मित्रों। तो इसीलिए आपको हम इस रूप में, इस तरीका से ज्ञान प्रदान करते हैं। इच्छा हो तो ले लेना, अगर ना इच्छा हो तो चलते रहना। जिस गाड़ी में आप चल रहे हो उससे चलते रहो, देखो कहाँ पहुँचते हैं। कितने लोग तो चले गए, कहाँ गए पता ना है, उसके बारे में क्या बोलते हैं आप? तो आपके बारे में क्या बोलना चाहते हैं लोग, ये आप तय करते हैं। हम यही कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उन लोगों से मिलवाते रहना जो आपको मिल चुके या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, धन्यवाद आपकी ध्यान के लिए, और आगे बढ़ते रहना।

देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के आवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुनने वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं, जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी कोलेखास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोशिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सीतू, बीबी साहिबा, रहीम अक्स जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए। और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेखास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है। और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे हैं, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं, हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों है, जैसे कि देनहाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो देनहाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जा कर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनवालो मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं, एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय। क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है, विश यू अ वेरी गुड डे।

और आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुना है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुना है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया

चुनरी चुनरी ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं, तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर स्वागत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम शेष दोषण स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लालो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से रहे और दूसरा जो अटूट विश्व

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

मर के भी हजारों को याद आएंगे, मर के भी हजारों को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। सुनने वालों की सेवा में विजयंती नाथों का प्यार भरा नमस्कार। आपका जन्मदिन है, आपके घर पर एक नए मेहमान आए हैं, यानी एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया है या तो कोई जश्न आपके घर पर है, तो आप सभी को हम बधाइयां पेश कर रहे हैं। जो बीमार है या लाचार है तो भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसके घर पर विपत पड़ी है भगवान उसे सहन शक्ति प्रदान करे। जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं हम आपको हृदय से स्वागत करते हैं, और जो विदेश जाने वाले हैं हम आप सभी को एक शुभ यात्रा पेश कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जिस हॉल में भी आप हैं, आप सभी को भी हम याद करते हैं, और जो लोग इंटरनेट द्वारा हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं आप सभी को भी हम याद करते हैं। सुनने वालों, अब से लेकर दिन में 12 बजे तक मैं आप सभी की सेवा करने वाला ही हूँ, इसी आशा के साथ कि जिस तरह से मैं अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश करूँगी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया, फ्रॉम द मूवी बेताब से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर भजन हम आप सभी के वास्ते चलाने वाले हैं और आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी, फ्रॉम द मूवी नया रास्ता।

फ्रॉम द मूवी नया रास्ता से हमने पेश किए हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुनमति दे भगवान। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा।

फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा, इसी फिल्म से हमने पेश किए है वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, किशोर आपको सुनाने वाले हैं।

चोर मचाए शोर है फिल्म का नाम किशोरडा आपको सुनाने वाले थे। घुंगरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, नुमाइती मुकेश जी की आवाज में भी आप सुनेंगे। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह रहे हमें भूल जाए।

अभी आप सुन रहे थे आंसू भरी है ये जीवन की राह है, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। एक बहुत सा सुंदर गीत हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं।

फिल्म का नाम है दिल दिया दर्द लिया। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, दो दिल टूटे दो दिल हारे, हीर रांझा है फिल्म का नाम।

लता जी आपको सुनाने वाले थे दो दिल टूटे दो दिल हारे फ्रॉम द मूवी हीर रांझा से हमने पेश किए हैं। तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर लता जी और मोहम्मद रफी जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी सबक से।

तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर, हमें याद रखना। लता जी और मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी जी मिलकर आपको सुनाने वाले हैं एक बहुत सुंदर सॉन्ग है ये, फ्रॉम द मूवी आराधना से हम पेश करते हैं

आराधना है फिल्म का नाम। आशा भोसले और मोहम्मद रफी जी मिलकर सुनाने वाले थे। गुनगुना रहे हैं और खिल रही है कली कली। याद ऐसे करो कि हद ना हो, भरोसा इतना करो कि शक ना हो, इंतज़ार इतना करो कि कोई वक्त ना हो, प्यार ऐसे कि कभी नफरत ना हो। यानी प्यार ऐसे करो कि कभी नफरत ना हो।

है किसी के प्यार में अभी आप सुन रहे थे। लता जी के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी रामपुर का लक्ष्मण। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं।

मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, लता जी आपको सुनाने वाले थे। कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीत जाने पर समझ आती हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सौदागर से हमने पेश की है इलू इलू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह और मनहर उदास आपको सुनाने वाले थे। आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गए, चांद का टुकड़ा है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

चांद का टुकड़ा है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुन रहे थे आई एम वेरी वेरी सॉरी तेरा नाम भूल गई। गोरी का साजन, साजन की गोरी, लो जी शुरू हो गई लव स्टोरी।

बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी अंजाम से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ। फ्रॉम द मूवी दिल का क्या कसूर, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कुमार शानू पृथ्वी, यानी कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

0: रमा
1: हाँ
0: आज तुमने अरुण को गाते हुए सुना?
1: अरे सुना ही नहीं बल्कि देखा भी,
0: लोगों को उसका गाना।
2: दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दिल का क्या कसूर। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला।

कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दीवाना से हमने पेश किया है। सुनने वालों, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं।

ऐसी दीवानगी अभी आप सुन रहे थे, फ्रॉम द मूवी दीवाना से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूँ, फ्रॉम द मूवी दिल का क्या कसूर।

जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जा भी दे दूँ। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दिल का क्या कसूर।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारी प्यार भरी राम राम, नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस वीकेंड एंड यानी हैव अ नाइस एंड ब्लेस्ड संडे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Till next.

0: सादर नमस्कार अदाबर। जैसे आप लोग के मालूम है तो ये हमारा देनहाक्षर का स्ट्रेंजर्स जो अपना फुल साज और संगीत लेकर इस महफिल में हाजिर है आप लोगों की सेवा करने के लिए आ रहा है पाकिस्तान से आपका मशहूर गायक बॉबी जेकब।
1: I will present the grandiose Bollywood live show Sunehri Moments। इस शो में भाग लेने वाले हैं पाकिस्तान और भारत का मशहूर गायक बॉबी जेकब, co-singers Najam Murad।
2: प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज। आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाश वाणी।
3: जो लाखों लोगों के जीवन का दर्पण है,
4: एक महल हो।

0: 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: पलेखन है फिल्म का नाम. इसी फिल्म से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में सुरेश वाडकर जी आपको सुनाने वाले हैं मेरे सनम तेरा खत मिला.

मेरी सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा, खत से पहले मैं आ गया। भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पाले खान से हमने पेश किए हैं मोहब्बत के दुश्मन है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ जानू मेरी जान भी तू है, अलका याग्निक और सुरेश वर्कर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ओ जानू मेरी जान भी तू है, फ्रॉम द मूवी मोहब्बत के दुश्मन से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, एक बहुत सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आज के इस प्रोग्राम में। मोहब्बत इबादत, मोहब्बत है पूजा।

अभी आप सुन रहे थे मोहब्बत इबादत, मोहब्बत है पूजा, मोहब्बत से बढ़कर नहीं धर्म दूजा। सुनने वालों, ये तो सच है क्योंकि मोहब्बत से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, नफ़रत से नहीं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है, मधुबन खुशबू देता है। उषा खन्ना जी, क्षमा करना सुनने वालों, उषा खन्ना जी आपको सुनाने वाले हैं, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। चलिए मिलकर सुनते हैं।

क्षमा करना सुनने वालों, यशुदास और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुना रहे थे। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, फ्रॉम द मूवी साजन बिना सुहागन से हमने पेश किए हैं। और इसी गीत में अभी आपने सुने हैं कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और हमें ऐसे ही अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए ताकि कोई दुखी ना रहे। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं सुनने वालों, लेकिन अगर हम कोशिश करें सभी को खुश रखने को तो क्यों नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। फ्रॉम द मूवी सफ़र से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सफ़र, से हमने पेश किए हैं जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, और ये सवाल तो होता ही रहेगा कि कभी ना कोई समझ पाया है और न कभी कोई जान पाया है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी वो रुलाए।

अभी आप सुन रहे थे जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी वो हंसाए कभी वो रुलाए, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं और सुख दुख हमेशा जिंदगी में होते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप।

अभी आप सुन रहे थे ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाव धूप। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम चलाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी शोर से आप सुनेंगे जीवन चलने का नाम, चलते रहो शुभ हो शाम। महेंद्र कपूर जी के साथ में मन्ना देवी जी आपको सुनाने वाले हैं।

हमद मूवी शोर से हमने पेश किए हैं जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। महेंद्र कपूर जी के साथ में मन्ना दे जी आपको सुनाने वाले हैं। पता नहीं कि कितने लोग ये फिल्म यानी ये फिल्म को देखे हैं, लेकिन इससे एक सीख मिलती है सुनने वालों कि हमेशा इस फिल्म में मनोज कुमार जी कहते थे कि जिंदगी में कितनी शोर है और एक हादसा हो जाता है उनके साथ तो फिर वो कभी सुन नहीं पाता है और एक छोटा बच्चा है और बच्चा तरसते हैं अपने पापा के प्यार के लिए क्योंकि उसका पापा सुन नहीं सकता तो वो लिख कर बताते हैं। तो कभी कभी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है सुनने वालों कि अगर आप हमेशा कुछ कहेंगे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं है तो ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं और जब वो सुनने लगते हैं तो बेटा बोल नहीं पाता है। यानी हमें कुछ ना कुछ फिल्मों से कुछ सीख मिलती है। तो ज़िंदगी में अगर आप हमेशा कहेंगे कि ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं तो ये गलत है सुनने वालों। चलिए ये गीत हम पेश करते हैं किशोर दा की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी दूर कराही। जीवन से ना हार उजीने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे जीवन से ना हार ओ जीने वाले, और ये सही है सुनने वालों, क्योंकि अगर आप हार मान लेंगे तो जो आप अपने ज़िंदगी में चाहते हैं वो आपको कभी हासिल नहीं होगा। हार मानने से कुछ नहीं होता, ज़िंदगी में आगे बढ़नी चाहिए। आशा भोसले जी के साथ में बप्पी दा आपको सुनाने वाले हैं, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी खोना ना।

अभी आप सुन रहे थे जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। लेकिन कभी कभी तो रोना पड़ता है सुनने वालों। ऐसे हालात में लोग आ जाते हैं कि आंखें नम हो जाती है और आंसू थमता नहीं। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है।

अभी आप सुन रहे थे दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। सुनने वालों, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ और वो कहानी तीन दोस्तों की है। कहानी तीन दोस्तों की, ज्ञान, धन और विश्वास, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक वक्त आया जब तीनों को अलग होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया। ज्ञान ने कहा मैं मंदिर, मस्जिद या स्कूल में मिलूंगा। धन ने कहा कि मैं अमीरों के पास मिलूंगा। विश्वास चुप था। दोनों ने चुप होने की वजह पूछी तो विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूंगा। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

0: Op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: सुनने वालों यहाँ तक आपने सुने हैं विज्ञापन और प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ऑफिसर से आप सुनेंगे एक बहुत सा सुंदर गीत हमने चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते ज़रा सा हम देखें जी हाँ सुनने वालों प्रोग्राम हम पेश करते हैं यानी बढ़ाते हैं ऑफिसर है फिल्म का नाम इसी फिल्म से हम पेश करते हैं फूलों से रंग दरिया से मौज ले ले चलिए मिलकर सुनते हैं और ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते

अभी आप सुन रहे थे फूलों से रंग दरिया से मौज ले ले फ्रॉम द मूवी ऑफर से यानी ऑफिसर से हमने पेश किए हैं। सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बॉर्डर से हम पेश करते हैं और ख़ास करके ये गीत हम पेश करते हैं उन सभी के वास्ते जिनके परिवार विदेश में हैं।

अभी आप सुन रहे थे संदेश से आते हैं फ्रॉम द मूवी बॉर्डर से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, और ये गीत हमने पेश किए हैं उन सभी के वास्ते जिनके परिवार यानी जिन लोगों के परिवार विदेश में हैं। और कभी कभी ऐसा होता है भी सुनने वालों के माता पिता यहाँ पर रहते हैं और बच्चे विदेश में रहते हैं, और ये जो संबंध उन दोनों का होता है तो बहुत तकलीफ पड़ती है बच्चों को और माता पिता को भी। तो चलिए ये गीत हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी करण अर्जुन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है।

फ्रॉम द मूवी करण अर्जुन से हमने पेश किए हैं ये सुंदर सा गीत, और ये गीत हमने पेश किया है ख़ास करके उन माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे विदेश में हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसते हैं और माँ बाप भी, लेकिन कुछ तो वजह होगी कि बच्चे वहाँ पर है, माता पिता यहाँ है, या तो फिर माता पिता वहाँ है और बच्चे यहाँ पर है। सुनने वालों, ये गीत हम पेश करते हैं, ज़रा सा हम देखें। जी हाँ, गीत का बोल है, कुछ कर ले कुछ भी कह ले, एक हिंदुस्तानी से पंगा ना ले।

कुछ कह ले, कुछ भी कर ले, एक हिंदुस्तानी से पंगा ना ले। सुनने वालों, एक और ऐसा ही गीत हम चलाने वाले हैं। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, और ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि हम जहाँ पर भी हैं, जिस देश में भी हैं, दिल तो हिंदुस्तानी होता है ना।

अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, उदित नारायण जी के साथ में अलका यानी उदित नारायण जी आपको सुनाने वाले थे। मैं तो रास्ते से जा रहा था, कहाँ जा रहा था मुझे तो पता नहीं, लेकिन कहीं जा रही थी और किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं,

फ्रॉम द मूवी कुली नंबर वन से अभी आप सुन रहे थे। मैं तो रास्ते से जा रहा था, कहाँ जा रहा था ये मुझको नहीं पता नहीं मालूम। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक।

फ्रॉम द मूवी तुम सा नहीं देखा, इसी फिल्म से हमने पेश किए है मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक। शान और श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, आजकल तो यानी कई आजकल नहीं लेकिन कितने दिनों से सेल्फी का ज़माना है भाई, लेकिन हम कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि लोग भी फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो चलिए हो जाए तो खींच मेरी फ़ोटो।

अभी आप सुन रहे थे खींच मेरी फोटो। और फोटो खींचने के बाद सालिमा, मेरा तो गला सूख गया है, कोका कोला पिला दे।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोग को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारे प्यार भरिए राम राम, नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a nice Sunday and take care of yourself. Till next time.

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता जी दे हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी आदाब, सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

इस चूल से आम की तो जरूर पता चल चुका होगा, पता चल चुका होगा कि हम स्टूडियो में आ चुके हैं। एक ही दम हम चलते हैं अपनी समाचार की ओर। तो दोस्तों हम तुरंत जाते हैं सूरीनाम की ओर, हम तुरंत जाते हैं सूरीनाम की ओर कि सूरीनाम में क्या हुआ है, क्या होता है वहां के सिचुएशन, आपको बड़ी मीठी जुबान से कोशिश करेंगे बताने को। अब देखो भैया दृक्षवा के चिजुआ सनमुआ में एकदम उफलाई गए भाई, उफलाई गए नानी कानी कितना कितना मिले भैया, ना एगो दुगो बोले चस वाला भैया, 7 किलो के हिसाब से पूरी मिले है श्री नाम में भैया, पूरी मिले है ना भौजी लोन जो गलवा में लगावे है ना कुनुआ से जो सूंघल जा दोस्तों, और ये वही पूरिया है जो यहाँ से हुआ जाए भैया समकाल होवे है। तो ऐसे भैया कैसे स्ट्रांड के सिपाही एगो अख्तन फेफ तक यारख आरेस्टांट इस ऑन फ्लग भाई भगल है, हाँ सेलन हर्ष कैसे स्ट्रांड से एगो अख्तन फेफ तक यार के आरेस्टांट भाग्य भैया, और है के ई अदमिया भैया अख्तन फेफ तक यार के एकर पैदाइश भैले कोलंबिया में, एके बोले कोलंबिया जॉर्ज एलिजेर आरिसा ओर्टेगा, हाँ इतना लंबा नाम है मौसी। तो एके बोले ई रहा एगो बड़का क्रिमिनल और खानी साक्षी के अरमे रहा जो न तरी मनी बोल चस वाला भैया खरूच खालक दृक्ष हंदल्ला, और एकर पास वापन फिर वापन रहा भाए, और एक के समन बन कर ले रहा निकर के भाग्य कैसे स्त्रात। अब सोचो भाग्य है नानी कि कोनो भगाई से ये बतिया हो सके, तू वंद्रिक्सोन वाला अरमियन के पैसा भैया हिया से हुआ रहे हैं, और तो जाने हमारे सिपाही के नाम सूरीनाम में बड़ी ऊंचा है नानी, इतना ऊंचा है कि का बोली भाई बहुत ऊंचा है, और खूब पकड़ाए पकड़ाए बन हुए तो विश्वास तू कैसे करियो कि कैसे स्त्रात के सिपाही एक भगाई से कि अपने से भगल है बड़का और खानिस्तान सिकी कोलंबिया रहा, और इन करके कैसे स्त्रात से भग्य है बोले कोलंबियान, बोले जो जेके फिनिश वे लांस नेशनली टाइट रहा, और बोले बड़का दिल नाम राफान क्रिमिनली टाइट के और खानिसासी, और बोले है एकर पास सवन के मिलल रहा कोकाइन मिलल रहा भैया असीसी पेल मिलल रहा मीटा फिटा मीना मिलल रहा, और मरवाना हाज सब एकल लगे पाए रहा, ऊपर से बंदूक पिस्तौल सब पाए रहा एकल लगे। सोचो तो ऐसन आदमी के सिपाही बन करी चौके चाहे भगे के बाकी भगे के भगा दे इसे कई शस्त्रात के सिपाही नानी, बोले दे साख वारे ने फरत्रख्त बत्रों के नीस इस ऑन द सूक बहजी स्टील अन अन फिर वापस वेत में, तो बोले है कोलंबियान ओम स्टीक हमारो अंदर है ए द सेलन हाउस इज ऑन स्नैप मेंस, तू जाने भाई सिपाही सर नाम के विश्वास करे लाइक ना है नैनी रघुनंदन मोहबीर फेसबुक पे हमारा प्रोग्राम में आकर जुट गए, आपको हम स्वागत करते हैं नैली जी। तो सिपाही लोग के नाम बड़ा ऊंचा हमारा सरनाम देश में भैया, और हमारा मथुरा का वो ना मथुरा मनोरथ का बोले कौन मनोरथ है, अरे हरीश मनोरथ भैया मिनिस्टर फान यूसीसीएन पॉलिसी के बात करी ला हम, ते मनोरथ बोले तू खांग फॉर फ्रिंग द लिंग नीत इन फौदख
tal van gebieden in binnenland nog niet in beeld. Want Chinoake Jaike Brunswijk, Apres, Ego Grip, Chinoake Pakrice, John Chinoa, Barka, Barka, Banduk Leike, op binnenland met zijn bewakkeratra, Apan Sonake, Brunswijk, Gele Sapke, of Skoutu Surjati Sapke Pakarke, of Laike Bankarice, de Ekermare me, Hanis Manoraj Bole, UCC, Bole de toegang van vreemdelingen tot Suriname in de huidige situatie relatief eenvoudig willen bijdragen aan de situatie die zich dinsdag in het binnenland had voorgegaan. Willen dat zijn Chinoa

ऐसे किस कौतु के मुंह में से चीज कैसे चोरी हुई है, तो ओकर बारे में मनोरथ ना बोले बोले अंदर सुख हो भैया, वो अंदर सुख होते रहेगा। बोले हु कॉम तैत दैट सो फील फ्रेम दिलिंग एसोसिनल फॉर ह्यूनिंग क्राइकन आस वे हैत हेल प्रोसेस बकाइकन बतेकन है दैत एरखस करप्सी प्लाच फेर एक होर इन द वांडल खांग दैत मेंसर फॉर $2,000 गोन अन फॉर ह्यूनिंग कुनन क्राइकन इन दी एन इज ऑल यार खान तो €2,000 जो तुके है तो तुके सरनाम के फॉर ह्यूनिंग मिल जाए, मतलब फॉर लाइफ के भैया यहाँ बतावे तो हमारे देश में सरनाम में का करप्शन है। बरा मलिजवासी हमें सोम्स हंसे के परे भैया कौन बिकाऊ ना है, बहुत कमती भैया €2,000 जो तू धरिए तो जाए के फरखनिंग किन लियो और चिनवा धर के बंदूक भी पाए जाओ जाए के बेनालांत में से बफैलक करे है। तेकर बारे में भैया मलाई रायमोन सपून का बोले है, यो ही सपून है भैया जो उनका बोले हैगा निकर के पेल में से जाए के NDP में घुस के और आज फिर बैठल हैगा काबल दीना में। अब यही रायमोन सपून का बोले बोले सोरा चिनुआ जो सारा क्रेक कबीट में बोले पकड़ान है बोले सिम टोन बस्त्राइनिंग के बोले मैं दत रखेरिंग शाम में डे पार्लियामेंट मुसितन ओम द खफासीजेर नेशनल प्लान फॉर अनपक आउट स्ट्रिपलन। तो भैया फिर यहाँ पे के पार्लियामेंटारी सीधरिक सामसून बोले है बोले मेदर बदराई फन इन्हें बेला नाम सहेंदी एकन फेल खाई जिंस्टन हेबन एंड दार फॉर ओक वापस ते बस्की खेबन खसींद ऑफ दिलगन। बोले किनुआ के खाली ना बोले औरो ढेर है, औरो ढेर है बेनलांत में जो सबन ऐखब फैल के हुआ धरे है ओम दत सुनवा जे खोदे भैया बहुत जबर रूफ हुए है ऐसे बतिया है। तो बोले एक के खाली चिनु हुए थोरो बोले औरो है बोले जो हुआ बफैल करे थे एकर बारे में शंगरुई वंग का बोले हैगा फ्राक्सी खनौद बोले है बोले चिनुआ बवाकस एन आन खौदन अफफूर्त हेड बदरेफ ऑन बवाक इस अख्तर खलातन बोले जोन बदरेफ अब सुनवा खोदत रहा बोले अपू बवाक रहा ओके तभी सब रूफ कली हीर तो सेन उक स्पिल फन बदरेफ उक दर्दन वे खनूमन है फ्राक से आफी तो ऑन द नेम एन हीर फॉर साल फॉर खुदन तो चिनुवन के बफेल खेंगन के तू पकल ले गए बांटे और जेकर बदरई फो आएगा अपू ऑन बवाक थुआ बा अब हुआ से चीज चोरी हुए के सुरी हुई गए तो अब लांटी से पूछे कि ऊ अरमियन ऊ बदरई फो के अब जाएगा देख करे दिखाई ले तो बाटो की तरह चिनुआ पकड़ के ले गए लो बाटो जोने को बदरई बवाक करत रहा मैं अब पकड़ के ले गए बाटे तो तू अपन आदमी हुआ धरू सबके बवाक करे कि तू वहां जे तो के कोई ना तू सब का करे दिन इन तीन ताले या नीत और फिर देख ले के मनीर खबीर met ondersteuning van DNA zullen in komende tijd wetgevend producten worden ingediend, zodat wij kunnen nagaan wat wij als land willen. Volgens minister kunnen buitenlanders nu als toerist het land binnenkomen, orbole hega waarna de militaire politie slechts één zoomier onderzoek verricht voordat de toegang wordt verleend. De IC, want ja, hij bija. To i hamar hanis manorat jon hai. Bole 2000 bhariyo. Ta bole korupsi etra hai. Ki jai ke tu. Bole go for cleaning tu paaje. Yo IC, want ja, hai hamari ye nani loan. और हमारे प्रोग्राम में आ गया है हर हफ्ता की तरह धर्मेंद्र श्री आपको स्वागत करते हैं। राज रामलगन भी आ गया है, आप सबको हम प्यार से स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। अब देखो सुर जाति भैया तो लोन जानो है, सुर जाति लोन देश के खात लड़े है, देश बचावे खात लड़े है। देखो ईरान में का हुए, अमेरिका में का हुए है, फेनी रूसलैंड में का हुए है और उक्रेन में का हुए हैगा, सब सुर जाति लड़ाई वाला है भैया। आ हमार सरनाम के सुर जाति पिस्तौल लेके अपन घोड़वे में ताक लेवे है राज। हमार सुरजतियन के ना हसीला भैया मैं देखिया बतावे मिलिटर ने इखनन तो वेन तक यार के इन बेन खसकोतन ना ऋषि मेतन मान दी बके साथ आसोम्बी कोनो सोम्बी से भैया गैला लड़े ते सुर जाती जो देश के रक्षा करे वाला भैया सुर जाती गल दाग दी जरे अख्तर बोफर बेन में
Hier werden omstanders Bolelege Academie ziekenhuis mee. Militairen raakte hij verwikkeld in de woordenwisseling met een man.

यजमान दिबकेस्टात आ ज़ोंबी से सुजाती लड़त रहा मुसे और बोले तेजे ता हंड खमीन सा ज़ोंबी अ रिवॉल्वर ओक वेल अ लोलो बाल खनोम हेवन खतरोकन एंड फिर तो फाइव स्कोट इन द रिक्टिंग है स्लाफ्ट ऑफर हेवन कस लॉस एन फन द कोफकल Trof de Surjati in de rechterbeen te ilolo ala hem nee lolo ala pistool kan je nu maar jij zegt veel een moord met de kawe je nu moet je de kar draai kreeg amita bachan wala raka ja je kar draai kreeg bole goli kaan bole goli kaan bole goli nahi hai te bole aap goli ka to ye ohi bola wala ko hai ke bhaiya te e ka bole Surjati ke dagdi se gud mein aur ka bole ramiya ka naam ba zombie bhaiya zombie ladat raha तो ये बांचित है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा प्यारे प्यारे अब देखो भाई एगो बाप का करिश मिंदर यारख सोन ओतो के कॉफर में भर के और भैया मर्चा लगा दे इसे हुआ पे जान ना चाहे लगावे के भैया खसला दे लोई में लगा दे इसे लंडवा के और लंडवा के बारा में सांदल करी से बपुआ यहां बतावे है अने अने हेव था स्कैर्प पेपर ओप

Kakrisye escape na bala bala ajuma bai cha bale ajuma bhaiya ajuma chmarcha okar khasla khful khadilan van het lichaam van de minderjarige oke laga di se bhai o mar lundwa ke laga di se ga socho bhaiya i me sandling hai ki na i banchit hue hega mart me tab maiwa kakrisye bhaiya maiwa kakrisye Geil he, op wolle Maiwa bi betrokken hega. De verdachte had via de moeder van de minderjarige vernomen dat zijn zoon mogelijk betrokken was geweest bij ongepaste seksuele gedrag. Dus ilondwa tera bariske bhaiya ongepaste seksuele gedrag ra. Aur ik laga deze marcha bapua ke bolle ra Maiwa. Op wolle tijdens de rit plaatste de verdachte de minderjarige auto ke koffer me bharke lege he op bolle hege omstanders dusdanig alarmeerden op bolle skoutu belke te skoutu bapoke pakarke lege he op OM kakeri se bhaiya ouder de wettelijk en morele plicht heeft zijn kind te beschermen op bolle op te voeden en een veilig omgeving te bieden ongeacht de aanleiding voor hem vermeen op roke bap maike te verplicht rauw ke kareng ma patana he ook er asli baap he bhaiya ki nakali baap he tu jane sti vader bhi hove he to bolle de ouders van de minderjarige waren reeds uit elkaar. Volgens de verklaring van de meerderjarige liet de verdachte zich tegenover hem herhaaldelijk negatief uit over zijn moeder. Het OM stelde in dat een kind op deze wijze wordt betrokken bij de strijd tussen ouders en dat is schadelijk gevolgen. Dus je bapua mewa. Isab kabole hega skeide hoochukal ha. To ik er baare mee. Ab ikke 12 mahinna ke. OM Jahal Mangi Sega veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden vroegtijdig te ilondwa op kakere bab mai na hai bhaiya sanghe te i verwaarloos hoge seksuele handel karatra ab apu ajai ke marcha nahim laga di se te apu marbo kari sega te 12 mahin baris are 12 mahinna ab jao fruiti karo bhaiya ab tor saat kaha marcha lagi kaha marcha na lagi tulun jano hai Jahal me marcha लगावे कि और कुछ लगावे भाई सेक्सुअल मिसब्रेक के बारे में तो हमारा प्रोग्राम में चित्रा उतार भी आ गया है स्वागत करते साथ साथ शारात सारदेशा आ गया है मीला जी हाँ अब समझ गए हैं तो थैंक यू वेल फॉर सो फिर हार्चेस अब हम जाई है देखो हम जाई है फिर यहाँ पे सरमक्का के और महेंद्र जोगी लगे भैया जोगी के अधीन फोर्स इतर रहा ओके निकार के बोले बहरे तू भाग जा ओम जय जोगी बोले रहा अधीन के बोले इतना सलेक्ट फोर्स इतर दे रहा हम लोग के कहीं ना मिले बोले तू सलेक्ट बाटे बस अधीन उधियाएगा दुनिया बोले अब से उधर भीतर बोले तू सलवा मत निकल बोले तू क्लोइतर बाटे तो जोगी जाए के बोले क्लोइतर बाटे तो क्लोइतर लाइस्टर बाटे भैया का होवे देना में लड़े है जैसे कोई कुत्ता बिलार भैया झौंझियाए तो यहां अब जोगी रफीन से गईल है तो अब उ बोले है जोगी बोले हम मांगे लान जोन तुलन इतना ढेर बैतल से रईस बनावे है जब देखो तो सिमोन चल जा है तो गगरी रिस्ट लान चल जा देव देखो तो बैतल में रहे है तो अब बोले हम मांगे लाए जाने कि बैतल से रईसन दी मिनिस्टर इन अफखलों पर रखेर यार hebben gemaakt. Daarin moet volgens hem staan welke ministers zijn afgereisd, waar ze naartoe gingen, wat het doel en rendement van de reizen was en hoewel geld daarmee gemoeid was. De jogi bole assemblee me bole hamangila sab jane ki tulung gaile hai konchi kalle konchi nakal baad bhaiya parmeshwar ka bole hai understand transparency over this reason mar bole hai parmeshwar bole ha bole hum bhi mangila jane the ndp ke parliamentarian rabin parmeshwar bole hai reaksi me daarop dat het verzoek op openheid een reactie verdient hij zei verheugd te zijn dat de oppositie
Commissie nu eveneens het belang inziet van een transparante werkwijze. Al dus permisser, bolle hambilo mangeljane, bolle apkeise, bolle akia koele oppositieke. Aise boli se hamari janta hamana boli la hiya joon likhal hai. O to batawe ke to hamara kaam hai. Naya ro hum chalte hai. हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर हमारी जनता हमारी प्यारी प्यारी जनता सुरिनाम में बड़ी अरेडिंग हुए भैया बड़ी ब्रोफिसर मरे देखो यहाँ का भैले जब देखो इतना अरेडिंग हुए है फरकेर में अबे को ब्रोफिसर भैया जात्रा मखेंता कनाल वेख में मखेंता कनाल वेख में को ब्रोफिसर जात्रा भैया और ओके मारिश ओतो मारिश ये रमिया का भैया जहाँ वो मास्टर के फुटबॉल फैलतुआ है हुआ तो हरदम रुकीला भाई तब वो मास्टर के फुटबॉल फैलतुआ लगे हुए पे मारिश ओतो 10 बजे एंड 3 for 11 सिपाही पाई से ब्रेक के को ब्रोफिस के मारी से दिस दानक एरस्त खवों दत है तेर प्लाट से ओवरलीड कि मर गए भैया द बस्ट्यूडर फन पर्सन इस ऑटो रेड ना आरेडिंग दौर सोंदर से ओम है स्लाक्टोफर ते बकोमरन और उतो वह मार के भैया भग गए ये बहुत दुख के बात है होई से कैसा है जब जा स्लाक्टोफर वाले गए लेके दतरा onderzoek en de verklaring aan kan je niet die bestuur wat krijgen we iets weer naar haar maar op bij hem ook erbij met al fini fini aan blokken hem wat abe to beta snij bij aangeja hem beta jee aan kom zwagen karte sat is aan aangeja hem gita bij aangeja hem to gita jee aapko bij hem bahut pjaar se apna program me zwagen karte hem तो अब तो जाने हैं विलम होलीडर के बारे में नीदरलैंड की न्यूज़ है और ओके सेवन पकड़े रह जाए कि दुबई में भैया बहुत आदमी के मरवाई से तो जाने पीटर दफरिस के मरवाई से ओके सेवन दुबई में जाए में पकड़ के नीदरलैंड आयल है और एक स्ट्राफ सेख में एडवोकेट एक खात ना मांगे लड़े एडवोकेट ना मांगे लड़े वन एडवोकेट के भी पकड़ के सिपाही बंद कर ले रहा वन ये रमिया इतना ढेर पैसा है विलम हो लीडर के कि सब कुछ मांगे कीने तो हो लीडर वर्थ ना 11 यार 11 बरिस बन रहा अब उ गए लेगो एक्स्ट्रा बफेल द इन रिक्टिंग में और हैगा फख्त में फख्त में जेने लैंड में हैगा बहुत लोग के पता है फख्त में को बहुत बड़का खफंगने से जैसे सांतो बोमा भैया बाकी ई और जबर चीज है फख्त में यहां के बफेल लिखिंग बहुत स्वार है तो सबसे स्वार द्र अने बफेल लिखिंग अने का बोले हैगा खफंगने से मिले जाए के धरी से और बोले हैगा स्टाफ सेक्रेटरी क्लोडिया फन ब्रुकन जिसी एन फेलेगेट के बोसलेस करी से कि सेख होले इधर एडवोकेट सुक के persbureau में बताई से कि 68 यारक होलीडर अब ओके मिलल हैगा लीफंस लंग सेल उ कभी ना निकलेगा या बताई गई से नानी बोले जिंदगी भर अब तू नानी करिए बोले हैगा फोर्स एंड ब्रोकन है सीरी मोर्दन में मर्दान 11 11 यार साथ बे है इन एक्स्ट्रा बफेल द इरेक्टिंग एबी में इन फिर द स्ट्रेंथ बफेल द गेवंगनिस फ्रॉम नीदरलैंड और बताया गया दोस्तों इस महीना में राज फॉर स्टाथरेक्स टू फासिंग यूथ बस्केरमिंग स्टाथ सेक्रेटरी फ्रॉम ब्रुकन नौ बसलाइज करीज के होलीडर खफानिस रखीम में जाएगा आर्नो रित हाथ होलीडर फरब्लेव इन एबी ओंडांग्स द अपी पाइसेगा लीफंस अने यानी कि लीफंस लंग के जहल पाइसे दोस्तों और हम बताएंगे विलम होलीडर के बारे में हमारे जनता और आगे हम अपना प्रोग्राम के लेकर चलते भैया चलो जानो फेनिसवेला में आज बेफिंग जबड़ा आयले बहुत आदमी मरल है फेनिसवेला में सुरिनाम लेकर ना पहुंचे ले भैया वहां सुरिनाम तो फेनिसवेला से दूर ना है लेकिन अब मेक्सिको में भैया के सुवारा आज बेफिंग फॉर द साउथ वेस्ट कोस्ट में मेक्सिको में और मोखलक हैगा कि एगो सुनामी आ सके हैगा मेक्सिको में दिस एक हो में हार्ड फास कि सुरिनाम में न चल जाए भैया वन दिस सोर्ट
aardbevingen gaat door, mensen. Die gaat gewoon door. Oh, hier hebben we bataille gegeven. Zuidwestkust Mexico mee. Zware aardbevingen. Eiland Jahan. Kabul aardbeving. Krachtra 7.4 is heel groot, mensen. Amerikaanse geologische dienstbataille. Zeker waar mee. Bolle een 10 kilometer diepte. Porto Madeira mee. Vlak bij de grens van Guatemala. Ke grens op Mexico. Ke. Bolle gaan. Waarschuwing krijgen dat mogelijk een tsunami aanhe wala hai dosto. Maar laten wij goed volgen. Kietje joa oisje hai ki abbe doro na awe bhaiya. Want we weten allemaal de grootste tsunami die we hebben gehad namelijk. Die is voorbij, maar hoeveel schade had hij gedaan? Ik hoop het niet dat er zoiets gebeurt. Maar in Venezuela hebben wij namelijk de aardbeving gehad waar honderden mensen overleden zijn, daklozen zijn. Hamlo Janela vindt die zo heel aan mij. Kabaile toch? Toen je bandje hoor, ha, he, hamare, piare, piare, mita, mita, janta. Abbe deko, chakalas, bhaiya. Abbe Amerika, Iran, Katoria, hamataf, kabaile. Pahele, ham jai, Rusalantawa me ghusi, Ukrainoa me ghusi. सेलेंस्की भैया अब देख का करी से सेलेंस्की का करे भैया रुसलान के बोट जितना समुंदर में है सब के ड्रोन से दागे है इतो जैसे स्ट्रात हॉर्मुज के चियुआ तुलुन जाने ईरान है और अमेरिका हुआ पे लड़े है हॉर्मुज के जहां से तेलवा के बोटियन पास हुए है अब ई का करी से सेलेंस्की अब रुसलान के पहले सब राफी नादर रहेवन बहुत ढेर दागी से अब रुसलान के बोटियन दागे के शुरू करी से रुसलान के पुतेन सोचे अब का होई कहां शुरू करी और कहां एंड करी जाने चीजवा कैसे तुम तो यूक्रेन से प्रेसिडेंट जो रहेगा वो है सेलेंस्की अब ऊ का करी से भैया अपन आनखवीचा सेक्रेटर फॉर द नेशनल सिक्योरिटी के डिफेंसी के बोली से यहां पे भैया कि उस सब डिफेंसी के आउट मिनिस्टर क्लिमेंको आन फॉर सिक्योरिटी रात के धरी से को पुराना मिनिस्टर रहा डिफेंसी मिनिस्टर जो रहा leidde tot protesten in onder met Kiev. Even klonk dat Zelensky wilde aanwijzen voor ambtenaar. To abbe ik erba. Bare met trokke aur fini fini hem het abbe. Ki ka bhail hai. Au ka na bhail hai bhaiya. लेकिन लड़ैया जोन है बहुत जबर हुए भाई बहुत जबर हुए है उधर ईरान अमेरिका शुरू करी से दागे के मेरी तेरे दूले बहुत ढेर के दागी से एगो ब्रुक्की भी दाग दी से जहां ब्रुक्की पचे समान जात रहा ईरान के ओके डाक के तूर दे से और इधर ईरान का करे हैगा मिड ईस्टर्न में जहां जहां पे अमेरिकन से बासस हैगा जैसे हैगा का बोले हैगा यॉर्डानिया में वो सब के खूब दागे है देश की लड़ैया कब दोन हुई भाई बहुत आफत है और तेल हुआ लड़े भैया और हम लोग तेल हिया महंगा में चलो और हम लोग का बोले है किनो नीदरलैंड में तेल हुई है अनलोडेड 2.30 euro हुई है दोस्तों पर लीटर हैगा 2.30 euro हैगा प्लस मिनस कहीं पे एक चीज ज्यादा है और एक चीज कमती है बड़का दाम पे और महंगा हुई है बेना में और सस्ता है तो सस्ता का 2.30 euro है भैया और एक हफ्तो हम भले रह ली तम भले रही 2.24 euro पे लीटर और ये हफ्ता हम हुई है ये अब तो हम 2.30 euro होई गएगा तो दोस्तों हम और जाए भैया एसएलएम की ओर हां तो एसएलएम में हमारा टोनी इसरी भी आई है टोनी जी आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं अलमेरा शहर से आकर हमारे प्रोग्राम में जुट गया है अब देख का भले एसएलएम वहां के तुरिया
SLM heeft een persbericht verduidelijkt. Die bolehega luchtvaartmaatschappij geen officiële audit pijs van een internationale civiel toejane. Ze hebben een vliegtuig van keurker het. SLM ze hebben keurker die zegt dat die veilig is buitenland. Met urekina. Dus ze hebben een bericht bij dat die veilig is. Maar hier op de applicatie liggen. Bolle officieel audit snabij liggen. Van de internationale bolle organisation heeft ondergaan. Het ging om een vrijwillige veiligheid uitgevoerd door de Duitse bedrijven. Ook vrijwillige Duitse bedrijven. Oekraïne hebben een keer een officieel nabijle. De correctie volgt nadat eerder berichtgeving volgens de maatschappij mogelijk de indruk heeft gewekt dat SLM rechtstreeks was doorgelegd. SLM benadrukt dat dit niet het geval is en zegt onduidelijk te betreuren. De Isabolera AGK SLM ke mag in buitenland met bolle goedkeuring en veiligheid. Maar blijkbaar is dat de Duitse maatschappij vrijwillig keurkelera al SLM ke admi hoa pe bhaiya pagla ka dage lagala bombal dage lagala khaba kaate lagala gana gawe lagala ki hamlon pel deli bati aur na jamu is onderzoek kreeg, dat op later heb je op heel ga, dat bole hega, bole en bole hega, bole eisje na he, bole dit audit werd uitgevoerd, bole een geaccrediteerde een auditieorganisatie binnen het internationale programma. Hoewel de normen waaruit de controle was gebaseerd afkomt te zijn van ICAO, betekent dit volgens de maatschappij niet de straken zijn van officiële audit. De onderscheid acht SL belangrijk voor correctie en transparantie informatie. Nee, er mijn gana gawe he, akufariari he jena he, akabak katai legale manani, aise batia to, to reshma nibar sandinia bhi a gaya he, aapko hum bhi swagat karte he, apna nieuwsbericht ke, apna pyara pyara program me, to reshma nibar bhi a gaya he. और आगे हम अपना प्रोग्राम भैया सुरिनाम के स्कौतो के भैया हम लोग तीन पेन दे सकेला भाला रे समा स्कौतो ने इतना जबर बदमाशी करे भैया देखो कैसे स्ट्रासुट बड़का क्रिमिनल भगे छौ गो सात गो को के इनम पकड़ा रहा तो अब देख एगो स्कौतो फिर पकड़ाएंगे भाई सेरगियो भैया सेरगियो पकड़ा है पुलिसी मान सेरगियो भैया ब्राजीलिया में चले गए रहा ब्राजीलिया आए लोग के अंदर ये पे पकड़ ले से भैया एको 40 बरिस के सिपाही से नाम के सेरगियो से ही ऊ चल गए रहा ब्राजीलिया जैसे लौटल हैगा ओके अंदर ये पे पकड़ ले से पो ने प्रोक्यूर जनरल जो ने हॉफ जी सी के donderdag gemeld kreegsega, kieuwke sanrijpe pakreegsega, ojeremiakke hij wordt verdacht van diefstal, verduistering en medepleging, dan wel medeplichtigheid van diefstal en verduistering, zo tjoto bhaiya. Ja, likele gezochte politieman Sergio, to sipahi baate bhai. Oeetra, tjeje ton muriape ba. Ik er bare me bolehega. Een Brazilië naar Suriname is teruggekeerd op instructie van zijn advocaat. Vera meldde hij zich vervolgens bij de militaire politie. Vanwege geconstateerde onregelheden zal de advocaat Apikerwarem Kahoy to Irmaji Apko bhi hum bahut pyar se apna program mein swagat karte hain. Ye wohi hai Resma Irma Irma Ramtahal Singh. To Irmaji अब देख भैया निकेरी में का भइले गो पिया कड़ नसेड़ी में का करी से तोनिया देख नसेड़ी का करी से बोलिए जोनी ढकोले हो अरे ढकोले महाराज है ई दारू पी पी भैया और जब बीर कोई डाम पे जात रहा तो ओके गरियावत रहा लड़त रहा झगड़ा करत रहा उपिय कड़वन के तो हम भी जानी रे कोई जमाना में हम सरनाम में छोटा रही तो दुई गो तीन गो हमार रहा बीरवन नाम नाले भैया जो डाम पे पास हुए जे ही देखे वही के नानी माई उलटत रहा गाड़ी दे उत रहा आदमी डर के मारे कुछ ना बोलत रहा ओके एरमा सोचे का जाए न सीढ़ी के मुंह लगे का जाए न सीढ़ी मुंह टेररिजेर करत रहा पर सोलत कैनिक मेंस इन मेन ब्यूट
En ऐसे निकेरी भी एगो 58 यारक निकेरियाने भैया दारू पी के बीर लोग के भैया गाड़ी देवतरा सब कुछ कर ऐसे में एक रोज इतना ढकोली से कि 7 रात के ई बात हुए पीसांग का पकवे ते पीसान भैया ना बारा बनावे वाला पीसान रस्तवा के नाम बा रस्तवा के नाम बा पीसांग का पकवे में ते एगो औरत के भैया फिरन देर तक यार के औरत के का बोले है गा और ओकर 2 बेटुआ एगो 14 एगो 15 और ओकर बेटुआ के एगो संगतिया 19 बरिस के ओके सब के ई अदमिया पे कड़वा एम हा एर अनफाल करी से भैया औरत के 3 लड़कन के 14 बरिस के लड़कुआ के काटी से भैया काटी से ओकर हाथ में गहरा घाव होई गे है राज गहरा घाव होई गे है 14 के लड़कवा के काठी से और ओकर माई के भैया ओकर माई के भी काठी से कितना देही में कपुआई से ओकर देही में और बतावे हैगा ओफर फॉर वार्निंग बाय द अंदर अनवेज के इस निच कमेंट और बोले द पुलिस स्टार फरदाख्त बकेन आंस अल्कोहल फरस्लाव एंड सो बेट बुर्डबोनर फाकर हैबे uitgestelden uitgeschelden और बोले एक बार में सिपाही पारादेश के रमिया के पकड़ के ले गए हैं कोर्ट तेज लाते और उकर घर से और बोलेगा जो चे काटेरा उह पाई सेगा बस लाखली से अब ई जाएगा जहल में भैया नतीलक अब एक जहलिया में दरुया कैसे पाएगा कैसे पाई नानी तो ये बात है हमारी प्यारे प्यारे जनता हम सोची तो लुके को गनवा सुना दे ता अबे हम तुरंत आ जाएंगे विनीता गौरा पूजा भैया कोनो गाना चटनी है

और मोरे जग पुर मनिता फिरी और ये था एक चटनी जों जो आपके हम सुनाई दिया है। तो हम चलते हैं और आगे तो हमारा दिल बुद्धू भी आ गया है, आपके स्वागत करते साथ साथ रानी समुझ भी आ गया है। तो रानी समुझ मारा बहन होगा लेकिन बहुत सा ज्यादा समुझ है, तो आपको भी हम स्वागत करता है रानी समुझ जी, साथ साथ दिल बुद्धू भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में, सब पे जुड़ गया है। तो अब हम जाई भैया ई हम जाई है, जोन अनमी बड़ा जबर चूसे है कुको ही नानी। हाँ जानो हमारे काम है जैसे ही सुनुआ कुकुया के बन हो जाए तो हम अब तैर बताएला कि कुकुई नहीं दलांत ना लियो हुआ कटिया में न पकड़ियो बन है, बाकी सही सुनुआ खुल गए है, सही सुनुआ खुल गए भैया। हाँ अब कुकही तुलोन का बोले पकड़ सके है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल ले कुकुया बंद रहा। हाँ अब कुकुही खुल गए हैं, अब जे जे सरलाम में है तुलोन जाए के चोपू कर सके कुकुही, मसाला में बनाइयो खूब भिंडी डाल के, हम तो ना खाइए लेकिन जे खाए भैया बड़ी स्वागत से खा है। अब सबको हम बोले ला भैये से एस माकले कुकुही अब हो गए है खुल गए है, और बोले हैगा सही सुनुआ खुल गए है, जिस आप लोग अब सगरो जाकर पकड़ सके है बेच सके है, तिस इन द खसलोतन सही सुन फरबोडन हम दिस और अंडा जोन है भी बंद रहा। दरनाथ इस एट ओक फरबोडन ओम आलन तेरे एयरन कैट ऑफ एयरन नेस्टेड फरदीलन। तो हम बोली कुकुहिया के बारे में बोले वन कितने आदमी भैया जोन सुरीनाम में बाल उस सब के लावे मांगे हैं लेकिन उस सब के नालाई सके भैया। हाँ भाई जैसे बोली ला इकोरता तैर पे फेव तक यौंगर सुरीनाम में अरेनिंग से मरल है भाई, दैट इज हील फील है बुद्धू फरकेस दौड़न ता लोब स्नेल ऑफ आल फेव तक स्लाफ ऑफर्स दी या ए दित यार मेरन देल यौंगरन सेन ओफर ले रहे भाई। यहाँ बतावे हैगा बोले तु ही दैसन फेफन तुन तक भर में एनन सस्तक को आदमी मरल ला फरकेस से, बोले अतरवेल अबे हम लोग यूलिम बाटी और 50 गो भैया मर गए भैया, अबे हम लोग के दैसा मलक परल है का होगा भला। हरीश मरोजे जिसने पुलिस बोले मेरन देल फरसलाख फॉर सेन अलमाल यौंगरन में से अपन बेटवन के बिटियन के खुद अपरे लोन जे तुलोन जइयो तो आप लोन का बोले अपन लड़कन के खुमोई से देखियो। यहाँ पर रानी बोले फौचे फान क्वी क्वी, ओ या मैं यहाँ तो लिखल है कुकु ही इस ओपा, तब हम अब का बोली जो ने लिखल है वही हम बोलत है क्वी क्वी सकी सुन इस ओपा से सुन फॉर क्वी क्वी वेर का ओपन स्टार्ट हीर। मैं खुद मैं से एक आई फिर दूर में मैं न्यूज़ तो लोन जानो है एगो एगो कहाँ बोले है केरकी के आदमी है, अरे भैया पास्टोर है, हम ना बोले ला मीसी कब्बा के, हाँ हम बोले ला एगो मैया के भैया, मैया के बोले ला एगो पास्टोर रहा तो एक के मांगे बनावे इसराइल के अम्बासादा मांगे बनावे सब भैया, तो एकर बारे में आदमी लोग बड़ा बसवार करी से बड़ा बसवार करी से मिनिस्टर मेल्फिन बोफा बैजनो साकन के कहा बोले हैगा बोले लेख नीड वाकर फॉर अ क्रेडिट ऑफ द मोनुमेंट फॉर द बिशप स्टीव मेयर as niet residerend ambassadeur van Suriname voor de staat Israël volgens de bewustwand in de overige kritiek op mij veel persoonlijk gericht en niet zakelijk op zijn werk. तो एक बारे में अरवी लोन बहुत बहुत क्रिटिक लेफर कर रहा मैं एक बारे में एनपीएस के फ्रैक्सी फोर्स फ्रैक्सी लेडर रहा जेब जेरल पावीरे जो फोन द बसलेटन फॉर द हैंडलिंग फॉर इजराइल टेकन ओवर द पैलेस्टाइनियन फुलकॉमन इन स्ट्रेस है मेरे द नॉर्मल फॉर वार्डन तो लोन जानो है और मलाई लोन मुस्लिम हुए भैया और तो लोन जानो है इजराइल जो रहा अब हाई अबे पैलेस्टाइनियन के संगे का करी से
तो हमारा सूर्य नाम के जो मुस्लिम से गा मतलब की दे नाम है तो इस अपना मांगे है का कि इसराइल में जाए के और एगो अम्बासादर बैठे en daarom hebben ze deze kritiek, mensen. En dan mogen jullie zeker weten hoe en wat het is. Toen hem jalte hij en aange bhaiya hiya varon to tujane bara moya moya word hai. To Poonam avatar bhi leading se aagaya hai. Poonam ji beti aapko bhi hum swagat karte hain. Sath sath Sunil Sunil dat Gajari Gajari ji. आपको हम प्यार से महा स्वागत करते हैं तो तुलन जानो सोमो हार्जो पॉल सोमो हार्जे का बेटा हुआ बरोन तो हाँ ये इतना लंबा लंबा कहानी बतिया भैया किलो मीटर के फैया पे के फन आंतो सेट गरियाई के धर दे से और एक तोक्स तात मुश्किल लिखिंग मिलल है लेकिन एक कोई पकड़ के बनवे ना करे है हाँ तो अब एकर बारे में भइल है कि oud minister van Binnenlandse Zaken, de Bissake, Oro ex-minister Klimor, Hoofdraad ke Financiën, ke Riyad Nur Mohammed Oweke in staat van beschuldiging, sabkalera, voor strafbare feiten. En hier wat aangegeven heeft, Bronto Somoharde als verdachte, verhoord door OM, ab oke saban verhoor kreise, Bronto ke, maar kaise bhail, kaise na bhail he, en naya nieuws he, bhaiya, Iran melt. 30 doden na Amerikaanse aanvallen. Chauk satro chuige ladaiya bhaiya. Aur 30 army maral hai Iran ke. Amerikaanse aanvallen jo bhaile Iran me. Bole hai ga raakten meer dan 260 gewonden. Ekar bare Iran ke woordvoerder bole hai. Aanvallen over en weer. De afgelopen dagen bahut aanval kees Amerika Iran ke upar. Aur bole Iran. भी दागी सेगा लुक्त अनफाल कैसे कुवैत में और बहराम में जहां पे अमेरिकान के बस अमेरिकान से वहां पे उसके बासस भी हैगा फोल्कस ईरान से अने खार्द बोले अमेरिकान से वापन ऑब्स्ट्रक्ट प्लाचन के दागी से समझ द फेस मेल अनफाल ने हमर एट को फूड कि दसन को मिलिटेयर दुलन इन द बूर फन द स्ट्रेट फन हॉर्मूज एंड इन द गबीडे फन ईरानसे कस्ट दारबे वार फोल्कस अमेरिकानसे लेकर अंडर मीर रक installatie, drones en marineschepen. Het doel van mensen, ik volg de oorlog. Namelijk niet alleen van Amerika en Amerika en Oekraïne en Rusland, maar toch wel heel veel mensen. Je baat hij, hamari, piari. जनता कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा तो दोस्तों हम और आगे चलते हैं

Ja, de handpinnen was AG. Hey. Dus mensen, ja, hier hebben we het AG. Hey. मास्कर सुरीनाम में भैया मास्कर जाने का बोलो तो ना आओ जोर हमार मौसीलोन में के पुआ लगावे मास्कर वो के ना बोले ला चोरवन और मास्कर वाक बोले ला सुनील जोर मुड़िया में पहले कोई ना देख पावे औ मास्कर वाक बतिया ला ना हमार भौजी जो लगाए लगाए चमकावे उ मास्करवा ना है तो भैया ई उ मास्करवा है अब भैया जोन समझ जाए के ऊपर फाल करे है हियां बताए गए है करिया करिया मास्कर पहले स्वार वापस प्री ओवरफॉल खौज सुकर्स काम पर और दुकान में भैया वही माने तो चिन्ह वालों हुआ जाए जाए खौज सुकर्स जो ने अपन फाइलिंग धरे हैं यहां पर बताए गए हैं कि 12,000 एसआरडी 15 ग्राम सोना मारी से जहां पे सोनवन खुदा है क्रिमिनलन खौज विनिक्स एक्टिविटी कैन फोर्स एट एंड से फ्रीज एंड दैट द क्रिमिनल कैन टर्केरन ओम दैट द बर्ड फॉल्स हिम खरिंग वाचमैन से तो ई रूफवा के चिजुआ हम तो लोग के बड़ा ढेर बताई चुकली है हम सोची तो लोग के और मोई मोई न्यूज हम बताई भैया और मीठा मीठा न्यूज हम तो लोग के बताई क्या होता है देखो भैया हम जाए तेरी अफ्रीका के ओर हाँ बोलिए जॉनी अफ्रीका में का भरी सूदान के बातचीत हो रहा है बुद्धू सूदान में भैया तो तू जाने है का बड़ा बीमारी है हुआ हाँ तो कभी गोरेला तो कि मोरेला कि कौन ची ना मोरेला तमाकू ना गोरेला है भैया खोली रा बोलीला बीमारी है जेमा 114 आदमी मर गए हैं 1300 वो बस मैटिंग भइल है सूदान में खोरेला एगो बीमारी भैया बस बैटल का ड्रम इन्फेक्सी हैगा दी वर्ड फॉर ओट्स आर बैक्टीरिया फिब्रियो कोलेरिया द सिक द फर्स्ट प्राइस फॉर ऑल फियर फॉर फेल वाटर एंड फूड सेल एंड कांसिक स्नेल अलबरेन खबीद फन स्कोन ड्रिंक वाटर एंड गुड सैनिटरी फोर्सिंग के बारे में तो इतना जबर बीमारी हुआ है दोस्तों दिस जनता लोन के अने अने का बोले अफ्रीका में वहां पर बड़ी दुख है हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे जनता हम जाई है भैया और आगे को अपना प्रोग्राम लेके काल प्लक वेत हाँ हम लोग के नीदरलैंड में काल प्लक वेत है मतलब जब तू चो का बोले अपन पैसा अपन धन दौलत जोन बा नीड ऑफ द यस्ट मनी है फरदीन तो के ये फियोत यहां पकड़ेगा ब्लास्टिंग दिन पकड़ेगा तो तोके एनम निकिया जाए तो बोले काल प्लेक वेत मतलब कि जैसे मुर्गी के सब नो चले हुए पखनवन है ना राज तो के बोले काल प्लेक वेत तो अरमियन के पास कुछ ना है तो बोले हैगा वात खाइए प्लेक ऑफ आनंद काल के दूसरा चीज हो जाए मकाल प्लुक वेद जो नहीं गा तो के इनम निकिया ढाड़ी अब सबन मांगे भैया काल प्लुक वेद सुरीनाम में बनावे तब तो बिना कपड़ा के दया नोन जाए दया नाम में भाई बैठ सोचो तो काल प्लुक वेद मांगे दया नाम में सबन बनावे भैया फराख आंदा फॉर रेकबस्कर में इन एट फूरी कभी ना हो ही पाई भैया एगो इंग्रिड कार्ता बैंक है का फोर्थ सेटर फॉर कमिशी फॉर रिपोर्टर्स ये बोले बहांडलिंग मांगे करे बोले हैगा वेदर रखलक फॉर क्रीक हम फॉर फोर डील बेटर बकेन अल द काल प्लुक वेद दोनों डक नेशनल असेंबली में सबन ब्रीदर स्टेन फॉर द फॉर द डूलस्टेलिंग फॉर द क्रिमिनल en hun illegale verkregen vermogen te ontnemen. Maar John illegaal ze kini ze bij 10 go 4 go helikopter. Toen ze magie hele to. Jeke jeke bij ja de kio. Auro een puiri ze. Auro druk ze. En u sab chijuan ze sab banai banai dhari ze na. Ab oké kalpluk betwa je hoi jai te sab ban jai. Oké kal kare. Baki u betwa jai tak moot देख के काल करियो वन उमा तो कितना असेंबले ये में बैठल है तो सीमा विष्णु दत्त भी आ गया है तो सीमा जी आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं तो यहां बताए गए है बोले हैगा असेंबले बोले ब्रेदर्स ट्विन करी से फॉर क्रिमिनल ने लिखा ल फकरी के फॉर फॉर मोहन तेदन से इस्टर रोंदा फॉर कमिटी फॉर रिपोर्टर्स
onderschreven. De woordvoerders het belang van de wet in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, corruptie en witwassen. Maar vroegen zij tegelijkertijd om verduidelijking over onder meer de rechtbescherming, de bewijslast, de uitvoerende capaciteit en de aansluitende begaande wetgeving. To karta brink jun he imang e kalpluk wetwa abitalawi e karbare me Krishna Motra VHP ke bole hega ki bestrijding van de georganiseerde criminaliteit noodzakelijk is, maar dat de rechtsstaat daarmee steeds centraal moet blijven staan. Zij vroeg de een uiteen te zetten hoe de nieuwe wet zich voorhoudt. De ikerbarim toch een bhaiya bari jabar volg karab. Ki kaalpluk wet wat kabhitter ja he. Corruptie wet ke bari san lagge bhaiya baki abbe corruptie karmiye na pakraan he. Hoe vdalat kani kahan kahan baithe lebe itra corrupte lingen jon hiswam he. Oke koi pakra ben karisega. Dus ik vraag me af regering, gaat deze wet wel werken of niet? De corruptie wet is al in. Toch zijn er zoveel corruptie in het land. En gaat deze wet wel werken, de kaalplukwet, of niet, mensen? Ik heb het grote twijfels eraan. Ik heb er grote twijfels eraan, maar ik zal dat op de voet volgen, mensen. Ki is heb koontje kare, koontje nakkere, he. Dus die kaalplukwet is goed, maar gaan ze dat wel doen of niet? Dus daar gaat het om, mensen. Jantake de kawe kato sabkoi eisba. Ki kaalpluk wet wa in jai. Baki kaise jai, kaise na jai. Ab deko terem ka karis bhaiya. Terem bolie orlok karis na na na na. First care up karis visum regeling na Amerika. Tu mensen, voor studenten, voor buitenlandse studenten en journalisten. John jai ke huan pe visum aanvraag kari Amerika ke. Deze maatregel in de nieuwste stap Trump begeleid om illegale immigraties te verkennen. Orubole heeft een verblijf die 240 dagen gekregen in Amerika met toeristische studieprogramma's. Als journalisten krijgen een maximaal verblijf van 240 dagen. Ongeveer 8 maanden toeristische Chinese journalisten, de Chinoise journalisten, ook mag 90 dagen gaan per heke. Toen is er ook kardese dat journalisten hebben moeilijker immigratie aanpak van Trump, die zich kennen merk zo streng la handhaaf in de grote steden. Toe je baat hee, maar je Amerika ke baare me. Ja, wat we Amerika 2023-2024 1,1 miljoen internationale studenten, meer dan enig andere land. Deze studenten droegen 2023 50 miljard dollar bij de Amerikaanse economie ke baare me. Toe je baat Hamburg die trokken wat hij die toria kaise he Amerika ke tulon Suriname me jitra lok he u sabke kaise visum he maar hem betaile algemeen ki wetwa scherp kaise ka bole he en Trump en wetwa in de streng kaise to janta hem chalte he aur aange ko apna program ko lekar bada bada news antlok ke hum deli naya naya news deli hai aur kabel bada jor Suriname mein chori hue bhaiya tel sir ke kabel je gharwa tarwa na kamayega na to boliye ka bhai na hua choran bhaiya kabalwa kaade ve hai ga tel sir ke chiyo kaade ve hai to kumand sami samujh bhi aa gaya hai bara der mein le rakhe namaskar ho rakesh ji aapko hum bhi swagat karte hain apna program mein to hamare janta in break crash mein flukt ab chor leke ho to bhage bhaiya paanch sipahi daurave ab chor ka kari se चोर भागे ओ तो लेके बस जाय के घुस गए गोथरो में नानी बकी खोल के बड़का गोथरो नाना ने चोरवा बुड़ के मर जात ओ तो हुआ ना उल्टन बकी ते होता फिर जाय के गोथरुआ में लगाई से चोर निकल के भगल सिपाही ना पकड़ पाई से बारा अफसोस के बांधे भैया बड़ी अफसोस के बांधे कि सिपाही ओके ना पकड़ पाई से और हमारे देखे में एक घंटा हो गया है हमारे यारों।

0: तो हमारी जनता, हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे जनता, घड़ी की ओर देखा जाए तो ये घंटा तो हमारा हो चुका है, तो समाप्त तो करना ही पड़ेगा ना।
1: मिका दो मैं सिंह सिंह की आला दे मासरा दिनु सब ड्राई बेदी दिनु सब रोकना ग्रोंग ऐसा लेरा हर फार फोर रोकना ग्रोंग पामुस रोको ओके ठीक है बॉय।

Urca Maria, Carilla, Palop, Lollipop, Langi, hey, tu, dosto, aur aaj bhi hum aap log ko ek do shair bhi aap log ko sunayenge. और कहते हैं जुदा भी हो के वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, जुदा भी होकर वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, ये और बात है कि देखने उसे जमाने हुआ, जमाने हुआ. और कहते हैं दोस्तों इश्क को सर का दर्द कहने वाला सुन, मोहब्बत का दर्द को, मोहब्बत को सर का दर्द कहने वाला सुन, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है. और अपने सर हम लेकर और क्या करेंगे, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमारी निगाहों से बचकर वो भला कहाँ जाएंगे. हमारे दोस्तों हमने उनके मोहल्ले में ही घर ले लिया है. तो हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे. और ये जो तेरी पायल की छन छन है, आशिकों की चाहत दिल के धड़कन है, आओ सुना जाए.

और ये जो तेरी पायलों के छनछन है आशिकों की चाहत के दिल की, और वो तो धड़कन है, और कहते हैं चिरागों में, चिरागों में दोस्तों, चिरागों में इतना नूर ना होता, अगर चिरागों में इतना नूर ना होता तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो कुछ एक दो कॉमेडियन शेरी भी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं बसाऊं मैं दम रखता हूँ, बजाओं में हम बजाओं में मैं दम रखता हूँ, दिल में छम रखता हूँ, और पता था कि SMS आएगी तेरा, इसलिए पर बैठ के तेरा इंतजार करता हूँ, पता है कि आपके ऐप जरूर आएगा, इसलिए बैठ के इंतजार हम करता हूँ कि जानू मेरी जान आओ मिलकर सुना जाए एक रिमिक्स सॉन्ग, और किशोर जी के सॉन्ग है, फिल्म का नाम है शान, जिसमें अमिताभ बच्चन परवीन बाबी ने काम किया है, आओ सुना जाए जानू मेरी जान।

और जानू मेरी जान और मैं तेरा कुर्बान, कुछ रिमिक्स आज हम आप लोग को सुनाएंगे सुनाएंगे। कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं दोस्तों, कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा भैया, ही बतिया है। और कहते हैं चमका न करो जुगनू की तरह रात को ले जाऊंगा मुट्ठी में किसी रोज छुपा करे कि झलक दिखला जाए। आओ हमारा झलक आप लोग रेडियो के माध्यम से देखिए।

0: थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा।
1: और झलक दिखला जा हमारे दोस्तों, और जब अगर झलक दिखलाएंगे तो और क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि ऐ फिर से गुजरा लम्हा याद, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाए उसने, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाए उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, हंसे तो थे उसके सामने, देख कर भी ना जाने क्यों फिर से नजरों को चुराया उसने। तो कुछ प्यार की और कुछ शायरी हो जाए दोस्तों, के कहते हैं चेहरे पे मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिशें उसके जो दिल से समझते हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे। और जाते हैं किशोर दादा के एक सॉन्ग, फिल्म के नाम है लवारिस।

जरूर अपने को जैसे तैसे में क्या होता है दोस्तों, अपने को जैसे तैसे और थोड़ी देत एंदात है कि कहते हैं ना पूछ किसी से ये उल्फत का, ना पूछ किसी से ये उल्फत का कि बड़ी लंबी कहानी है, मैं गैरों से नहीं हारा, मेरे किसी अपने की मेहरबानी है। हमारा दोस्तों चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिश है उसकी जो दिल से समझे हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे, तेरे चुनरिया।

दोस्तों तेरी चुनरिया और तेरी चुनरिया में क्या हुआ, तेरी चुनरिया में एक दिल दिल को जख्म दे गई, एक दिल दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर जीने का कसम दे गया। लाखों फूलों में से गुना था एक फूल जो कांटों से भी गहरी चुबा दे गया। और कहते हैं गुलाम की महक भी फीकी लगती है, गुलाम की महक भी फिक्का लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कौन सी खुशबू मुझ में बसा गई हो तुम, जिंदगी है क्या तेरी चाहत को सिवा, ये कैसा ख्वाब आंखों को दिखा गई हो तुम। और बचपन बदन पे और सितारे कौन लपेटा है, वो परमाश्री मोहम्मद रफी लपेटा है, शामी कपूर से आओ रिमिक्स सॉन्ग फन रेडियो फॉर होम दौर जॉनी नंबर 1।

और बदन भी सितारे लपेटे हुए और न जाने क्या क्या। और इसके बाद है दोस्तों हम चलते हैं यानी कि हम चलते हैं अगला सॉन्ग के अभी और दोस्तों हम रिमिक्स सॉन्ग के ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कि कहते हैं पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, अब मेरे मौत का भी वो फायदा उठाता है। पहले जिंदगी छीन लिए मुझसे, अब मेरी मौत का भी वो फायदा उठाता है। मेरी कब्र पे फूल, मेरे कब्र पे फूल चढ़ाने के बहाने वो किसी और से मिलने आता है। दैट इज वेयर हार्ट बेस्टर स्ट्रांस, दैट इज हील हार्ट। दिल मेरा बहुत नाजुक है, जरा इसे संभाल कर रखना, तुमसे जुदा ना हो हम, बस इतनी दुआ करना। और कहते हैं और क्या कहते हैं, एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ा जाए कि ये कहते हैं कहो ना प्यार है।

प्यार है, कहो ना प्यार है, ओनली रिमिक्स सॉन्ग कहते हैं, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, अपनी आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, अपने आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, वो चाहे लाख नफरत करे तुमसे पर तुम अपना प्यार कभी उसके लिए कम नहीं करना। दिस इज अन टिप फॉर माय बेस्ट लिसनर्स। एक नोख रिमिक्स ड्राई मेंस। तो आप लोग को हम सुनाते हैं रिमिक्स सॉन्ग, वो है डम डम डम मारो डम दोस्तों।

और दोस्तों डम डम डम डम और क्या था, डम डम ढिगा ढिगा डम मारो दम था। हाँ कहते हैं प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, अपनी मोहब्बत का जिगर आज सारे आम कर दो, और नहीं करते अगर प्यार तो इनकार कर दो, ये लो मेरा मासूम दिल इसके टुटके हजार कर दो, ये लो मेरे मासूम दिल इसको टोर कर हजार कर दो, और मेरा प्यार की पहचान तो ही तू ही तो है, मेरा मेरी मेरा प्यार की पहचान तू ही तो है, मेरे जीने का अमान तू ही तो है, कैसे कैसे बजाएं करे कैसे बजान करे अलार्म इस दिल को, मेरा आशिक मेरी जान तू, मेरी आशिक मेरी जान तू ही तो है। तो आपको कुछ शायरी हम आप लोग को यहाँ से सुनाए हैं और एक ओल्ड गोल्ड सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। दोस्तों ये एक ओल्ड सॉन्ग है, फिल्म का नाम है दो उस्ताद, आओ मिलकर सुना जाए।

0: कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता जी दे हमको अपनी आशीर्वाद दे।
1: मैं तेरी शायरी।
0: तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरे दाम, सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

किस चून से आम की तो जरूर पता चल चुका होगा, पता चल चुका होगा कि हम स्टूडियो में आ चुके हैं। एक ही दम हम चलते हैं अपनी समाचार की ओर। तो दोस्तों हम तुरंत जाते हैं सूरीनाम की ओर, हम तुरंत जाते हैं सूरीनाम की ओर कि सूरीनाम में क्या हुआ है, क्या होता है वहां के सिटुएशन आपको बड़ी मीठी जुबान से कोशिश करेंगे बताने को। अब देखो भैया दृक्सुआ के चिजुआ सनमुआ में एकदम उफलाई गए भाई, उफलाई गए नानी कानी कितना कितना मिले भैया ना एगो दुगो बोले चस वाला भैया, 7 किलो के हिसाब से पूरी मिले है सूरीनाम में भैया, पूरी मिले है ना भौजी लोग जो गलवाम लगावे है ना कुनुआ से जो सूंघल जा दोस्तों, और ये वही पूरिया है जो निया से हुआ जाए भैया समो काल होवे है। तो ऐसे भैया कैसे स्ट्रांड के सिपाही एगो अख्तन फेफ तक यारख आरे स्टंट इज ऑन फ्लग भाई भगल है हाँ सेलन हर्ष कैसे स्ट्रांड से एगो अख्तन फेफ तक यार के आरे स्टंट भाग्य भैया, और ये है के ई अदमिया भैया अख्तन फेफ तक यार के एकर पैदाइश भैले कोलंबिया में, एक बोले कोलंबिया कोलंबिया जॉर्ज एलिजेर आरिसा ओर्टेगा हाँ इतना लंबा नाम है मौसी। तो एके बोले ई रहा एगो बड़का क्रिमिनल और खानी साक्षी के अर में रहा जो नरी मनी बोल चस वाला भैया खरूच खालक दृक्ष हंदल्ला, और एकर पास वापन फिर वापन रहा भाए और एके समन बन कर ले रहा निकर के भाग्य कैसे स्त्राते। अब सोचो भाग्य है नानी कि कोनो भगाई से ये बतिया हो सके तू वंद्रिक्सोन वाला अरमियन के पैसा भैया हिया से हुआ रहे है, और तू जाने हमारे सिपाही के नाम सूरीनाम में बड़ी ऊंचा है नानी, इतना ऊंचा है कि का बोली भाई बहुत ऊंचा है, और खूब पकड़ाए पकड़ाए बन हुए तो विश्वास तू कैसे करियो कि कैसे स्त्राद के सिपाही एक भगाई से कि अपने से भगल है बड़का और खानिस्तान सीखी कोलंबिया रहा और इन करके कैसे स्त्राद से भग्य है। बोले कोलंबियान बोले जो जेके फिनिश वे लांस नचोनाली तैत रहा, और बोले बड़का दिल नाम राफान क्रिमिनाली तैत के और खानी सासी, और बोले है एकर पास सवन के मिलल रहा कोकाइन मिलल रहा भैया असीसी पेल मिलल रहा मीटा फिटा मीना मिलल रहा और मरवाना हाज सब एक लगे पाए रहा ऊपर से बंदूक पिस्तौल सब पाए रहा एक लगे। सोचो तो ऐसा आदमी के सिपाही बन करी चौके चाहे भगे के बाकी भगे के भगा दे इसे कई शस्त्रार्थ के सिपाही नानी। बोले दे साख वारे ने फरतरख्त बत्रों के नहीं इस ऑन द सूक बहजी स्टील अन फिर वापस वेत में। तो बोले है कोलंबियान ओम स्टीकन मारोंदर है ऐ द सेलन हाउस इज ऑन स्नपमेंस, तू जाने भाई सिपाही सरनाम के विश्वास करे लाइक ना है नैनी रघुनंदन मोहबीर फेसबुक पे हमारा प्रोग्राम में आकर जुट गए, आपको हम स्वागत करते हैं नैली जी। तो सिपाही लोग के नाम बड़ा ऊंचा हमारे सरनाम देश में भैया, और हमारा मथुरा का वो ना मथुरा मनोरथ का बोले कौन मनोरथ है अरे हरीश मनोरथ भैया मिनिस्टर फान यूसीसीएन पॉलिसी के बात करील हम ते मनोरथ बोले तू खांग फॉर फ्रिंग दलिंग नीत इन फौदख
tal van gebieden in binnenland nog niet één beeld. Want Chinua ke jaike Brunswijk, apres ego grip Chinua ke paklise, John Chinua, barka barka banduk leike, op binnenland met ze bewak karatra apen sona ke, Brunswijk geile sapke, aur skoutu surjati sapke pakarke, aur laike bankarise, te ekan mare me Hanis Manoraj bole jutsisi, bole de toegang van vreemdelingen tot Suriname in de huidige situatie relatief wel eenvoudig is. Bolle bijdragen aan de situatie die zich dinsdag in het binnenland had voorgegaan. Bolle dassen chinoake. Bolle je zwaar bewapend raan. Bolle sepakarke bolle lege he. Lekin abbe tak joan kwe kwamilallaha. Chori bhele skoutu ke muma se bhaiya. स्कोटू के मुंह में स्कोटू में मुंह में भैया होकर परासी में बड़का कंटेनर रहा और ओमा क्वेक भरला भाई सब क्वेक चोरी हुई गए कोई जान न पाए से कि स्कोटू के मुंह में से चीज कैसे चोरी हुई गए तो ओकर बारे में मनोरथ ना बोले बोले अंदर सुख हो भैया वो अंदर सुख होते रहेगा बोले हु कॉम्ट दैट सो फील फ्रेम द लिंग सोशल फॉर हुनिंग क्राइकन आस वे हैड हेल प्रोसेस बकाइकन बताइकन dat ergens corruptie plaatsvindt. Ik hoor in de wandelgangen dat mensen voor $2000

हंसे के परे भैया कौन बिकाऊ ना है बहुत कमती भैया 2000 यूरो जे तू धरिए तो जाई के फरखीन किन लियो और चिनवा धर के बंदूक भी पाए जाओ जाई के बेन अलांत में से बफेल करे है तेकर बारे में भैया मलाई रायमोन सपून का बोले है यो ही सपून है भैया जो उनका बोले है का निकर के पीएल में से जाई के एनडीपी में घुस के और आज फिर बैठल हैगा काबल दीना में अब यही रायमोन सपून का बोले बोले सोरा चिनुआ जो सारा क्रेक कबीट में बोले पकड़ान है बोले सिम टोन बस्ट्राइडिंग के बोले मैं दत रखिरिंग शाम में द पार्लियामेंट मु सिटन ऑन द खफासिजेट नेशनल प्लान फॉर आनपक आउट स्ट्रिपलन तो भैया फिर यहां पे के पार्लियामेंटारी सिद्रिक सैमसन बोले है बोले मेदर बदराई फन इन बिल अलार्म से इन द एकन फेलक है डिस्टन हेवन एंड देयरफॉर ओक वापस द बस्की हेवन खसीन द अफदेलिगन बोले चिनुआ के खाली ना बोले औरो ढेर है औरो ढेर है बेनलांत में जो सबन एक बफेल के हुआ धरे हैं ओम दत सुनवा जे खोदे भैया वो बहुत जबर रूफ हुए है ऐसे बतिया है तो बोले एक के खाली चिन हुए थोरो बोले औरो है बोले जो हुआ बफेल करे थे एक कर बारे में शंगरुई वंग का बोले हैगा फ्राक्सी खनूद बोले है बोले चिनुआ बवाकस एन आनखोदन अफफूर्त हेड बदरे on bewaakt is achter gelaten bolle John bedrijf voor op zo'n wak kodet raam bolle op bewaakt raad ook het op hier zijn roofkelee hierdoor zijn ook spullen van die bedrijf ook derden weggenomen hij vraagt zich af wie de ondernemer hiervoor zal vergoeden dat je nou een keer बफेलिखेंगे उनके तू पकड़ ले गए बांटे और जेकर बदरई फो आएगा अप ऑन बवाक थुआ बा अप हुआ से चीज चोरी हुए के सुरेग हुए तो अब लांटी से पूछे कि ऊ अरमियन ऊ बदरई फो के अब जाएगा देख करे दिखाई ले तो बाटो की तरह चिनुआ पकड़ के ले गए लो बाटो जोने को बदरई बवाक करत रहा मैं अब पकड़ के ले गए बाटे तो तू अपन आदमी हुआ धरू सबके बवाक करे कि तू वहां जे तो के कोई ना तू सब का करे दिट इन तीन ताले या नीत ऑफ ए दरखले मनीर गबेर्ड Met ondersteuning van DNA zullen in de komende tijd wetgevend producten worden ingediend, zodat wij kunnen nagaan wat wij als land willen. Volgens minister kunnen buitenlanders nu als toerist het land binnenkomen, orbole hega, waarna de militaire politie slechts één zoomier onderzoek verricht voordat de toegang wordt verleend. IC, want ja, hij van ja. Toen hij hamar hanis manorat joon heen. Bole 2000 verio. Dan bole corruptie het raar he. Ki jai ke tu. Bole go verkening tu paaje. Yo IC, want ja, hij hamar je nani loon. और हमार प्रोग्राम में आ गया है हर हफ्ता की तरह धर्मेंद्र श्री आपको स्वागत करते हैं राज रामलगन भी आ गया है आप सबको हम प्यार से स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में अब देखो सुर जाति भैया तो लोन जानो है सुर जाति लोन देश के खात लड़े हैं देश बचावे खात लड़े हैं देखो ईरान में का हुए अमेरिका में का हुए है फेनी अनेस रूसलैंड में का हुए है और उक्राइन में का हुए हैगा सब सुर जाति लड़ाई वाला है भैया आ हमार सा नाम के सुर जाति पिस्तौल लेके अपर घोड़वे में दाग लेवे है राज हमार सुरजतियन के ना हसीला भैया मडे किया बतावे मिलिटेर ने इखनन तवेन तक यार के इन बीन खसकोतन ना ऋषि मेतन मान दी बकेन साथ आ सोम्बी कोनो सोम्बी से भैया गैला लड़े ते सुर जाति जो देश के रक्षा करे वाला भैया सुर जाति गल दाग दी जरे अख्तर बोफर बीन में Hier werd de omstander, Bolle Lege Academie Ziekenhuis mee. Militaire raakte hij verwikkeld in de woordenwisseling met een man die bekend staat als zombie. Zij Surjati Laratraha Moese. Obolle tijdens de handgemeen zou zombie een revolver, ook wel een lolo bal genoemd, hebben getrokken en 4 tot 5 schoten in de richting het slachtoffer hebben geslost. Eén van de kogels. Trof de Surjati in de rechterbeen te lolo ala hem nee lolo ala pistool kaisen we maar jij zei veel moon met de kawe janu muria de ke kar kar kar kar draai kere amita bachan wala raakai
यार जो खड़खड़ खड़खड़ राई करे, बोले गोली कहाँ है, बोले गोली कहाँ है, बोले गोली नहीं है, तो बोले आप गोली खा। तो ये वही बोला वाला कहेगा भैया तो ई का बोले सूर्य

जाति के दागदी से गुड़ में, और का बोले रमिया का नाम बा जोम्बी, भैया जोम्बी लड़त रहा। तो ये बांछी थे हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा प्यारे प्यारे। अब देखो भाई, एगो बाप का करिश मिंदर यारख सोन ओतो के कोफर में भर के और भैया मर्चा लगा दे इसे हुआ पे जान ना चाहे लगावे के, भैया खसला दे लोई में लगा दे इसे लंडवा के, और लंडवा के बारा में सांदल करी से बपुआ यहाँ बतावे है अने अने ही था स्कैर्प पेपर ओप

kakarise escape na balam bale ajuma bhai cha bole ajuma bhaiya ajuma chmarcha okar khasla khaful khadilan van het lichaam van de minderjarige oke lagai deze bhai o malundwa ke lagai deze ga socho bhaiya i me sandaling hai ki nahi banchit hue hai ga i banchit hue hai ga mart me tamaywa kakarise bhaiya maywa kakarise Geil he, op wolle Maya bi betrokken hega. De verdachte had via de moeder van de minderjarige vernomen dat zijn zoon mogelijk betrokken was geweest bij ongepaste seksuele gedrag. Dus ilondwa tera bariske bhaiya ongepaste seksuele gedrag ra. Aur ik laga deze marcha bapua ke bole ra Maya. Op wolle tijdens de rit plaatsen de verdachte de minderjarige auto ke koffer me bharke lege hai aur bole hai ke omstanders jis danig alarmeerden aur bole skootu belke te skootu bapua ke pakar ke lege hai aur om ka kari se bhaiya ouder de wettelijk en morele plicht heeft zijn kind te beschermen aur bole op te voeden en een veilig omgeving te bieden ongeacht de aanleiding vorm vermeen aur ke bap mai ke te verplicht rahau ke kare ma pata na hai ओकर असली बाप है भैया की नकली बाप है तू याने स्टी फादर भी होवे है तो बोले द ओल्डर्स फॉर द मिनरियारिक वार रेस uit elkaar Volgende verklaring van de meerjarige liet de verdachte zich tegenover hem herhaaldelijk negatief uit over zijn moeder. Het OM stelde in dat een kind op deze wijze wordt betrokken bij de strijd tussen ouders en dat is schadelijke gevolgen. Dus je bapua mewa Isab ka bole hai ga skaido ho chukal la to ekar bare mein ab ek 12 mahina ke OM jahal mangi se ga veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden vroegtijdig se tailondwa ab ka kare bab mai na hai bhaiya sanghe te i farwalo so ye seksuele handel karat ra ab apo jai ke marcha nahi laga di se te ab marbo kari se ga te 12 mahine baris are 12 mahina ab jao fruiti karo bhaiya ab tor sath kaha marcha lagi kaha marcha na lagi tulo jano hai jahal mein marcha lagave ki aur kuch lagave bhai सेक्सुअल मिसब्रेक के बारे में तो हमारा प्रोग्राम में चित्रा उतार भिया गया है स्वागत करते साथ साथ शारात सारदेशा आ गया है मीला जी हाँ अब समझ गए हैं तो थैंक यू वेल थैंक यू वेल थैंक यू वेल फॉर सो फिर हार्चेस अब हम जाई है देखो हम जाई है फिर यहाँ पे सरमक्का के और महेंद्र जोगी लगे भैया जोगी जोगी के निकार के जोगी जोगी के अधीन फोर्स इतर रहा ओके निकार के बोले बहरे तू भाग जा ओम जय जोगी बोले रहा अधीन के बोले इतना सलेख फोर्स इतर दे रहा हम लोग के कहीं ना मिले बोले तू सलेख तब बाटे बस अधीन उधी आएगा दुनिया बोले अब सो उधर भीतर बोले तू सालों में से निकल बोले तू क्लोइतर बाटे तो जोगी जाए के बोले बोले क्लोइतर बाटे तो तू क्लोइतर लाइस्टर बाटे भैया का होवे दे ना में लड़े है जैसे कोई कुत्ता बिलार भैया झौंझियाए तो यहां अब जोगी ने फिन से गईल है तो अब उ बोले है जोगी बोले हम मांगे लान जोन तुलन इतना ढेर बैठा लान से रईस बनावे है जब देखो तो सिमोन चल जा है तो गगरी रिस लान चल जा देव देखो तो बैठा लान में रहे है तो अब बोले हम मांगे ला जाने कि बैठा लान से रईसन द मिनिस्टर इन अफखलो पर रखेस यार hebben gemaakt. Daarin moet volgens hem staan welke ministers zijn afgereisd, waar ze naartoe gingen, wat het doel en rendement van de reizen was en hoeveel geld daarmee gemoeid was. De jogi bole assemblee me bole hamangila sab jane ki tulon gaile hai kon chi kalle kon chi nakal baad bhaiya parmeshwar ka bole hai understain transparency over these reason mar bole hai parmeshwar bole ha bole hum bhi mangila jane the ndp ke parliamentarian rabin parmeshwar bole hai reaksi me daarop dat het verzoek op openheid een reactie verdient hij zei verheugd te zijn dat de oppositie nu eveneens het belang inziet van een transparante werkwijze. Al dus permisser, bole hambilo mangel jane, bole apkeise, bole akia koele oppositie ke.
ऐसे बोली से हमारी जनता हमना बोले लाइया जो लिखल है वो तो बतावे के तो हमारा काम है नया रो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर हमारी जनता हमारी प्यारी प्यारी जनता सुरीनाम में बड़ी आ रही देख हुए भैया बड़ी प्रोफेसर मरे देखो यहाँ का भैल है जब देखो इतना आ रही देख हुए है फरकेर में अब एक प्रोफेसर भैया जात्रा मखेंता कनाल वेख में मखेंता कनाल वेख में को प्रोफेसर जात्रा भैया और ओके मारिस ओ तो मारिस ये रमिया का भैया जहाँ बोमा स्टार के फुटबॉल फैलतुआ है हुआ तो हरदम रुकीला भाई तब बोमा स्टार के फुटबॉल फैलतुआ लगे हुए पे मारी से ओ तो 10 बजे एंड थिंग फॉर 11 सिपाही पाई से ब्रेक के को ब्रोंफिस के मारी से दिस दानक एरस्ट खवों दत है तेर प्लाट से ओवर लेट कि मर गए भैया द बस्टूर्ड फन अ पर्सोन इस ऑटो रेट ना आरेडिंग दौर सोंदर से ओम है स्लाक्ट ऑफर ते बकोमरन और ओतो वा मार के भैया भग गए ई बहुत दुख के बात है होई से कैसा है जब जा स्लाक्ट ऑफर वा लगे लेके दतरा दतरा जाते से ओ बच जा बाकी ओ पेल भागल भैया द बस्टूर्ड इस ओवर खबरा फॉर फर्दर ऑन सुख एन फरक्लारिंग अंत कहीं पढ़े रहली बस्ती रुवा करे भविष्य न रहा मैं अब भी हम ओकर बारे में और फीनी फीनी आप लोग के हम बतावे तो बेटा सनई भी आ गया है बेटा जी आपको हम स्वागत करते हैं साथ साथ आ गया है गीता भी आ गया है तो गीता जी आपको भी हम बहुत प्यार से अपना प्रोग्राम में स्वागत करते हैं तो अब तुलन जाने हैं विलियम हॉलिडर के बारे में नीदरलैंड की न्यूज है और ओके सबन पकड़े रह जाए कि दुबई में भैया बहुत आदमी के मरवाई से तुलो जाने पीटर दफरिस के मरवाई से एक के सबन दुबई में जाए में पकड़ के नीदरलैंड आयल है और एक स्ट्राफ सेख में एडवोकेट एक खात ना मांगे लड़े एडवोकेट ना मांगे लड़े वन एडवोकेट के भी पकड़ के सिपाही बंद कर ले रहा वन ये रमिया इतना ढेर पैसा है विलियम हॉलिडर के कि सब कुछ मांगे कीने तो हॉलिडर वर्थ ना 11 यार 11 बरिस बन रहा अब उ गए एक्स्ट्रा बफेलत ए रेटिंग में और हैगा फिक्ट में फिक्ट में जेने लैंड में हैगा बहुत लोग के पता है फिक्ट में को बहुत बड़का खफंगने से जैसे सांतो बोमा भैया बाकी ई और जबर चीज है फिक्ट में हिया के बफेलिंग बहुत स्वार है तो सबसे स्वादर अने बफेलिंग अने अने का बोले हैगा खफंगने से मिले जाए के धरी से और बोले हैगा स्टार सेक्रेटरी क्लौडिया फन ब्रुखन जिसे सी एन फेलखाइट के बोसलेस करी से कि सेख होले इधर एडवोकेट सुख के पेश ब्यूरो में बताई से कि 68 यारक होलीडर अब ओके मिलल हैगा लीफंस लंग सेल उ कभी ना निकलेगा यहां बताई गई से नानी बोले जिंदगी भर अब तू नानी करिए बोले हैगा फोर्स एंड ब्रोकन है सीरी मोर्दन में मर्दान 11 यार साथ बे है इन एक्स्ट्रा बफेल द इरेक्टिंग एबी में इन फिर द स्ट्रेंथ बफेलिंग द गेवंगनिस फ्रॉम नीदरलैंड और बताए गए दोस्तों ई महीना में राज फॉर स्टाथरेक्स टू फासिंग यूथ बस्केरमिंग स्टार सेक्रेटर फ्रॉम ब्रुखन नौ बसलाइज करीज के होली इधर खफानिस रखीम में जाएगा आर्नो रित हाथ होली इधर फरब्लेव इन ए बी ओंडांग्स द अपी पाई सेगा लीफंस यानी कि लीफंस लांग के जहल पाई से दोस्तों और हम बताए विलियम हॉलिडर के बारे में हमारे जनता और आगे हम अपना प्रोग्राम के लेकर चलते भैया चलो जानो फेनिसवेला में आज बेफिंग जबड़ा आए बहुत आदमी मरल है फेनिसवेला में सुरीनाम लेकर ना पहुंचल भैया वहां सुरीनाम तो फेनिसवेला से दूर ना है लेकिन अब मेक्सिको में भैया के सुवारा आज बेफिंग फॉर द साउथ वेस्ट कोस्ट में मेक्सिको में और मोखलक हैगा कि एगो सुनामी आ सके हैगा मेक्सिको में देश एक हो में हार्ड फास कि सुरीनाम में न चल जाए भैया वन वन दिस सॉर्ट आर्थ बेफिकेन खा दौर में से दिखा कौन दौर और यहाँ पे बताए गए हैं
Zuidwest kust Mexico mee. Zware aardbeving eilet jahan. Kabul he aardbekrachtra 7.4 is heel groot mensen. Amerikaanse geologische dienstbataille zeker baren mee. Bolle he een 10 kilometer diepte ra. Porto Madeira me vlak bij de grens van Guatemala. Ke grenzen met Mexico ke. Bolle he gaan. Waarschuwing krijgen dat er mogelijk een tsunami aanne wala hai dosto. Maar laten wij goed volgen dat je wat oisie hai ki abbe doro na aave bhaiya. Want we weten allemaal de grote tsunami die we hebben gehad namelijk, die is voorbij, maar hoeveel schade had die gedaan? Ik hoop het niet dat er zoiets gebeurt, maar in Venezuela hebben wij namelijk de aardbeving gehad waar honderden mensen overleden zijn, daklozen zijn. Hamlo Janela vindt zo heel aan mij. Kaab heel het hoor. Toen je baantjeet hoor, haan he, hamare, piare, piare, meetha, meetha, janta. Ab dekho chakallas bhaiya. Abbe Amerika, Iran, Katoria, hum bataav, kaab heel het. Pahele hum jai, Rusalantawa me ghusi, Ukrainoa me ghusi. Zelensky, bhaiya, ab dek ka kari se. Zelensky ka kare, bhaiya. Rusland ke boot jitra samundar mein hai. Sab ke drone se daage hai. Ito jaise Strait Hormuz ke chiyua. Tulun jane Iran hai. Aur Amerika huwa pe lade hai. Hormuz ke jahan se telwa ke botien paas hove hai. Ab ee kakari se Zelensky ap Rusland ke pahile sab rafi nada raivan bahu dher daagi se ap Rusland ke botien daage ke suru kari se Rusland ke putin soche ap ka hoi kahan suru kari aur kahan enda kari jane chiyua kaise to ta Ukraine se president jo nahi ga wo hai Zelensky ap u kakari se bhaiya apan aangewezen aan secretaris van de nationale veiligheid ke defensie ke boli se hiyan pe bhaiya ki us ab defensie ke oud minister Klimenko aan voor veiligheidsraad ke dhari se ko purana minister ha defensie minister jo raha leidde tot protesten in onder met Kiev. Even klonk dat Zelensky wilde aanwijzen voor ambtenaar to abbe ikerba bare me truk ke aur fini fini hum batabe ki ka bhail hai aur ka na bhail hai bhaiya. Lekin ladaiya jo hai bahut jabar hue bhai bahut jabar hue hai udhar Iran Amerika suru kari se daage ke military dule bahut dher ke daagis ego brukki bidag de se jahan brukki pache saman jaat raha Iran ke ओके डाक के तूर दे इसे और इधर ईरान का करे हैगा मिड ओस्टन में जहां जहां पे अमेरिकन से बासस हैगा जैसे हैगा का बोले हैगा यॉर्डानिया में ऊ सब के खूब दागे है देश की लड़ाइया कब दोन हुई भाई बहुत आफत है और तेल हुआ लड़े भैया और हम लोग तेल हिया महंगा में चलो और हम लोग का बोले है किनो नीदरलैंड में तेल हुई है अनलोडेड 2.30 euro हुई है दोस्तों पर लीटर हैगा 2.30 euro हैगा प्लस मिनस कहीं पे एक चीज ज्यादा है और एक चीज कमती है बड़का दाम पे और महंगा हुई है बेना में और सस्ता है तो सस्ता का 2.30 euro है भैया और एको हफ्तो हम भले रहली तम भले री 2.24 euro पे लीटर और ई हफ्ता हम हुई है ये अब तो हम 2.30 euro होई गएगा तो दोस्तों हम और जाए भैया SLM की ओर हाँ तो SLM में हमारा टोनी इस्त्री भी आई है टोनी जी आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं अलमेरा शहर से आकर हमारे प्रोग्राम में जुट गया है अब देख का भले SLM वहां के तुरिया SLM heeft een persbericht verduidelijk die bole heiga luchtvaartmaatschappij
geen officiële audit pijs van een internationale civiel. Toen ja, nee, ze hebben een vliegtuig gewoon keurker. SLM, ze hebben een keurker. Die zeggen, ik heb een veilige buitenland. Maar hoe ik na? Dus ze hebben een berichtpijra dat die veilig is. Maar hier heb je applicatie liggen. Bolle officieel audit snap je liggen. Van de internationale bolle organisation heeft ondergaan. Het ging om een vrijwillige veiligheid. Uitgevoerd door de Duitse bedrijven. Ik heb vrijwillige Duitse bedrijven. Oekraïne hebben we binnen officieel namen. De correctie volgt nadat eerder berichtgever volgens de maatschappij mogelijk de indruk heeft gewekt dat SLM rechtstreeks was doorgelegd. SLM benadrukt dat dit niet het geval is en zegt onduidelijk te betreuren. De Isabolera AGK SLM je mag geen buitenland met bolle goedkeuring en veiligheid. Maar blijkbaar kun je Duitse maatschappij vrijwillig keurkelera al SLM ke admi huapen bij je pagra kadage legala, bombel dage legala, habakate legala, gana gawe legala. Ki hamelon pel de liberty, oude najamu is onderzoek kreeg, dat op later heb je op heel lega, dat bolle hega, bolle eisena he, bolle dit audit werd uitgevoerd, bolle een geaccrediteerde een auditieorganisatie binnen het internationale programma. Hoewel de normen waaruit de controle was gebaseerd afkomt te zijn van ICAO, betekent dit volgens de maatschappij niet de sprake zijn van officiële audit. De onderscheid ach is wel belangrijk voor correctie en transparantie informatie. Nee, er mijn gana gawe he, akufariari he jena he, akabak katai legale ma nani, aise batia to, to reshma nivar sandhiniya bhi a gaya he, aapko hum bhi swagat karte he, apna nieuwsbericht ke apna pyara pyara program me, to reshma nivar bhi a gaya he. और आगे हम अपना प्रोग्राम भैया सुरिनाम के स्कौतो के भैया हम लोग टिंग पेन दे सकेला भाला रे समा स्कौतो ने इतना जबर बदमाशी करे भैया देखो कैसे स्ट्राचुट बड़का क्रिमिनल भगे छौ गो सात गो को कहीं न पकड़ा रहा तो अब देख एगो स्कौतो फिर पकड़ाएंगे भाई सेरगियो भैया सेरगियो पकड़ा है पुलिसी मान सेरगियो भैया ब्राजीलिया में चल गए रहा ब्राजीलिया आए लोग के अंदर ये पे पकड़ ले से भैया एको 40 बरस के सिपाही से नाम के सेरगियो से ही ऊ चल गए रहा ब्राजीलिया जैसे लौटल हैगा ओ के अंदर ये पे पकड़ ले से पो ने प्रोक्यूर जनरल जो ने हॉफ जी सी के donderdag gemeld kreeg ze ook eens aan de rijpen pakken ze gaan en Jeremia Kahe wordt verdacht van diefstal, verduistering en medepleging dan wel medeplichtigheid van diefstal en verduistering zo tjoto bhaiya ja likele gezochte politieman Sergio to sipahi baate bhai o je tera chije to nmuria pe ba ekar baare me bole hega. Een Brazilië naar Suriname is teruggekeerd op instructie van zijn advocaat. Vieira meldde hij zich vervolgens bij de militaire politie. Vanwege geconstateerde onregelheden zal de advocaat Apikerwarem Kahoy to Irmaji Apko bhi hum bahut pyar se apna program mein swagat karte hain. Ye wohi hai Resma Irma Irma Ram Tahal Singh. To Irmaji अब देख भैया निकेरी में का भइले गो पियकड़ नसेड़ी में का करी से तोनिया देख नसेड़ी का करी से बोलिए जोनी ढकोले हो अरे ढकोले महाराज है ई दारू पी पी भैया और जब बीर कोई डाम पे जात रहा तो ओके गरियावत रहा लड़त रहा झगड़ा करत रहा उपय कड़वन के तो हम भी जानी रे कोई जमाना में हम सरनाम में छोटा रही तो दुई गो तीन गो हमार रहा बीरवन नाम नाले भैया जो डाम पे पास हुए जे ही देखे वही के नानी माई उलटत रहा गाड़ी देवत रहा आदमी डर के मारे कुछ ना बोलत रहा ओके एरमा सोचे का जाए न सीढ़ी के मुंह लगे का जाए न सीढ़ी मुंह टेररिजेर करत रहा पर सोलत कैनिक मेंस इन मेन ब्यूट
En ऐसे निकेरी भी एगो 58 यारक निकेरियाने भैया दारू पी के बीरा लोग के भैया गाड़ी देवतरा सब कुछ कर ऐसे में एक रोज इतना ढकोली से कि 7 बजे रात के इबात हुए पीसांग का पकवे ते पीसान भैया ना बारा बनावे वाला पीसान रस्तवा के नाम बा ने रस्तवा के नाम बा पीसांग का पकवे में ते एगो औरत के भैया फिरन देर तक यार के औरत के का बोले है गा और ओकर 2 बेटुआ एगो 14 एगो 15 और ओकर बेटुआ के एगो संगतिया 19 बरिस के ओके सब के ई अदमिया पे कड़वा एम हा एर अनफाल करी से भैया औरत के 3 लड़कन के 14 बरिस के लड़कुआ के काटी से भैया काटी से ओकर हाथ में गहरा घाव होई गे है राज गहरा घाव होई गे है 14 बरिस के लड़कवा के काठी से और ओकर माई के भैया ओकर माई के भी काठी से कितना देही में कपुआई से ओकर देही में और बतावे हैगा ओफर फॉर वार्निंग बाय द अंदर अनवेज के इस निच कमेंट और बोले द पुलिस स्टार फरदाख्त बकेन आल्स अल्कोहल फरस्लाव एंड सो बुर्टबोनर फाकर हैवे uitgestelden uitgeschelden और बोले एक बार में सिपाही पारादेश के रमिया के पकड़ के ले गए हैं कोर्ट तेज लाते और उकर घर से और बोलेगा जो चे काटेरा ओ पाई सेगा बस लाखली से अब ई जाएगा जहल में भैया नतीलक अब एक के जहलिया में दरुया कैसे पाएगा कैसे पाई नानी तो ये बात है हमारी प्यारे प्यारे जनता हम सोची तो लुके को गनवा सुना दे ता अबे हम तुरंत आ जाएंगे विनीता गौरा पूजा भैया कोनो गाना चटनी है

औरो मोरे जग पुर मनिता फिरी और ये था एक चटनी जों जो आपके हम सुनाई दिया है। तो हम चलते हैं और आगे तो हमारा दिलीप धू भी आ गया है, आपके स्वागत करते साथ साथ रानी समुझ भी आ गया है। तो रानी समुझ हमारा बहन होगा लेकिन बहुत सा ज्यादा समुझ है, तो आपको भी हम स्वागत करता है रानी समुझ जी। साथ ही साथ दिलीप धू भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में, सब जुड़ गया है। तो अब हम जाई भैया ई हम जाई है जोन अनमी बड़ा जबर चूसे है कुको ही नानी। हाँ जानो हमारे काम है जैसे ही सुनुआ कुकुया के बन हो जाए तो हम अब तैर बताएला कि कुकुई नहीं दलां तो ना लियो हुआ कटिया में ना पकड़ियो बन है। बाकी सही सुनुआ खुल गए है, सही सुनुआ खुल गए भैया। हाँ अब कुकही तुलोन का बोले पकड़ सके है। 8 अप्रैल से 15 अप्रैल ले कुकुया बंद रहा। हाँ अब कुकुही खुल गए हैं, अब जे जे सरनाम में है चलो जाए के चोपू कर सके कुकुही। मसाला में बनाइयो खूब भिंडी डाल के, हम तो ना खाइए लेकिन जे खाए भैया बड़ी स्वागत से खा है। अब सबको हम बोले ला भैया से स्मार्क ले कुकुही, अब हो गए है खुल गए है। और बोले हैगा सही सुनो वहाँ खुल गए है जिस आप लोग अब सगरों जाकर पकड़ सके है बेच सके है इन द खसलोतन सही सुन फरबोदन हम देश। और अंडा जोन है भी बंद रहा द नाथ इसे ओक फरबोदन ओम द अलन तेर एरन कैट ऑफ एरन नेस्टेड फरदीलन। तो हम बोली को कुहिया के बारे में बोले वन कितने आदमी भैया जो सूरीनाम में बा उ सब के लावे मांगे हैं लेकिन सब के ना लाई सके भैया। हाँ भाई जैसे बोले ला इकोरता टाइट पे फेव तक यंगर सूरीनाम में अरेनिंग से मरल है भाई, दैट इज हील फील है बुद्धू फॉर केस दौरन ता लोब स्नेल ऑफ आल फेव तक स्लाफ ऑफर्स दी या ए दैट यार मेरन देल यंगरन से इन ओवर लीडर भाई। यहां बतावे हैगा बोले ट्वी डाइसन फेवन ट्विन तक भर में एनन से तक को आदमी मरल ला फॉर केस से। बोले अतरवेल अबे हम लोग यूलिम बाटी और 50 गो भैये मर गए भैया, अबे हम लोग के देश मलक परल है का होइगा भला। हरीश मरोजे जिस ने पुलिस को बोले मेरन देल फॉर स्लाफ ऑफर्स एंड अलमान यंगरन में से अपन बेटवन के बिटियन के खुद अपरे लोन जे तुलोन जइयो तो आप लोन का बोले अपन लड़कन के खू मोई से देखियो। यहां पर रानी बोले फौच फान क्वी क्वी ओ या महिया तो लिखल है कुकुही इस ओपा तब हम अब का बोली जो ने लिखल है वही हम बोलत हैं क्विक सेक्शन इज ओपन सेक्शन फॉर क्विक क्वी वेर ओपन स्टार्ट हियर। मैं खुद में से एक आई फॉर दूर में मैं न्यूज़ तो लोन जानो है एगो कहाँ बोले है केरकी के आदमी है। अरे भैया पास तोर है हम ना बोले ला मीसी कब्बा के, हाँ हम बोले ला एगो मैये के भैया मैया के बोली ला देखो पास्टोर रहा तो एके मांगे बनावे इसराइल के अम्बासादर मांगे बनावे सब भैया तो एकर बारे में आदमी लोग बड़ा बसवार करी से बड़ा बसवार करी से मिनिस्टर मेल्फिन बोफा बैजनो साकन के कहा बोले हैगा बोले लेख नीड वाकर फॉर अ क्रेडिट ऑफ द मोनुमेंट फॉर द बिशप स्टीव मेयर अस नीट रेसिडेंट एंबेसडर फॉर सूरीनाम फॉर द स्टेट इजराइल फॉलोइंग द बिवेस वांट इन द ओवरकस क्रिटिक ऑफ मेयर फील अ पर्सनल गरेग एंड नीट साकलक ऑफ सेन वर्क। तो एकर बारे में अरवी लोन बहुत बहुत क्रिटिक ले फर कलर रहा मैं एक बारे में एनपीएस के फ्रक्सी फोर्स ले फ्रक्सी ले इधर रहा जेब जेरल पावीरे जो फोन द बसलेटन फॉर द हैंडलिंग फॉर इजराइल टेकन ओवर द पैलेस्टाइन एंड फुलकॉमन इन स्ट्रेस है मेरे नॉर्मल फॉर वार्डन तो लोन जानो है और मलाई लोन मुस्लिम हुए भैया और तो लोन जानो है इजराइल जो रहा और भाई अबे पैलेस्टाइन के संगे का करी से
toh habana Suriname ke jun muslim sega matlab ki DNA me te isap na mange hai ka ke Israel me jaike aur ego ambassade baithe en daarom hebben ze deze kritiek mensen en dan mogen jullie zeker weten hoe en wat het is. हम चलते हैं और आगे भैया हियां बरोन तो तू जाने बड़ा मोया मोया वर्द है तो पूनम अवतार भी लाइनिंग से आ गया है पूनम जी बेटी आपको भी हम स्वागत करते हैं साथ साथ सुनील सुनील दत्त गजरी गजरी जी आपको हम प्यार से मां स्वागत करते हैं तो तू लोग जानो सोमो हार्जो पॉल सोमो हार्जे का बेटा हुआ बरोन तो हां ये इतना लंबा लंबा कहानी बतिया भैया किलोमीटर के फैया पे के फन आ तो सेट गरियाई के धर दे से और एक के टॉक्स ताज मुश्किल लुकिंग मिलल है लेकिन एक कोई पकड़ के बनवे ना करे है हां तो अब एकर बारे में भइल है कि आउट मिनिस्टर फॉर बिलेंस आके के बिस्सा के और एक्स मिनिस्टर क्लीम और हुफ ग्रांट के फाइनेंशियन के रियाद नूर मोहम्मद ओवे के स्टार फन मुश्किल लुकिंग सब कर ले रहा फोर स्ट्राफ बार फैटन और यह बताए गए है ब्रोंटो सुमहार्ड अल फरदाख्त फॉर होर दो ओएम अब ओके सबन फॉर होर करी से ब्रोंटो के म कैसे भइल कैसे ना भइल है और नया न्यूज़ से भैया ईरान मेल्ट 30 दौदन अमेरिकन से अनफालन चौक साथ रो छुई की लड़िया भैया और 30 आदमी मरल है ईरान के अमेरिकन से अनफालन जोन भले ईरान में बोले हैगा राक्तन मेरन 260 खवंदन एकर बारे ईरान के वो फुर्दर बोले है अनफालन ओवर एंड वेयर द अफगलोपन दागन बहुत अनफाल के इस अमेरिका ईरान के ऊपर और बोले ईरान भी दागी सेगा लुक्त अनफाल के से कुवैत में और बहराम में जहां पे अमेरिकन के बस अमेरिकन से वहां पे उस अपने बासस भी हैगा फोकस ईरान से अने खारद बोले अमेरिकन से वापन ऑब्सक प्लाचन के दागी से जमन द फेस मेल अनफाल ते हमर एट को फूड कि दसन को मिलिटेरे दुलन इन द बूर फन द स्ट्रेट फन हॉर्मुज en in de gebieden van Iranse kust daarbij waren volgens Amerikaanse leger onder meer raketteninstallatie, drones en marineschepen het doel van mensen. Ik volg de oorlog namelijk niet alleen van Amerika en Amerika en Oekraïne en Rusland, maar toch wel heel veel mensen. ये बात है हमारी प्यारी प्यारी जनता कि कैसे होगा और कैसे नहीं होगा तो दोस्तों हम और आगे चलते हैं

de हमपिन वापस आ गए हैं। दिस मींस यहां पे बताई गई है मास्कर सुरीनाम में भैया मास्कर जाने का बोलो तो ना जो हमार मौसी लोन में के पुआ लगावे मास्कर वो के ना बोले ला चोरो और मास्कर वा बोले ला सुनील जो मुड़िया में पहले कोई ना देख पावे औ मास्कर वा बतिया ले ना हमार भौजी जो लगाए लगाए चमकावे उ मास्कर वा ना है तो भैया ई मु मास्कर वा है। अब भैया जोन समझ जाए के ऊपर फाल करे है यहां बताए गए है करिया करिया मास्कर पहले स्वार वापस प्रीख ओफरफाल खौज सुकर्स काम पर और दुकान में भैया वही मारे तो चिन्ह वालों हुआ जाए जाए खौज सुकर्स जो ने अपन बफाई लिखिंग धरे हैं यहां पर बताए गए हैं कि 12,000 एसआरडी 15 ग्राम सोना मारी से जहां पे सोनवन खुदा है क्रिमिनेलन खौज में एक शख्स भी तय टिकन फोर से दिन से फ्रीस अंदर क्रिमिनेलन के तुरकेरन ओम दद बैट फोकस है खरिंग वासमेंस तो ई रूफवा के चीजवा हम तो लोग के बड़ा ढेर बताई चुकली है। हम सोची तो लोग के और मोई मोई न्यूज हम बताई भैया और मीठा मीठा न्यूज हम तो लोग के बताई क्या होता है। देखो भैया हम जाए तेरी अफ्रीका के ओर हाँ बोलिए जॉनी अफ्रीका में का भरी सूदान के बातचीत हो रहा है बुद्धू। सूदान में भैया तो तू जाने है का बड़ा बीमारी है हुआ हाँ तो कभी गोरेला तो कभी मोरेला कि कौन चीज ना मोरेला तमाकू ना गोरेला है भैया खोली रा बोलीला बीमारी है जेमा 114 आदमी मर गए हैं 1300 वो बस मैटिंग भइल है। सूदान में खोरेला एगो बीमारी भैया बस बैटल का ड्रम इन्फेक्शन हैगा दी वर्ड फॉर ओट्स आर बैक्टीरिया फिब्रियो कोलेरिया द सिक द फर्स्ट प्राइस फॉर ऑल फियर फॉर फेल वाटर एंड फुटसल एंड कांसिक स्नेल ऑयल ब्रेड इन खबीदे फॉर अ स्कोन ड्रिंक वाटर एंड गुड सैनिटेयर फोर्सिंग के बारे में तो इतना जबर बीमारी हुआ है दोस्तों। दिस जनता लोन के ने, ने, का बोले अफ्रीका में वहां पर बड़ी दुख है हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे जनता। हम जाई है भैया और आगे को अपना प्रोग्राम लेके काल पुलक वेत हाँ हम लोग के नीदरलैंड में काल पुलक वेत है मतलब जब तू चो का बोले अपन पैसा अपन धन दौलत जोन बा नीत ऑफ द यस्ट मनीर है फरदीन तो के ये फ्योत यहाँ पकड़ेगा ब्लास्टिंग दिन पकड़ेगा तो के एनम निकिया जाए तो बोले काल फ्लोक वेद मतलब कि जैसे मुर्गी के सब नो चले हुए पखनवन है ना राज तो के बोले काल फ्लोक वेद तो अरमियन के पास कुछ ना है तो बोले हैगा वात खाइए फ्लोक फानन काल के दूसरा चीज हो जाए मकाल प्लुक वेद जो नहीं गा तो के इनम निकिया ढाड़ी अब सबन मांगे भैया काल प्लुक वेद सुरीनाम में बनावे तब तो बिना कपड़ा के दया नोन जाए दया नाम में भाई बैठ सोचो तो काल प्लुक वेद मांगे दया नाम में सबन बनावे भैया फराख आंदा फुर रेकबस्केर में इन एट फुरे कभी ना हो पाई भैया एगो इंग्रिड कार्ता बैंक है का फोर्थ सेटर फॉर कमिशन फॉर रिपोर्टर्स ई बोले बहांडलिंग मांगे करे बोले हैगा वेदर रखलक फॉर क्रीक फॉर फोर डील बेटर बकेंद अल द काल प्लुक वेद डोनडक नेशनल असेंबली में सबन ब्रीदर्स टून फॉर द फॉर द डूलस्टेलिंग फॉर द क्रिमिनल en hun illegale verkregen vermogen te ontnemen. Mille John illegaal se kini se bhaiya 3 go 4 go helikopter. Tulon samaj gaye le to jeke jeke bhaiya dekhiyo aur on puiri se aur drug se aur us sab chijwan se sab banaye banaye dhari se na ab okay kalplik vetwa je ho jaye to sab ban jaye okay kal kare baki u vetwa jaye tak mut देख के काल करियो वन उमा तो कितना असेंबले ये में बैठल है तो सीमा विष्णु दत्त भी आ गया है तो सीमा जी आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। तो यहां बताए गए हैं बोले हैगा असेंबले बोले ब्रेदर्स टेन करी से फॉर क्रिमिनल ने लिखा ल फकरी के फॉर मोहन तेदन से एस्टर रोंदन फॉर कमिटी फॉर रिपोर्टर्स
onderschreven. De woordvoerders het belang van de wet in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, corruptie en witwassen. Maar vroegen zij tegelijkertijd om verduidelijking over onder meer de rechtbescherming, de bewijslast, de uitvoerende capaciteit en de aansluitende begaande wetgeving. To karta brink jun he imang ekal pluk vetwa abitala we ekar bare me krishna motra fe ya pe ke bole hega ki bestrijding van de georganiseerde criminaliteit noodzakelijk is, maar dat de rechtsstaat daarmee steeds centraal moet blijven staan. Zij vroeg de een uiteen te zetten hoe de nieuwe wet zich voorhoudt. De ikker barim toch een bhaiya bari jabar volg karab. Ki kaal pluk wet wat kab hitter ja he. Corruptie wet ke bari san lagge bhaiya baki abbe corruptie karmiye na pakraan he. Hoef de laat kan niet kahan kahan baithal be itra corrupte lingen jo niswam he. Oké, ooit pakken ben ik er eens tegen. Dus ik vraag me af, regering, gaat deze wet wel werken of niet? De corruptiewet is al in. Toch zijn er zoveel corruptie in het land. En gaat deze wet wel werken, de kaalplukwet, of niet, mensen? Ik heb het grote twijfels eraan. Ik heb er grote twijfels eraan, maar ik zal dat op de voet volgen, mensen. Ki is heb koontje kere, koontje nakere, he. Dus die kaalplukwet is goed, maar gaan ze dat wel doen of niet? Dus daar gaat het om, mensen. Jantake de kawe kato sabkoi eisba. Ki kaalpluk wet wa in jai. Baki kaise jai, kaise na jai. Ab deko trem ka karis bhaiya. Trem bolie orlok karis na na na na. First care up karis visum regeling na Amerika. Toe mensen, voor studenten, voor buitenlandse studenten en journalisten. John jai ke hua pe visum aanvraag kari Amerika ke. Deze maatregel in de nieuwste stap Trump begeleid om illegale immigraties te verkennen. Oroboleg verblijf die 240 dagen in Amerika met toeristen. Studieprogramma's als journalisten krijgen maximaal verblijf van 240 dagen. Ongeveer 8 maanden toeristen. Chinese journalisten, de Chinese journalisten, ook mag 90 dagen gaan per week. Toen IJC, ook Kardese, die journalisten hebben moeilijke immigratie aanpak van Trump, die zich kennen merk zo streng la handhaaf in de grote steden. Toe je baat he, hamari janta Amerika ke baare me. Ja, betawe Amerika 2023-2024 1,1 miljoen internationale studenten, meer dan enig andere land. Deze studenten droegen 2023 50 miljard dollar bij de Amerikaanse economie ke baare me. Toe janta Hamburg, wat hij niet doet, ja, kijk je, hè? Amerika, kijk je, in Suriname, met je traloog, hè? Oesapke, kijk je, visum, hè? Maar hem betalen algemeen, die wet wat scherp kris, hè? Kabul, hè? En Trump, en wet wat in hem streng kris, hè? Toch, janta, hem chalte, hè? Aur aange ko, apna, प्रोग्राम को लेकर बड़ा बड़ा न्यूज आते लोग को हम दिल्ली नया नया न्यूज दिल्ली है और काबल बड़ा जोर से नाम में चोरी हुए भैया तेल सिर के काबल जब घरवा तरवा ना कमाएगा ना तो बोलिए का भाई ना हुआ चोरन भैया कबलवा काटे हुए है तेल सिर के चीज काटे हुए है तो कुमार सामी समझ भी आ गया है बारह देर में ले रखे नमस्कार हो राकेश जी आपको हम भी स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में तो हमारे जनता इन ब्रेकन क्रैश में फ्लुक अब चोर लेके हो तो भागे भैया पांचे सिपाही दौड़ावे अब चोर काकरी से चोर भागे हो तो लेके बस जाए के घुस गए गोथरों में नानी बकी खोल के बड़का गोथरो नाना ने चोरवा बुड़ के मर जात ओ तो हुआ ना उल्टन बकी ते होता फिर जाए के गोथरुआ में लगाई से चोर निकल के भगल सिपाही ना पकड़ पाई से बारा अफसोस के बात है भैया बड़ी अफसोस के बात है कि सिपाही ओके ना पकड़ पाई से और हमारे देखे में एक घंटा हो गया है हमारे यारो

0: तो हमारी जनता, हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे जनता, घड़ी की ओर देखा जाए तो ये घंटा तो हमारा हो चुका है, तो समाप्त तो करना ही पड़ेगा ना।
1: मिका दो मैं सिंगवा सिंह की आला दे मासरा दिन सब ड्राई बेदी दिन सब रोकना ग्रोंग जैसा लेरा हरफारे फोर रोकना ग्रोंग फामुस रोको ओके ठीक है।

नमस्तस्य नमो नमः। हरिओम, एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रेलो आप लोग साथियों। पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार की जिमलो का सागर सा भरा हुआ प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णादत्त भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार का शाम का प्रोग्राम साप्ताहिक प्रोग्राम 19 जुलाई 2020 का ये हसीन शाम का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। तो जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में हो या तो काम कर रहे हो, मोटर कार में सफ़र कर रहे हो, जहाँ पर भी हो, दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ शाम शुभ रात्रि पेश है। मैं ढेर फील लश्तर प्लेजीर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्तेफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। तो जो भी रेडियो का काम है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान करवाना चाहते हो यार, तो ज़रूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फन मांडा तक फ्रेडा ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 070-365-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 070-362-2077। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ये काम आप लोग के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। एन इत फेत है उनसे क्वालिटी इस आउट यू फ्रांसी एन अ ड्यूर लग ना ड्यूर लग ना ड्यूर लग फूट इस आउट

ये अशोमीद है हमारे फुल टीम की तरफ से कि जिस तौर तरीक से भाई रॉय आप सभी को हमेशा की तरह सेवा करते आ रहे हैं, उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद भाई रॉय जी, और आपको भी हमारे फुल टीम की तरफ से एक हैप्पी हैप्पी वीकेंड। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो। विवाह संस्कार तो बीत चुका है ना, कंगन भी छूट चुका होगा ना, या तो दिने दिन भी शायद से उम्र में इतवार के भी ब्याह हुए। बधाइयाँ ही बधाइयाँ हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को, और ऊपर वाले से हम लोग सब यही विनती और निवेदन करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं, नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो, गमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। हिर फिर स्तरकते में थी उसी दुआ से जो बीमार लाचार है, आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, बेहतर हो जाए, चंगा हो जाए, ना तिलक जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु, और थोड़ा बहुत तुम लोगों के बारे में जरूर बातें शातें करते रहना, क्योंकि हतलीफ दीत औत है फनहारते बीत खाब मुन्ना। बीमार है, लाचार है, आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम लोग मिलकर विनती करते हैं ना। और अगर आपके घर पे दुख है, मातम है, तो हम आपके दुख में अपने फूल टीम के साथ हम लोग शरीक है, और विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को ऊपर वाले शक्ति और सहन शक्ति प्रदान करते रहे ना। हिल फिल बहुत दुख के बात है कि आज शाम के प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप ज़रूर सुनिए, और वो भी 5:30 बजे आज शाम में मृत्यु समाचार आप ज़रूर सुनते रहना। आप कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयाँ ही बधाइयाँ, और अगर हो सकता है कि आज या कल आप कामयाब नहीं हुए हो, तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु, मोर्ख इस वीर दख है। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास, भरोसा, यकीन, सेल्फ थ्रोवत और आउटडोर तो उसे बढ़ाते रहना, और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो हो सकता है कि कामयाबी भी जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आकर आपके कदमों को चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी, यार नोई तो खीफ है वो तो खलेट है दैस ऑफ स्कूल ओवरऑल ऑफ योर वेरिक नेफर गिव अ ब्रदर नंगा सीसा सो सो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड एट योर लक बदंग फॉर इट लुस्ट्रन। यीशु परवेश हुए हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से सुस्वागतम, फेन फकांसी ब्लेव लुस्ट्रन आर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, यू गोना लाइक इट एंड दैट मीन इट ओ। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपको हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ यात्रा, फेन फकांसी। तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को इंटरनेट के लहरों द्वारा ओपन फकांसी एड्रेस, तो आप भी सुनिए हम लोगों को ऑफ यू टैबलेट लैपटॉप ऑफ स्मार्टफोन सो बेंट यू एंड ब्लेव टू फनालस ऑफ द होस्ट ऑफ यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली हमारे देन हाग शहर का द वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुडू। तो साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ, फ्रॉम द मूवी ललकार ने कंपोज्ड बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के। आज गा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना, इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ

रहे हैं और सदा ही कहते रहेंगे यारों की हैप टू नास्ताल तेजलीफ हैं, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारों, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक हमारे सरनामी संगीत का प्रोग्राम। पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक और हमारे तीसरा अध्याय में आप सुनेंगे सिर्फ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। बीच में कुछ ज्ञान के बातें है, शेर शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा। 5:30 बजे शाम को ज़रूर आप मृत्यु समाचार सुनने के लिए मैत्री कृपा करें। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हमेशा की तरह। प्रोग्राम का शुरुआत रवि साहब जी के मधुर आवाज़ में।

मुस्कुरालो महफिले सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, आज का इस हसीन शाम जो आप सभी के नाम है, मैं शुरुआत करने वाला हूँ एक जबरदस्त कलाकार के मधुर आवाज के साथ। स्टूडियो की तरफ जब मैं आ रहा था तो तापमान तकरीबन 20 और 21 डिग्री के दरमियान था, कुछ धूप भी निकला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए साप्ताहिक प्रोग्राम सुनने के लिए हमारे सरनामी संगीत। और जैसे मैं कह रहा हूँ, एक जबरदस्त कलाकार, इंटरनेशनल कलाकार, हमारे सुरीनाम देश का वन एंड ओनली मास्टरो रॉबी उटित राम जी को लाते हैं प्रोग्राम में, और उन्हीं के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए ये जबरदस्त सॉन्ग। उस्तादों का उस्ताद द वन एंड ओनली, एक जबरदस्त कलाकार जिस पे मैं नाज है, गर्व है और होना भी चाहिए। द वन एंड ओनली श्री रॉबी उदित राम जी की प्रीत के रीत ना जान सकी।

Shabash, ustado kaustado, remari Surinam diska, internet, national, aur jabardast kalakar, the great, Robbie Udit Ram ji ke beautiful awaaz mein ye tees sundar bayan aap sun rahe the. अगला यहाँ की तरफ बढ़ते एक और नौजवान कलाकार है हमारे सूरीनाम देश का. इनका दादाजी एक बहुत ही जबरदस्त नाटक कलाकार था और एक बैठक गाना का महा महा गुरु. दिग्रे छेदी भान जी का नवाजा है कृष्णम छेदी जी का ये बिल्कुल न्यू सॉन्ग.

एकदम शाबाश शाबाश शाबाश नौजवान कलाकार हमारे सूरीनाम देश का बहुत ही जबरदस्त खानदानी संगीत परिवार से ये वहाँ पर जन्म लिया है। मैंने तो कह चुका हूँ ना, इनका दादाजी एक जबरदस्त बैठक गाना का महामहागुरु था, डगड़े छेदी भांजी। पवन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, 6 मिनट रह गया है 5:30 बजे।

साथियों, जैसे मैं आपसे भी इसे कह चुका था, प्रोग्राम में कुछ देर के लिए यहाँ से रोक देता हूँ, क्योंकि 5:30 बजे आप मृत्यु समाचार सुनने के लिए मेहती कृपा कीजिए।

0: वही लेता उसी का है संसार, एक आता एक जाता ये जग का है व्यवहार।
1: मिट्टी का
0: पावन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मृत्यु समाचार पुकारा जा रहा है, ध्यान दीजिए या गौर फरमाइए। सूरीनाम और नीदरलैंड से, सूरीनाम और नीदरलैंड से परिवार गंगा, परिवार अधीन, परिवार बिरजा और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 17 तारीख जुलाई को सूरीनाम में सूरीनाम से तहत 5:30 बजे यानी हल्फ सेस 92 साल के आयु में बेटा जीवन अधीन की माँ, पतो इंदिरा की सास, पोतिन अनवीति की आजी, बेटी उषा की माँ, दामाद अमर बिरजा के सास, नाती और नातिन युवराज और वर्षा बिरजा के नानी, नतदमाद और नतपतो प्रशांत और संगीता की ननिया सास, दो लड़के की परनानी, बेटी मालती की माँ, नाती शायर की नानी, दनहाक से बहनोई श्रीमान नंद कुमार गंगा की साली, बहन स्वर्गीय बैती गंगा की बहन और स्वर्गीय पति हरि अधीन की पत्नी, सूरीनाम परमारिबो के रहने वाली मोहिनी महाराज जी अधीन कल्लू के स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर, जिन्हें आप अखनेस और तंत अखनेस के नाम से भी जानते थे। सूरीनाम में अपने दिनों में वो खरीफीर थी। सूरीनाम में अर्थी आने वाला दिन 10 जुलाई शाम 2 बजे सूरीनाम में सूरीनाम से तहत वेखनर से ही उदय राज सिंह वर्मा क्रिमासी ओर्त में दाह क्रिया किया जाएगा।

सूरीनाम और नीदरलैंड से परिवार गंगा, परिवार अधीन और परिवार वीरिया और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि शुक्रवार 17 तारीख जुलाई सूरीनाम में सूरीनाम से तहत 5:30 बजे यानी हल्फ सेस 92 साल के आयु में इंदलीफ से फन तुन निकंतक यार बेटा जीवन अधीन की माँ पतो इंदिरा की सास पोतिन अनवीति की आजी बेटी उषा की माँ दामाद अमर बिरजा की सास नाती और नातिन युवराज और वर्षा के नानी नद्दमाद और नदपतो प्रशांत और संगीता के ननिया सास दो लड़के की परनानी बेटी मालती की माँ नाती शायर के नानी दनहाक से बहनोई श्रीमान नन कुमार गंगा की साली बहन स्वर्ग बैती गंगा की बहन और स्वर्ग पति हरि अधीन की पत्नी सूरीनाम परमारिवो के रहने वाली मोहिनी महाराजी अधीन कल्लू का स्वर्गवास स्वर्गवास हो गया है उनके निवास स्थान पर जिन्हें आप अखनेस और तंत अखनेस के नाम से जानते थे। अपने दिनों में वो सूरीनाम में ख्रिफीर थी। अर्थी आने वाला दिन दख एन तुवेंदख यूली को शाम 2 बजे सूरीनाम से तहत वेखनर से ही समुद्र के किनारे उदयराज सिंह वर्मा क्रिमासी ओर्त में दाह क्रिया किया जाएगा।

यहाँ तक था ये मृत्यु समाचार। सुनने वालों से निवेदन है कि ये खबर को और लोगों तक पहुँचा देने को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सभी परिवार गंगा, सभी परिवार अधीन और सभी परिवार बिरजा और बाकी परिवार को शोक संवेदना प्रकट कर रहा है।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का शाम का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। अभी आप श्रोताओं ने प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुन रहे थे। श्रोताओं से गुजारिश, निवेदन और विनती किया जा रहा है कि ये खबर को और लोगों तक पहुंचा देने को। घड़ी की तरफ देखता हूँ यार, तो 19 मिनट रह गया है 6 बजने में। तो सरनामी संगीत का प्रोग्राम आप सुन रहे थे, तो मैं बढ़ाता हूँ। अगला बयान लेकर आ रहा है नौजवान कलाकार हमारे हॉलैंडीज का, फ्रॉम द हीरा फैमिली België uit deze beroemde muzikale familie. The one and only Vishal Hira Jika e Bilkul Naya Song. Hamare Rania. Enjoy the music, man.

शाबाश शाबाश नौजवान कलाकार हमारे ऑन इंडीज का द ग्रेट मैस्ट्रो विशाल हीरा जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग प्रोडक्ट फ्रॉम द हीरा ब्रदर्स। 12 मिनट बाकी है साथियों, 6 बजने में और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर जोर तोर से आप सरनामी संगीत सुन रहे हैं। एक और जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश का इंटरनेशनल कलाकार और एक बैठक गाना चटनी का क्वीन द ग्रेट मोतीमाला भोला सिंह जी को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाती है आप सभी को एक बिल्कुल नया सॉन्ग जो कुछ दिन हुए है रिलीज किया गया है। मिलके सुनते हैं खुशियां मनाओ मोतीमाला भोला सिंह जी।

Natuurlijk, natuurlijk. Bedanya hi, bedanya voor degene die jarig is. Natuurlijk, Hamane Surinamdishka, de chutney en de Baitha Ghana Queen, the one and only Baitha Ghana ka ik Guru Ma Srimati Motimala Bhola Singh Ji. तो आज का इस हसीन शाम जो आप सभी के नाम है यारो, पहला अध्याय का एक आखिरी बयान आप सुनेंगे और वो सुनान के जा रहे हैं आप सभी को हमारे हॉलैंडीज का एक जबरदस्त महान कलाकार, नौजवान कलाकार फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मासी रिश्ता माएस्ट्रो दीपक कन्हाई जी का ये बिल्कुल नया चटनी सॉन्ग।

ऑन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूँ यारो तो 3 मिनट गुजर चुका है, 6:19 जुलाई 2020 का ये रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे दूसरा अध्याय सरनामी संगीत का, तो हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एनाटोलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सो लुबी लुबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एनाटोलिक बदंत फॉर हेट लाइस्ट्रन। जो भी रेडियो का काम हो यार खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक इवेंटमेंट और खनिशातर हो ऑर्गामान हो या तो ऑर्गा वुमन, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो अपने व्यापारी के बारे में कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान करवाना यार हो, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है।

पर हम लोग बनना करो और आप जितने बार चाहेंगे बंधु उतनी ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ सदियों से कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को ऑनलाइन देश भर में नहीं मिलेगा यार, आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी आप तार करें अब डिफॉल्ट हिंदे टेलीफोन नंबर्स कंटोर 9 6 3 6 7 4 और स्टूडियो का तार का नंबर है 9 6 3 6 7 4 7 7। जो भी रेडियो का काम होना थैंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू इसके लिए और आप सभी को हमारे फूल टीम की तरफ से तह दिल से धन्यवाद क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एन या een tijdje geleden hebben we ook onze eigen karaoke team club van Faun Hindustani Radio waar heel veel omroepsters ook live zingen en ook een paar keer al live hebben opgetreden, zoals vanmiddag waren we samen met heel veel zangers en zangeressen, waaronder ook een paar van Faun Hindustani Radio bij Anil Sergio, die doet elke zondagavond karaoke middag organiseert hij. En natuurlijk zijn we allemaal daar welkom, dus volg onze social media, dan gaat u zeer zeker binnenkort horen waar wij met ons team van Faun Hindustani Radio live voor u gaan zingen. तो आप भी आकर इस छोटा सा मोटा सा जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बनते जा रहे हैं, आप भी आकर उसमें शामिल हो सकते हैं। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें op 07 3 6 2 7 4 en vragen naar onze team leader the one and only maestro Johnny number 1। तो आप भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, यू बैन ओक फन हार्ट वेलकम। वर के मुताबिक एक ही दम हमारे दूसरा अध्याय की तरफ लेकर चलते हैं आप सभी को सरनामी संगीत का, जो हर रविवार शाम 5 बजे शुरू होता है, तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलते रहते हैं। तो एक जबरदस्त कलाकार हमारे ऑल इंडीज का आप सुनेंगे जो काफी तजुर्बेदार है, द वन एंड द ओनली, यस यस यस, मैस्ट्रो अनिल पराग जी का बिल्कुल नया सॉन्ग 2 वीक geleden op YouTube gezet natuurlijk en nu आप सभी के लिए, आप सुनिए और मजा लीजिए। कलकत्वा, म्यूजिक बाय सेलेक्टा बीट्स, अनिल पराग।

Cătva, niu, niu, niu, van maestro, anil, parah, music by Selecta Beats. Faun Hindustani, radio pe acțiun hai aro, रविवार रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 12 मिनट गुजर चुका है 6:05। अगला बयान एक और जबरदस्त मैशिप है, उमरिया मैशिप फ्रॉम द म्यूजिक फॉर्मेशन द स्टार्स। गाने वाले है जबरदस्त गायक सुरीनाम देश का द ग्रेट रोहित छेदी।

वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त म्यूजिक फरमाइशी हमारे सूरीनाम देश का द स्टार्स का ये जबरदस्त सॉन्ग खुशोंगदोर माएस्ट्रो रोहित छेदी उमरिया मैश फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथी और रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 19 July 2020 का हसीन रविवार का रात्रि का प्रोग्राम दूसरा अध्याय हमारे साप्ताहिक सरनामी संगीत का प्रोग्राम। अगला बयान दो जबरदस्त गाने वाले, एक है हॉलैंडिस का और दूसरी ट्रिनिदाद। दो सिंह जब मिल जाए तब सिंह ही सिंह होता है ना। प्रोग्राम में मैं ला रहा हूँ हमारे हॉलैंडिस का उस्ताद द ग्रेट सिंगर इंटरनेशनल कलाकार हमारे हॉलैंडिस का द लायन ऑफ बैठ गाना हार्ट ऑफ एन अंदर तूर नातिरलक ऑलराउंड संगीतकार मैस्ट्रो देवेंद्र सिंह शिवनाथ के ब्यूटीफुल आवाज और साथ दे रही है The great, great, great गाने वाली हमारे वेस्ट इंडीज का ट्रिनिदाद टोबैगो का सर वीता सिंह दोनों मिलकर सुनाते हैं। क्या बात है, क्या ही क्या यामान अतिशन हेल मोय नंबर और हेल खुद बकेकर नाटक ऑफ यूट्यूब दो साथी ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू बोथ।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग शाबाश शाबाश दोस्त साथी जीवन के, क्यों नहीं अ लवली कपल देवेंद्र सिंह शिवनाथ एंड सविता सिंह के ब्यूटीफुल आवाजों में तीसुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। साथियों साढ़े छह बजने में और आप जोर तोर से सरनामी संगीत सुन रहे हैं, चुन है आप फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। अगला बयान सेलेक्टा बीट और इस बार गाने वाला है द बरुंड सिंगर, पॉपुलर सिंगर हमारे इस जमाने का, हॉलैंडीज का माइक जेट टुगेदर विद सेलेक्टा बीट शो बैंड
1: King Selector and Jerry Bass Concepts.

ब्यूटीफुल सॉन्ग आप लोगों ने सुना, गाने वाले माइक जेट, जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का, म्यूजिक बाय सेलेक्टा बीट्स। तो साथियों प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ।

श्री जबरदस्त चटनी और फाइफल सॉन्ग हमारी रे प्रेजेंटिंग बाय लक्ष्मी नगर म्यूजिक. थैंक यू मैम. अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है और एक महान गायक जो 1980 से हमारे इस संगीत के दुनिया में उतरा है, देन हार्ट शेयर से लेकर रोटरडैम शेयर तक, और एक जबरदस्त खानदानी संगीत परिवार से जुड़ा हुआ है ये महान उस्ताद. उस्तादों का उस्ताद खुद लिखता है, खुद कंपोज करता है, खुद गाता है, उस्ताद सुरेश हीरा जी को लाते हैं प्रोग्राम में. और उनका ये बिल्कुल नया सॉन्ग जो 4 दिन हुए है रिलीज हुआ है यूट्यूब पे, तो मिल के सुनते प्रीमियर ओक बैराडियो फाउन फॉर अलमा मैस्त्रो सुरेश हीरा का बिल्कुल नया सॉन्ग तू है गुलशन बहार, कंपोनेट एंड अरेंजेड बाय मैस्त्रो अशोक अयोध्या तमिल प्रोडक्शन.

Shabanse ustad ka ustad maestro Suresh Hiradika ye bilkul naya song to hai Gulshan Bahar arranged and composed by maestro Ashok Ajodhya. नौ मिनट बाकी है साथियों, सात बजने में और आप चुन है आप ही का मन चाह रेडियो स्टेशन पर हमारे दिनाशर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर और जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं वेस्ट इंडीज और सूरीनाम हॉलैंड का कुछ कलाकारी। अगला बयान एक जबरदस्त न्यू सॉन्ग है जो दो हफ्ते हुए रिलीज किया गया है, म्यूजिक फॉर मासी बे, देखा जाए तो गाने वाला है श्री अरुण शिवदत्त, म्यूजिक बाय आरएमएस एंड मिक्स्ड बाय विकास लक्ष्मण। बड़ी दुख दीना सरनामी चटनी ट्विंटक सेशन ट्विंटक बाया, एंजॉय द म्यूजिक।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 19 जुलाई 2020 का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अभी आप 2 घंटे तक सरनामी संगीत सुने, कुछ बैठक गाना, कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक। अब आ गया है तीसरा अध्याय में सिर्फ कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एना तिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सो लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अतिलक बदंत फॉर लिसनिंग। गुजर चुका है 7 बजकर और आप सुन रहे हैं आप ही का हैप्पी हैप्पी रेडियो स्टेशन डायरेक्ट फ्रॉम दी हेग सिटी देन हाग शहर। तापमान तो तकरीबन 19 डिग्री नीचे चला गया है और धूप भी अब थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मौसम हसीन है, मधुर है। एनातिलक स्ट्रक्स ऑफ नेगनूर वीका 2026 का फिनाले। वी गाट इट वर्ड मेसी ऑफ यामा। एक वेंस अलमाल सक्सेस एंड मोगे द बेस्ट विने है। अभी तो काप कुछ 5 या 6 हफ्ते तक बैना होने वाला है कि ये फुटबॉल मुंडियाल वर्ल्ड वाइड खेला जा रहा है अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, और आज फिनाल है। कल यहाँ तो आप लोग देख रहे 3 दूल पिंट है। जो भी रेडियो का काम हो साथियों, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो कास्ट फरमाइशो जरूरी खबरें इस तिहारे देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। डिफाइट्स से नाम सर्विस ग्रांटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, काम हो, उपमाट पर हम लोग बनाकर बंद हुए और जितने बार आप चाहेंगे उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से ये कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी के ऑनलाइन देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख सभी जानकारी। बेल फ्राइडा ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags natuurlijk, tijdens kantooruren. Kantoor 070-365-2247 of Studio Qatar kan nummer heen 070-362-2077. Job hier radio kan kam hona, denk aan van Hindustani Radio. U bent van harte welkom hoor.

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे, मैं तुम्हारी जिंदगी

नवामी रे। महान गायक इस जमाने का द ग्रेट जुबीन नौटियाल जी के ब्यूटीफुल मधुर आवाज में तीसन बयान आप श्रोताओं ने सुना। कंपोज एंड अरेंज बाय माएस्ट्रो रॉकी और अल्फाजे था इस जमाने का महान लेखक द ग्रेट मनोज मुंतशिर जी का। 15 मिनट गुजर चुका है साथियों, 7 बजकर और आप मनोरंजन ले रहे हैं कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का। अगला बयान इस जमाने का जबरदस्त गायक नंबर 1 सिंगर जो अपना आवाज 1 लाख पे चप धर दिया है बीच अनंत स्लैमर माराफेंटू स्टूट है वेलन लुक निमर, वो सुनाएंगे मैं बाद में। लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए इस जमाने का द क्वीन ऑफ मेलोडी श्रेया घोषाल जी का गाया हुआ अति सुंदर बयान है फिल्म सायारा रिप्राइज। म्यूजिक अरेंज एंड कंपोज बाय तानिक बख्शी फहीम अब्दुल्ला और अरसलान निजामी। अल्फाज है इरशाद कमील का और आवाज है द ग्रेट ग्रेट ग्रेट श्रेया जी का।

0: Price. The Queen of Melody is the Manika, the great Shreya Ghoshal ji ke beautiful avance mein thi Sundarbiya naam se tauni suna. Aur film Sayara composed and arranged by Tanik Bakshi, Fahim Abdullah and Arsalan Nizami Al-Fazi hai. Irshad Kamil ji ka is zamane ke mahan lekhak. 20 मिनट व्यतीत हो चुका है साथियों, 7:00 और आप सुन रहे हैं रविवार का रात्रि का प्रोग्राम देन हाँ शेर से, और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री. चल रहे है साप्ताहिक प्रोग्राम. अगला बयान जरा दिल को थाम लीजिए, काफी दिनों बाद ये महान फनकार कुछ सुनाने वाला है और कुछ आप सभी से भी कहने वाला है, तो सुनिए और उसके बाद ये अति सुंदर बयान से आप मजा लीजिए. खास करके अल्फाजे पर आप जरूर ध्यान देना क्योंकि ये नगमा बीटलेस है.
1: You're not taking on any projects. For some time you want to take a break. Or you want to not sing for Hindi films. ऐसे मत करिए. हम लोग का क्या होगा भाई?
2: नहीं नहीं ऐसा नहीं.

आप सभी को इस जमाने का एक फंड बेस्ट सिंगर्स ऑल टाइम मैस्ट्रो अरिजीत सिंह जी के ब्यूटीफुल आवाज में और कुछ अल्फाज़े आप सुन रहे थे महान एक्टर द ग्रेट अभी नेता यानी कि एक्टर द ग्रेट ग्रेट ग्रेट आमिर खान जी के आवाज़ें आप सुन रहे थे। क्या अभिनेता है वो भी और क्या कला अपना दिखाए हैं कुछ फिल्मों में द ग्रेट आमिर खान। क्या संगीत दिया हैगा भी इस गाने पर द ग्रेट अरिजीत सिंह जी ने। 4 मिनट बाकी है साथियों 7:30 बजने में और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर और अब मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ सुंच के आवाज में कुछ नए सुपरहिट सॉन्ग जो रिलीज किया गया था कुछ दिन पहले। गाने का बोल है आंख लीड फोकस बाय सुनिधि चौहान म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय प्रतीक्षा श्रीवास्तव और अरमान खरे। पौरुष कुमार भी कुछ काम किया है संगीत में और लिखा है अति सुंदर बयान को प्रतीक्षा श्रीवास्तव जी। द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सुनिधि चौहान सुंच जी के आवाज में सुनिए ये अति सुंदर बयान और एंजॉय कीजिए बिकॉज इट्स Happy, happy Sunday, weekend time.

सॉन्ग अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना अभी, और गाने का बोल है आंख तो देखते रहना आंखों से। सुनाने वाली थी द ग्रेट सुंच सुनिधि चौहान जी, और क्या संगीत दिया है भाई, क्या बात है। मिलाए के एंडम एमे से ओमे करके, और देख कैसे जोड़ दी से ना, महान संगीतकार कंपोजर प्रतीक्षा श्रीवास्तव, अरमान खरे और पौरुष कुमार। साथियों एक मिनट गुजरने वाला है, 7:30 बजने में तो कुछ शेर शायरी हो जाए ना आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। अर्ज किया है डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई सेती भैया भूपेंद्र जी ने की, एक दिन जब मेरी सांस बंद हो जाएगी, एक दिन जब मेरी सांस बंद हो जाएगी, मत सोचना कि चाहत कम हो जाएगी, फर्क सिर्फ इतना होगा, आज हम आपको याद करते हैं, कल मेरी याद आपको रुलाएगी। किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो, किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो, कि उसको जब भी प्यार मिले तो तुम याद आ जाओ। प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, चाह के भी आपको भुला ना सकेंगे, आप ही हो मेरे लबों की हंसी, आपसे बिछड़े तो कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। मैं चाहूं सपनों में भी साथ उसका हो, मैं चाहूं सपनों में भी साथ उसका हो, इन हाथों में मैं मेरे बस हाथ उसका हो, इन हाथों में मेरे बस हाथ उसका ही हो, चाहत मुझे इतनी है, चाहत मुझे इतनी है उससे, के दिल मानता नहीं कोई मेरे बाद उसका हो जाए। पलकों से आंखों की हिफाजत होती है जनाब, पलकों से तो आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल की अमानत होती है, हमारा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, हमारा रिश्ता तो भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है। आखिरी शेर साथियों आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, पानी से तस्वीर कहां बनती है साथियों, पानी से तस्वीर कहां बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहां बनती है, ख्वाबों से भी तकदीर कहां बनती है, किसी को चाहो, किसी को चाहो तो सच्चे दिल से, क्योंकि ये जिंदगी फिर कहां मिलती है। तो ये था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। 5 मिनट गुजरने वाला है साथियों, 7:30 बजकर और वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन उससे पहले ये जबरदस्त सॉन्ग इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी को लाते हैं प्रोग्राम में, द ग्रेट ग्रेट ग्रेट सोनू निगम जी, और उसका साथ दे रहा है इस जमाने का जबरदस्त गायक और संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर विशाल दादलानी, ये दोनों मिलके ये अति सुंदर बयान आप सभी को सुनाने वाला है। एड फिल्म भूमि, म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय जबरदस्त संगीतकार जोड़ी द ब्रदर्स सलीम सुलेमान के संगीत है, और श्रद्धा पंडित जी के अल्फाजे, और क्या गाया है दोनों मिलके सोनू निगम और विशाल ददलानी, फायर।

Jabberjest song from the movie Bhoomi, music composed and arranged by Maestro Kya Sangeet Jodiye Do Bhai, the great Salim Suleiman, aur likha hai ati sundar bayan ko Sardar Pandit. Awaz tha the great is zamane ka the king of melody Sonu Nigam, aur mahan fankar gayak music director Vishal Dadlani ji ka. साथियों प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं और देखा जाए तो एक और जबरदस्त गाने वाली इस जमाने के मैं चुन चुका हूं सुनाने के लिए आप सभी को और प्रेयर में रख चुका हूं सावरिया क्या बात है गाने वाली द ग्रेट नीति मोहन जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनिए Composed and arranged by Vikram Montrose और फाजे है शेखर अस्तित्व जी का Great song, Samaria, remember.

कंपोजर विक्रम मोंट्रोस के साज और अल्फाज़े था शेखर अस्तवा का। 15 मिनट रह गया है साथियों 8 बजने में। एक और जबरदस्त सॉन्ग मैं सेट कर चुका हूँ प्लेयर में आप सभी को सुनाने के लिए, पागलपन सॉन्ग। अल्फाजे है क्या बात है यारो, और जरूर उस पे आप ध्यान दें क्योंकि गाने वाला है इस जमाने का जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर, और लायरिक्स भी कुछ गानों में दे चुका है। मैस्त्रो विशाल शर्मा जी को लाते हैं और म्यूजिक टीम अभिनव मिश्रा का टीम से निकाला हुआ ये अति सुंदर बयान, कंपोज्ड बाय द मैन हिमसेल्फ, लेकिन कुछ लोगों ने भी साथ दिया है जैसे वैभव पानी। अ ग्रेट सॉन्ग आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, क्या बताऊं तुझे, सिर्फ पागलपन ही है।

अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो, अगर मैं कहूं कि मैं बस खुश रहना चाहता हूं, मैं बीपी खुश नहीं हूं, मुझे अंदर से कुछ

क्या बात है, दिल को एकदम चीर के रख दिया, सुनसान कर दी। महान गायक इस जमाने का मैस्ट्रो विशाल शर्मा का गाया हुआ और कंपोज किया हुआ ये अति सुंदर बयान है, और आल्सो ये गाना को खुद लिखा है वो, म्यूजिक में साथ दिया है वैभव पानी जी। तो साथियों धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है, तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनिए। जबरदस्त सॉन्ग है, काफी दिनों पहले निकाला गया था ये सॉन्ग, और आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि ये सॉन्ग भी 1.4 मिलियार्ड से ज्यादा गाट रिक्टिंग 1.5 मिलियार्ड केर गकीक एन बलुइस्टर्ड। मिले हो तुम भाई बहन नेहा और टोनी कक्कड़ का ये सुपरहिट सॉन्ग आप सुनिए। लिखा है टोनी कक्कड़, कंपोज किया है भी टोनी कक्कड़, और मिलके ये दोनों भाई बहन ने ये अति सुंदर बयान को गाए हैं। क्या बात है, देख भाई 1.5 मिलियार्ड केर बलुइस्टर्ड, वर्ल्ड वाइड विल ओक व्हाट सेग हर साथियों।

लेने वाला नगमा सुनाया आप सभी को भाई बहन नेहा कक्कर और टोनी कक्कर, रिटन बाय टोनी कक्कर एंड कंपोज एंड अरेंज बाय आल्सो ब्रदर टोनी कक्कर। दोनों ने मिलकर इतना जबरदस्त सॉन्ग बनाया और सुनाया कि दुनिया हिल गया। अंदर हाफ मिलियर्ड बहना, क्या बात है। खासो दो और नटिलिक ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। तो साथियों यहीं तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं कि जो जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, ये आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे मैं आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूँ संगीतकार का दास्तान नामक कार्यक्रम लेकर खलिंग में ओल्डेस्ट गोद गीत और गजल। आप लोग हमें इजाजत दें, हमारे बाद आप श्रोताओं को सेवा करने वाला है बड़का भैया धवन डोली मैस्त्रो चंद्रसेन गंगा मेदसेन। Echt heel bekende programma, maar hij gaat vanavond alleen zitten, want de bal heen aan WK, dus bij Jozef gaat lekker voor de buis zitten. Ik ook hoor, want ik ga ook richting naar huis. Hopen dat de beste mag winnen natuurlijk. Geldt voor Messi en Jamal. En moet een mooie sportieve wedstrijd worden. En natuurlijk wens ik jullie allemaal een hele fijne WK-wedstrijd en hou je koest. जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो गुनगुना देता हूँ आदत से जो मजबूर हो।

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों को सेवा में साथ सप्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फोन हिंदुस्तानी रेडियो है www.55fm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीब 11 मिनट व्यतीत हो चला है, 8:11 ऊपर अख्त। ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है देनहाग शहर से। जो बीमार है लाचार है, तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है। जिनके घर में कोई शादी व कोई भी उत्सव हो, फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। पहले आप अभी कार्यक्रम सुन रहे थे भैया सूर्य भगवान दीन जी के। भैया सूर्य भगवान दीन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आगाह करने के लिए। और आपको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और मैं अपने तरफ से भी। और मेरे सामने बैठा हुआ है भैया मीनू भगवान दीन। आज भैया यूसुफ नहीं है, भैया मीनू भगवान दीन मेरा थोड़ा बहुत अवश्य साथ देगा। तो भैया मीनू, आपका हृदय से स्वागत है। फनहार्ट वेलकम मीनू। तो यहाँ सोंदख नेखन 3 जुली है, जी हाँ सोंदख नेखन 3 जुली है। और जो लोग सुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे, सुबह हो गया या शाम होगा या रात्रि होगी, आपका हृदय से स्वागत है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और मैं अपने तरफ से। और भैया मीनू भगवान दीन जो मेरे सामने बैठे हुआ, जिसे मैंने कहा, उनके तरफ से भी। रविवार है जैसे कि आपको पता है, और आज फुटबॉल भी है। मैं समझता हूँ आप तैयारी कर रहे होंगे फुटबॉल देखने को, लेकिन अभी तो 9 बजे शुरू होगा यहाँ तक मेरा ख्याल है। तो तार्क आप कर सकते हैं, गीत गज़ल के कार्यक्रम तो यहाँ से ऊपर हम शुरू कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ आप हमारा भी साथ देंगे, आँखें रहेंगे टेलीविज़न पर और कान रहेगा फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, है ना यही बात। तो तार का नंबर है 0 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
पुनर्मिलन। फिर हम पुनर्मिलन में से निकाल रहे हैं, नहीं कितनी फिर से खाइए गीत इस तरह से।

जानू मेरी जानू, बप्पी लहरी के साज पर बप्पी लहरी खुद फिल्म सत्यमेव जयते में से निकाले हैं। आओ ये शानदार गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आज सोंदखनी खयूली है गीत गजल के कार्यक्रम है और आप तार कर सकते हैं, दोनों तार इस वक्त फ्री है। 0 7 3 5 6 2 2 6 4 या तो 0 7 3 2 6 2 7 7। तो जिस समय आप तार ढूंढ रहे होंगे और नंबर शायद लिख रहे होंगे या याद कर रहे होंगे और दबाने के या घुमा, आजकल घुमाया नहीं जाता सिर्फ दबाया जाता है, तो जिस समय आप दबाना चाहते हैं तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो है उत्तराखंड। शहर उत्तराखंड के रहने वाली आशा गौरी सिंह जी, शहर उत्तराखंड के रहने वाली आशा गौरी सिंह जी के लिए, और वो ये गीत मांग रही है अपने प्यारा पति करण सिंह के लिए। जी हाँ भैया करण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आशा जी आपको भी। फिल्म जिया में से निकाल, जी नहीं, फिल्म गुंडे में से निकाल रहे हैं और गाना क्या बोले जिया, तो लीजिए आशा गौरी सिंह की तरफ से उनके प्यारा पति करण सिंह के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए और धन्यवाद पेश करते हुए उषा जी आपको भी, आशा जी आपको भी और करण सिंह जो की आशा जी।

फिल्म गुंडे में से निकाले हैं जिया, और पेश हुआ ये गीत ओ फरफावन हिंदुस्तानी रादियो, और पेश करवाने वाली थी इतरा के रहने वाली आशा गौरी सिंह जी। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों ने चलाए हैं, और ये गीत चला आपकी तरफ से आपकी पतिदेव श्रीमान करण सिंह के लिए। भैया करण सिंह, उम्मीद गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा कानी में से। भैया करण सिंह जी आपको भी धन्यवाद, और आशा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ, आपने ये गीत मांगे हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले, और वो है रोतरदाम, रोतरदाम के रहने वाली अर्शीला जी, रोतरदाम के रहने वाली अर्शीला जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए अर्शीला जी के लिए फिल्म नदिया के पार का ये गीत, और रफ़ी साहेब और ललिता दिवलकर गा रहे हैं मिलके। निगतिन अख्त फिर तक बहुत पुराना फिल्म है, निगतिन अख्त फिर तक का है, अख्तन सैफ तखियार खलीद सोमों फिर चितलकर रामचंद्र के साज पर, सही रामचंद्र के साज पर चलो अर्शीला जी के लिए जो रोतरदाम के रहने वाली अर्शीला जी ये रुकम तथा

फिल्म नदिया के पार में से निकाला गया निगदी आखिरी फिर तक का ये गीत रफ़ी साहब और ललिता देवलकर जी मिल के गाए हैं ये सोलो गीत, ये द्वैत और सही रामचंद्र के साथ पर। ये पेश हुआ ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के गीत गजल के कार्यक्रम में और मांगने वाली थी रोतरदाम के रहने वाली इर्शिला जी। इर्शिला जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा क्योंकि जिस गीत का जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों मिल के चलाए। इर्शिला जी आपको भी एक शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगर नाम लम्बन हम पेश करने वाले हैं, चलिए इसे सुनाते हैं, उसके बाद पेश करेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ, लेकिन पहले ये गीत सुन लीजिए।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimumsummerfestival.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: www.faunfm.nl पर आप ट्यून हैं और वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर जो लोग ट्यून के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। गीत गजल के कार्यक्रम चल रहा है ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, आप तार कर सकते हैं। मैं समझता हूँ फुटबॉल है और आप देख रहे होंगे, अच्छा कोई बात नहीं, तब तक कौन जाने थोड़ी सी आपको मौका मिले तो तार कर सकते हैं। नौ से इफिन तक द्री फाइव एन सेस तक ट्वेन ट्वेन तक सेफ न फेयर तक, या तो नौ से इफिन तक द्री ट्वेन सेस तक ट्वेन तक सेफ न सेफ तक। बस आपके तार के इंतज़ार में हूँ। फुटबॉल देखिए और कान रखिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। बस चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

0: टाइटल सॉन्ग जहाँ प्यार मिले फिल्म का नाम है और गाना का टाइटल भी है, जहाँ प्यार मिले निकतिन अख्तम फैफ तखा ये गीत, जी नहीं निकतिन निकनस अस्तखा ये गीत शंकर जय किशन के साथ पर हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो खुदन आफंत
1: या
0: खुदन आफंत तो बेया खुदन आफंत
1: Yeah.
0: Hoe is het met mevrouw Bea?
1: Ja, gaat wel.
0: Chal hè?
1: Khali gataya pera hai.
0: Woh hem jaat rahe poochhe, bada dheere bole tu.
1: Ama gataya pera hai.
0: Ab hum konchi bole, dui dawai hai. Hindustan bole, dawa daru kar leta. Ersta wala na to tui dawa na to ersta wala.
1: Daru, dawa daru. Dawa daru ma paracetamol.
0: Okay, bole hai, flu bar paracetamol.
1: ओ
0: दारुक बोले फ्लूई बार पैरासीटामोल
1: ओ ओ
0: हां
1: पटाया है
0: नहीं
1: ओ नहीं
0: जाने ना ना ना हम लोग जाने लौंडे जब बैठा रहे तो कुछ ना कुछ फरसेन कर ले तो बोले

0: 20, 21 graden.
1: Maar dit was moeilijk, liever plotseling, zeg je.
0: Dat is zo tot hooi.
1: Zo, ga maar zo goed, liever.
0: Oh, na te tikken.
1: Goed kelly.
0: Nee. Acha, help kan je je roer goed.
1: Ja, ja, ja.
0: En hoe is het verder, mevrouw? Ben je alles goed?
1: Ja, ja, gelukkig. Verder gaat goed.
0: Dat is mooi.
1: Ja. Dan wil je hoe hem bij ik ga naar zo'n
0: keer. Ik dan moet je hem nog maar horen, want toen derde beller was. Eerst een Ashara, en daarna Rotterdam te mevrouw Ursula. En nu derde Beja. Ik had go Beja over en ik kon Beja over bel karen.
1: Oh, oké. Maar wat komt die hij?
0: Haan, hem ook zo'n bal dekken, toch jana?
1: Arre, abbe thorko begin hij.
0: Arre, voor was gewoon dag je toch bij het. Maar volgens mij is hij al begonnen. Minu, is het al begonnen?
2: Is al begonnen?
0: Ja, het is al begonnen.
2: Het is gewoon al 16, 17.
1: Oké.
0: Ja.
1: Dat geeft niet. Gaan we spel wat takken een beetje voor.
0: Voor hem boli. Kan hem maar rijden van hem per. Ja, rijden die via per.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dan doen we zo'n beetje. Dan doe je goed.
0: Ja. Ja, you're right.
1: Dan hebben we een camera op televisie. Dat is een takkela.
0: Oké, mooi. Mevrouw Beja. Kunnen we het over het hotel?
1: Ik ga het gewoon man gatijpiraai.
0: Acha, next time. Als je een warme mechanic met welk lichter wij vanavond jou
1: bent. Dat is mooi bolle. Hart van bolle.
0: Bol.
1: Ik ga naar haar kusie, hij waar haar, hoe jaha beer.
0: Haar kusie.
1: Ho, waar
0: haar,
1: hoe jaha beer.
0: तू जहां भी रहे समझ गया जहां भी रहे यानी हम फॉर लिख लेला कभी कभी हमें ही लिख ले लिखेला हमें ही न समझ पाएला खबर तो वेल हम तो आज यूसुफ ना है तो
1: यूसुफ अब न कहा भाग जा है
0: यूसुफ बैठ के बाल देखे है
1: अरे बलवा तो या मर है हरहालिंग ना है तो
0: नहीं तो तू ऐसे करिए सूरीनाम सब की आई है तो यूसुफ खतीन एगो छटकुन ले ले आई है
1: कुछ छटकुन लावे
0: इमली के
1: अब सुन ली बात की बड़ा चोट लगे है बा हमको भी ना पहली बात
0: तो ठीक नहीं एक सफर बात
1: एगो झूर वाला की कच्चा
0: है वे कोकिंग फॉर स्थान पर पूछे को सूरीनाम में पूछ लिया
1: ओ हमने ने झूर वाला तो झूर वाला बे तो
0: हां यहां में झूरा जाए तो
1: तो का बोले रोज के काटा
0: अरे नहीं तो तो मोरदंत है वो तो प्रोसेस पर बाल पाई गई है भैया
1: तो मैं जो डरता है वहां में बड़का बड़का
0: ना जब रोज के काटा से मरिए तो वापन में गिनती रही है
1: ना ना एक आध गो कटुन छील देते एक आध गो रही तो
0: ओ बोले मिस्टेक से रह गया
1: हाँ अरे मैं यूसुफ
0: पता ना सुने है कि ना सुना तो ही सुना तो वो एक कान से सुना तो ही
1: अच्छा अच्छा ना ही गरु मोई होई
0: ओके या प्रभु भैया
1: तो फुटबॉल ना तक पई है
0: और मिस्किन लास्ट हाफ ईयर
1: ओ
0: और जो फरलेंग हो गेल देन
1: तब
0: तब देख ले बेल मैं आ एक दिन नी दर्द खात फरलेंग
1: से अरे क्या के ताकत है हम देखिए इस दहलस पर उस ब्लास्ट से तो मैं गुस्सा लगा हम गले सूट गली तो सवेरे तकली देखिए फिर सस रहा या तो
0: हां मतलब अब तो अर्जेंटीनिया दो से सो वेलो
1: हां अब की ओके अर्जेंटीनिया ओ के इमली छट को लेता बे
0: ना ओके समझा दिए
1: इसे भैया के तो तब वो बोले अर्जेंटीनिया मैक्सिमा के फ्रेंड ने कहा
0: वो जना है
1: ओ के छटकुट के मार मांगे है कटवा
0: एक होप दैट इन यूरोप अब लेफ्ट
1: या या
0: ओके
1: मारिया ऊपर वाला जाने है कुछ जी होई हम लोग ना जाने लगा
0: या प्रसिस
1: वही तो वही जाने है कि जीती के करार
0: आसेन बेस्ट
1: के रोई या सिला
0: इस खुदान
1: में या इसको कहीं एचएन ने
0: या
1: और हेल प्रसिस
0: या थैंक यू वेल
1: और फुटबॉल टैकल करिए
0: या नहीं आधा घंटा रह जाए तब देखब घर है
1: या
0: मुफरो भी थैंक यू

अच्छा जी, और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के में से निकाल कर हमने ये गीत पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, और ये है रामलाल के साथ पर फिल्म सेहरा में से, निगत इंद्रिय शस्त्र का ये फिल्म है, और चलो सुनते हैं ये गीत।

0: फिल्म सेहरा में से निकाले निगत इंद्रियन शस्त्र का ये फिल्म है रफ़ी साहब की आवाज़ में और साथ दी लता जी। ये शानदार फिल्म, बहुत प्यारा फिल्म था जी हाँ। और ये गीत हमने चलाया ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं लाइन पर कोई है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो आपको। हेलो हेलो
1: हेलो
0: या दख भैया कैसे रहते हैं?
1: मैंने कल
0: या
1: ओ हम आई गले
0: का दुलपेन बना था तू चल गए रहे का
1: ना हम कब ना सुनत रहे तो के
0: ओ ओके एंड हु इज इट भैया खुद ना आवत
1: या बेचे मु कल्या गईली अरखन सुबसर ना या अनसोट क्लाइन फेश बाय सबेरे से इट वाज हे लात हुवर्ड दिस अप हम बै आईला
0: ओ ओके
1: दू ठे लंग वेयर बै तो कोम हो
0: Ja, begrijp
1: ik. Het is niet makkelijk meer om heel snel weer op de been te komen. Op Chalo Hali Hali Ikaron. Het duurt heel lang voordat je bijkomt.
0: Rustig aan doen, Bea.
1: Ja, je weet ja. Hoe het gaat met ouderdom.
0: Precies.
1: Ja, dus het is niet fijn.
0: Dus een label op ouderdom komt niet gebreken. Maar ja. Ouderdom, dan moet je voorzichtig zijn. Voordat je gebreken krijgt.
1: Ja, ja, ja. Precies. Maar ja, goed, het is onschuld, hè. Onbewust. Koep,
0: ja.
1: Koep, houden we ieder. En dan denk je niet bijna. En nu pas denk je.
0: तो बाजा बाजा बाजा तेरा कहीं नाचो तो जो थोड़े रही ले वधारोट चोग मुफ़न
1: या दारोम दारोम या और जाने कौन सी कोई ना रहा पीछे मारे वाला टिकिया से कोई रहा
0: वो तो वो ही अभी मुफ़रो बियास बत याद रहे अम्बुली जाए अम्बुली कभी जाए ये सुरनाम तो इमली की छटकुन ले
1: एक हो दया एक हो द छटकुन चाहे लावे के एंड सोम से के हाथ एक मार ईमान जन हमें छटकुन ले के ना मार पीछे रहत देखनी दून दत एक है तो हमें एक बतवा बा यहाँ पर चाहे हमें देखे 12 बजे घूम लावे घर वहां में कुछ ना बोले वो बोले ओके चाहे इतने से जाने के सब जा पकड़ पीछे पीछे हम तो बरेती रहती कि कोई रहत
0: कोई डांटे के ना
1: या डांटे के या पच्चीस हमें कोई ना हम यस इन अंदर सोम हम सब कोई के डांटी ला और कोई हमें डांटे ना है
0: ओ यार
1: ऐसे के को बेटर कोई रहत हमें डांटे के हमें कोई डांटे वाला ही ना है और जो कोई है डांटे वाला तब कौन सी डांटी जो चीज हम सब कुछ जाने ला
0: ओ
1: तो उचित डांटी जो चीज हमें सब कुछ पता है जो चीज हमें ना पता है वो हमें डांट
0: चाहे कोई का खोजे के जो नु कुछ अच्छेंट कर दे रहा तो रे
1: प्रसीज प्रसीज एंड खुए दिंगा वेच खुए दिंगा में सिखाओ और एंड दिंगा ना जो चीज हम जाने ला सब चीज दाखलस वाला चीज नहीं इतनी ज्ञान के बाद जैसे बोला जा है ज्ञान के बाद
0: या प्रसीज
1: प्रसीज ज्ञान के बाद बताओ कि जिसमें हम लोग के ज्ञान होवे और ज्ञान वाला मनाई बहुत कमती मिली है मारी मुझसे देखो को
0: या इंद्रदात नहीं
1: या ज्ञान वाला बात बहुत कमती मिले है सुने के या दैट इज एन सेल्फ साम सेखे से
0: कौन पे खाने
1: वाला बहुत कम है कौन
0: बेटा ये है यानी बास बूफन बास रहे तो
1: या
0: भैया बताओ कौन गाना मांग रहे हैं
1: एक एक कहीं कहीं दे लीजिए ये मेरे यहाँ फिल्म के गाना ना है मैं खोद दाद नफरत है मुझसे कोई प्यार कर बैठा
0: नफरत
1: नफरत है मुझसे कोई प्यार कर बैठा अच्छा सन हेल लंगली मार एक वेट नहीं मार फिल्म ना लिखा ला यूट्यूब पर तक ली अच्छा साथ कहीं फिल्म नाम मारे खोद दे ली चे तो सन हेल मोई हेल लंगली चे एक 8 मिनट
0: एक है बट आप कुछ करेंगे नफरत है मुझसे
1: हाँ
0: कोई प्यार कर बैठा
1: En als je die niet kan vinden, dan is nog een tweede keus. Dil bhool nahi sakta tumhe.
0: Bhool nahi.
1: Dat is een duet.
0: Sakta.
1: En volgens mij die is van Paheli Mohabbat.
0: अच्छा हम दोनों में से एक जरूर पाया
1: हाँ जो मालूम मैं देश दिस इज अ हेल मोइ लॉन्ग लीच मैं फिल्म के नाम ना लिखल है और ना लिखल किन बकेन द सांगर
0: एस खुद बस वो खाना उस बेस दो अच्छा भैया आप बताओ कोनो कहावत वो रख ले
1: एन कोनो कहावत हम रख ली है ओ हाँ एन दिस इज सेल्फ रापा मुझे खुद बखराई पर खुद दस इधर ही साथ बखराई पर सब बोलते हैं कहावत है बोलते हैं अगर वो आएगी तो झगड़ा लड़ाई करेगी
0: हाँ।
1: अगर जब वो आएगी तो ना सबको पता है जब वो आएगी तो लड़ाई झगड़ा करेगी सबको पता है
0: हाँ।
1: फिर भी सब कोई नाच गाना बजाना सब कुछ करके उसको जाकर ले आते हैं।
0: ओह
1: एंड वी इस
0: दो झगड़ा तो ले बड़ा प्रेम प्यार मोहब्बत से लाते
1: हैं। वो सब कोई के पता है कि जब वो आई तो झगड़ा करेगी, फिर भी नाच कूद के गाना बजाना से जाकर खुद ले आते हैं। वी इस दी पर्सन जो आई और झगड़ा करेगी वो तो सबके पता है।
0: जो जन जो नया आई बेदहांत मांगेल बोले वे कि ना दो रफ करेल बोले के
1: नाउ एक दो रफ वेल
0: तू ही बोल रहा है।
1: हां दुल्हनिया दुल्हनिया
0: कोई बोले ना दो रफ कर रही
1: है दुल्हनिया दुल्हनिया के सब बोले हैं लड़ाई करी आई झगड़ा करी ई करी फिर भी वो अपने से घर में नहीं आते हैं।
0: ले आवल जा है
1: तो ऐसे तो नख वोन ले आवल जा है
0: या पर नाच गाना से नाच गाना से बैंड
1: गाना बजाना सब कुछ से ओके ले आवल जा है फिर भी सब कोई जाने है कि वो शुरू करी लड़ाई झगड़ा सब कुछ मैं फिर भी ले आवल जा है।
0: ओके सब जाने काहे ले आवल है टेम कर
1: एक दिन बात हो जा पे क्या हालात हो
0: कि जाने सोचे टेम हो जाए ले आवे तो दा
1: अच्छा सवाल खराब
0: देखो पर ये तो है
1: अच्छा तो ये तो खाल देख सो हां लड़ाई झगड़ा करी मैं फिर भी आवे
0: हेर बोल बे और एक को है
1: ना वो ये तक एक खाता मोपिया
0: ओ वो है
1: कैका हां व्हाट इज दी मोपिया नाउ दी मोपिया वास इस कैका कहां लिख ली मिस ओ या बीवी बीवी जा है बाजार हां बीवी मार्केट गई और जाते जाते बोल कर गई के बर्तन धो देना बर्तन धो देना नहीं तो हम आकर धोऊं। तब अब वो आदमी से बोली अच्छा अपन आदमी से जाता है बाजार तो बोली बर्तन अरे उजा है बाजार की जहां अन आबे तब बर्तन धो देना नहीं तो हम धोऊं। तब अब आदमी ने अब साला समझ नहीं आता अब बोले आदमी अब साला समझ नहीं आता आके मुझे धोगी कि बर्तन धोगी अब ओके पता ना कि उकास उना समझिस कुछ बोलो आप ओके समझना है कि वो आई हमें धोई कि बर्तन वा धोई बच्चे सो मोपिया
0: मतलब वो वही रहा जो बर्तन वा धोई है तो
1: धोई तो के धोई या
0: तो के ले थारी
1: या तो लेक सो मोप एंड एक कैक जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है और जिसका मोबाइल होता है वो फिर भी किसी का नहीं होता है। उसका दिन भर तो मोबाइल में बेशक रहे हैं सो खासत है
0: नहीं इधर से इधर
1: या एंड एफ कैक पहले लोग सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था अब सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है तो मैंने ये सूझ जा है तो मोबाइल इतना खुशियाली होवे हैं है कि आप हमने जाए के मतलब दुए को के हम भी उसने करीला हमार मोबाइल भी सोचो थोड़ी कब बताइए अब तू ना जाइए सूते सो खातत है
0: मैं भी आज बीच वाला मैं जो आदत है ठीक हम और तक आलस खात फिया मोबाइल तू कहीं कुछ इन दिन करिए अन मेल जो ऑफ एन अपीयर ऑफ जो ये खात बुक ये खात इन चेक स्टूल नंबर दे दात फलान दुकान ये कान फिया मोबाइल नो एक फिया मोबाइल का ये आफ राफ दुन या फन आलस दिस द वर्ल्ड इज दिस दान नो नो सो फेयर geworden dat men gewoon die mobiel moeilijk kan missen. Alles wordt met die mobiel gedaan.
1: Ja.
0: Of zeg ik het verkeerd?
1: Zo. Ja. Even kijken. Ik had nog een kleine hier. Even kijken. Behetrin dino ke liye behetrin dino se guzarna padta hai. Zo is het toch? Eens kijken. Oha, awaz kaan tak aati hai. Jabke khamoshi aasman tak jati hai.
0: Ah, yeah, correct. Inderdaad. Nee, sab moi. Vagala. Dhaller ye isin khoj khaj ke.
1: Yeah, in last term.
0: Yeah, go ahead.
1: Okay. Jo main hu, usse koi janta hi nahi. Aur jise sab jante, wo main hu nahi.
0: Nahi. That's so beautiful, yeah.
1: Yeah, that is also.
0: Yeah, still water happened to be crowned, you can't even wait.
1: Yeah,
0: merited need. Nee, mooi, heel mooi, Bea. Dank je wel. En de luisteraars, die heeft het ook gehoord, natuurlijk.
1: Ja, even een beetje gezellig met elkaar, een beetje leuke dingen doen.
0: Hij zat al te veel voetbal, wat ik hier. Dank je wel dat je hebt gebeld. Aha. Eerst goed, Bea?
1: Ja.
0: Ja?
1: En ik zou zeggen fijne avond en lekker voetbal kahoe weer, hè?
0: Mooi toch. Is goed. Bea, dankjewel.
1: Ja,
0: heel veel luisterplezier. Kijkplezier.
1: Ja, dankjewel.
0: En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Fijne avond.
0: Zelfde dag, Bea. Ye thi Bea Gujarat ji Den Haag ke rehne wali. To lijiye. Hum agla geet pesh karne wale hain ki to wo hai Utrecht ke rehne wali Bea ji. बेज इतरा के रहने वाले हैं अब वो ये गीत मांगे हैं चलिए वो गीत हम बेया जी आपके लिए चला रहे हैं शुभकामनाओं के साथ प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा लीजिए बेया जी इतरा के रहने वाले आपकी गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से बेया जी इतरा के रहने वाले

हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, लता जी की आवाज़ में ये गीत सुनाया गया गीत गज़ल के कार्यक्रम में। और गीत को मांगने वाली थी, देखते हैं, बेया जी, वितरक के रहने वाले बेया जी। बेया जी, उम्मीद गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस गीत के जिक्र आपने की वही गीत हम लोगों ने मिलकर चलाए हैं। बेया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बेया वितरक के रहने वाले हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है, देखो ये, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

याद रहेगा भाई। तो मुकेश हार्ट ऑफ ओपिनियंस लता जी आपको सुनाए हैं ये शानदार द्वैत हमने पेश की ऊपर फाउ हिंदुस्तानी रो। चलो बढ़ते हैं गीत गजल के और दना के रहने वाली बेया गजराज जी। बेया गजराज जी आपकी गीत मुझे मिल गया इस तरह से आ रहा है जहाँ तक मेरा ख्याल है अरिजीत सिंह जी ने गाए हैं गीत। चलो हम आपको सुनाते हैं दना के रहने वाली बेया गजराज जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ रात्रि पेश करते हुए चलिए बेया जी इस तरह से आ रहा है।

प्यार कर बैठा है, अरिजीत सिंह आपको सुनाए हैं। जी हाँ, अरिजीत सिंह आपको सुनाए हैं। शुभकामना के साथ कार्यक्रम गीत गजल में हमने पेश की, और पेश करवाने वाली थी दना के रहने वाली बेया गजराज जी। बेया जी, आपकी मांगी हुई गीत हम लोगों ने पा गए थे और मिलके हम चलाए हैं। अरिजीत सिंह का ये गाया हुआ गीत है और पेश हुआ वो पावन हिंदुस्तानी रेडियो। बिया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आखिरी गीत मैं चला रहा हूँ इस कार्यक्रम के, उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और वो ये गीत है, इस तरह से आ रहा है।

अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो जी ये दोनों मिलके आपको सुनाए ये शानदार द्वैत ऊपर पावन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आज सोनदखनी की तिजोरी था और आप जिन लोगों ने तार किए बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म का नाम है ढाई अक्षर प्रेम का। यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की श्रीमान मीनू भगवान दीन जी के साथ। भैया मीनू आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जो लोगों ने तार किए हैं चलिए उन लोगों के नाम पुकार लेते हैं। वो है आशा गौरी सिंह जी और उनका पति देव करण सिंह जी वितरक के रहने वाले हैं। इर्शिला जी रोतरदाम के रहने वाली है और बेया जी वितरक के रहने वाली है और बेया गजराज जी दनहा के रहने वाली है। आप सबको मैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से और अपने तरफ से भैया मीनू भगवान दीन की तरफ से आप दोनों आप चारों को बहुत बहुत धन्यवाद पेश कर रहा हूँ। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला बृहस्पतिवार को 12:03 के दरमियान, तो 12:15 और मेरे बाद आप सुनेंगे विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद सभी सहयोगी मिल के आपके सेवा में रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिल रहा हूँ दोंदरदाह को। आप सबको एक शुभ रात्रि पेश किया जा रहा है। हेल फेल लॉयसर प्रसीर एंड हेल फेल कैक प्रसीर।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9753562 तक सेफ न फेटा। फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

और यहाँ से कुछ मिली जुली पुराने और नए गाने से हम आप लोग को सेवा करते हैं, सेवा करेंगे दोस्तों, और आपको हम यहाँ से खुश करेंगे, और आप जहाँ भी हो हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहो, या गाड़ी में बैठे हुआ होगा, या घर में, या कमरे में, या श्रीनाम देश में, या जहाँ भी हो हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम आप लोग बस सुनते रहो, और आपको हम प्यार भरी गाना, पुराने गाने, कुछ नए नए गाने से हम आपको सेवा करेंगे। अब देखा जाए, कोई बता दे दिल है कहाँ, आपको मालूम है कि आपका दिल कहाँ है। एक द्वैत सॉन्ग की ओर हम जाते हैं, फिल्म के नाम है मैं चुप रहूंगी, और सुनील दत्त मीना कुमारी का ये गाना है हमारे दोस्तों।

कोई बता दे ये दिल है यहाँ और दर्द भी वहीं होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्राज के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली मैं चली, और कहाँ चली आप तो अपने जानते कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है। कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आपके दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है। तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेंगे। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में और रोमांटिक हिट्स दोस्तों कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आपके साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम की ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आजाद का ये फिल्म नई खतीन 5/5 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फो वाले और जाने कहां, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

मेरे हम सफर हो मेरी हम सफर, लता अमोगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बई, नेहा दीन फिर सस्ता का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी, मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं, और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता की ओर हम बढ़ते हैं, जो भी महबूब मेरे के गाना है पत्थर की सनम 1964 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: Film पत्थर का सनम, पत्थर के सनम नई खेती सीफ ने सस्ती गाना को हमने निकाला है, जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, दो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथी लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है।

पति पे चला उस पति पे मुझे मुझे लता जी फिल्म के नाम है यादगार से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन बुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

भाई जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन ये आंखें क्या होगा सुनने वालों आपने खुद ही सुना है। हम चलते हैं ये है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में शमाई है और ये फिल्म ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे। मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और राहुल दुर्बिन के सांच में और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

फनहुन के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 2 तक 7 फेटा फनहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

प्यार भरी मोहब्बत भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग से माच आप लोग को और सेवा करेंगे। दोस्तों पहले हम चलते हैं कि पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा घूंटा है, पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे झूठा है वो अपना हो ना हो दिल पर राज हमेशा उसकी ही रहता है। तो ये बात है दोस्तों और हम तुरंत चलते हैं और आपकी आ जाने से क्या होता है दोस्तों और मोहम्मद अजीज आपको क्या सुनाएगा। साधना संगम सरगम है इसमें और फिल्म के नाम है गुथ गर्स खुद गर्स। दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दोस्तों और यहाँ से कुछ मिली जुली पुराने और नए गाने से हम आप लोग को सेवा करते हैं, सेवा करेंगे दोस्तों, और आपको हम यहाँ से खुश करेंगे, और आप जहाँ भी हो हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहो, या गाड़ी में बैठे हुआ होगा, या घर में, या कमरे में, या सूरीनाम देश में, या जहाँ भी हो हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम आप लोग बस सुनते रहो, और आपको हम प्यार भरी गाना, पुराने गाने, कुछ नए नए गाने से हम आपको सेवा करेंगे। अब देखा जाए, कोई बता दे दिल है कहाँ, आपको मालूम है कि आपका दिल कहाँ है। एक द्वैत सॉन्ग की ओर हम जाते हैं, फिल्म के नाम है मैं चुप रहूंगी, और सुनील दत्त मीना कुमारी का ये गाना है हमारे दोस्तों।

0: कहां।
1: कोई बता दे ये दिल है यहाँ और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्तराज के लिए है जो तार करते हैं।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी।

ये सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर भजन हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते और सभी दुखी प्राणियों के लिए, और ख़ास करके ये भजन हम पेश करते हैं भाई जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती जो ठीक नहीं चल रहा था लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर है, तो ख़ास करके इन दोनों के नाम हम ये भजन पेश करते हैं और आप सभी सुनने वालों के लिए। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे सुनोरे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। और ये गीत हमने वेरी वेरी स्पेशली चलाए हैं जगदीश लक्ष्मण जी के वास्ते और प्रदीप नाथू जी के वास्ते, क्योंकि इन दोनों का तंदुरुस्ती कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। और सभी दुखी प्राणियों के लिए हमने ये भजन चलाए हैं। मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं सुनने वालों।

तमाईती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, मिल ना सका दिल को अगर प्यार तुम्हारा, आना पड़ेगा मुझको दुनिया में दोबारा। होता है सुनने वालों, याद ना जाए बीते दिनों की, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं।

ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। ये सुबह जितनी खूबसूरत है उतना ही आपका हर एक पल हो। जितनी खुशियाँ आपके पास आज है इससे भी ज़्यादा कल हो। जो अभी अभी अपने बिस्तर से उठे हैं उसे हम गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे। प्रोग्राम को आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। किशोर डा आपको सुनाने वाले हैं।

जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। अभी आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज़ में, और ये तो सच्चाई है सुनने वालों। मुझे ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त पता चली जब रास्ते पर पड़े फूलों ने मुझसे कहा कि दूसरों को ज़्यादा खुशबू देने वाले अक्सर यूं ही कुचल दिए जाते हैं। सुनने वालों, ये गीत पहले बहुत ज़्यादा चलते थे रेडियो पर, यानी रेडियो पर, और जब किसी के शादी होती थी या विवाह संस्कार होते थे तो बहुत ज़्यादा ये गीत चलते थे। जीवन में पिया तेरा साथ रहे।

सुनने वालों, पहले ये गीत बहुत ज़्यादा रेडियो पर चलते थे विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर, शादी के उपलक्ष्य पर। और एक गीत ये भी है फ्रॉम द मूवी साथी से आप सुनेंगे, मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है।

मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, फ्रॉम द मूवी साथी से हमने पेश किया है सुनने वालों। मेरा प्यार वो है कि मरकर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने ना देगा। ये तो सच है सुनने वालों कि मेरा प्यार आप लोगों के लिए ऐसा ही है। फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी, महेंद्र कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परिवाज हम, लता जी के साथ में द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी पूर्णिमा। कर ले दिल की बात, अरे कर ले दिल की बात, आज मौका है पता है, यानी पता नहीं है कि ये मौका फिर मिले ना मिले, तो अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कीजिएगा।

कर ले दिल की बात, कर ले दिल की बात, आज मौका है। सुनने वालों पता नहीं ये मौका फिर मिले ना मिले, अगर आपको दिल की बात करनी है ना तो ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले। फ्रॉम द मूवी एक हसीना दो दीवाने।

अभी आप सुन रहे थे पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुम मेरी आवाज़ लो मैं आ गया, आप बुलाए और मैं ना आऊँ ये तो हो ही नहीं सकता। फ्रॉम द मूवी बेताब से भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। सरसा हम देखे तो फिल्म का नाम है बारिश। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम।

अभी आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम है बारिश। इसी फिल्म से हमने पेश की है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। सुनने वाले कुछ सेंटिमेंटल सॉन्ग्स हम आप सभी के वास्ते पेश करने वाले हैं, और उसके बाद में कुछ लव सॉन्ग्स भी हम चलाएंगे। बाजी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी,

अभी आप सुन रहे थे बासी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, मिलन है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम तो पेश करने वाले हैं मैं तो दीवाना।

मुबारक हो सबको, समाए सुहाना भी आप सुन रहे थे मुकेश जी की आवाज़ में, और फिल्म का नाम है मिलन। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, फ्रॉम द मूवी हरियाली, और रास्ता से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, फ्रॉम द मूवी हरियाली और रास्ता से हमने पेश किए हैं सुनने वालों। ये कली जब तलक फूल बन के खिले,

लता और महेंद्र कपूर जी मिलकर आप सभी को सुनाने वाले थे ये कली जब तलक फूल बन के खिले, फ्रॉम द मूवी आए दिन बहार के इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। साथिया नहीं जाना के जी ना लगे।

साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, अभी आप सुन रहे थे झील के उस पार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाला है किशोर डाजी, क्या नज़ारे।

झील के उस पार है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं क्या नज़ारे, किशोरा आपको सुनाने वाले थे। गोरी ओ गोरी, प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा, किशोरा आपको सुनाने वाले है फ्रॉम द मूवी गाय और गोरी।

गोरी ओ गोरी प्रेम कर ले ऐसा प्रेमी फिर ना मिलेगा। फ्रॉम द मूवी गाय और गोरी से भी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज़ में शर्मती तेरी आंखों की।

0: शरबती तेरी आंखों की झील की गहराई में अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों किशोर डा की आवाज में। बुरे भी हम भले भी हम, द टाइटल फ्रॉम द मूवी बनारसी बाबू।
1: बाबा हमारा नाम

0: द टाइटल फ्रॉम द मूवी बनारसी बाबू से अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। घड़ी की ओर जबकि हम देखते हैं तो ठीक 2 मिनट बाकी है 11 बजने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम पेश करते हैं विज्ञापन, और विज्ञापन के बाद मैं आप सभी से फिर मिलने वाली हूँ।
1: Destiny Events presents Unforgettable Melodies of Bollywood Nagme with all renowned artists from Mumbai. Sarigama Pa winner Ishita Vishwakarma

0: वॉइस ऑफ आशा भोसले द वर्सटाइल प्रियंका मित्रा।
1: हो तुम्हें ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई।
2: कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा। चलिए मिलकर सुनते हैं।

से इस मैखाने में कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यास बुझ

मुझको बस आवारा समझा जिसने मेरा नाम सुना। अब तो सब ने ठुकराया कोई तो पा

0: फर्क समझ कर दो आंसू तो बहाएगा, कभी न कभी कहीं न कहीं कोई न कोई तो आए।
1: कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आएगा, फ्रॉम द मूवी शराबी से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। हमने जफाना सीखी, फ्रॉम द मूवी जिंदगी से हम पेश करते हैं।

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ज़िंदगी से हमने पेश किए हैं हमने जफ़ा न सीखी जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा।

तमन्ना है बर्बाद हो जा भी। आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इंतकाम से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे, लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी भरोसा से हम पेश करते हैं।

वो दिल कहाँ से लाऊं तेरी याद जो भुला दे। गुरुदत्त की आवाज़ यानी क्षमा करना सुनने वालों, लता जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। फ्रॉम द मूवी भरोसा से हमने पेश किए हैं बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले, फ्रॉम द मूवी रूप तेरा मस्ताना, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ये सॉन्ग।

बड़े बेवफा है ये हुस्न वाले मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी रूप तेरा मस्ताना। झुक गया आसमां इसी फिल्म से हम पेश करते हैं कहाँ चल दिए इधर तो आओ।

अभी आप सुन रहे थे कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ। फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमान से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो रे, फ्रॉम द मूवी तेरे घर के सामने है।

घर के सामने है, फिल्म का नाम इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं, दिल का भंवर करे पुकार, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, और ये गीत खास करके हम पेश करते हैं शांता खेमई जी के वास्ते जो हमारे साथी कर्मचारीगण हैं और हमारे प्रोग्राम को भी सुन रहे हैं।

पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया। फ्रॉम द मूवी जिंदगी से हमने पेश किए हैं। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया।

एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, फ्रॉम द मूवी बेनाम से हमने पेश किए हैं। तो हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं।

मैं तुझ में हूँ अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए। लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी आपको मिलकर सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी इंतकाम से।

हमारे लिए तुम हमारे लिए अभी आप सुन रहे थे। दो बदन है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। फ्रॉम द मूवी दो बदन से आप सुनेंगे।

राहगर दिशो में हरदम मेरे इश्क का सितारा मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दो बदन से। जाने कहाँ गए वो दिन, मेरा नाम जोकर है फिल्म का नाम, मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।